आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
5: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार ना करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-23-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहां टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84-7-10-30-9-92 या 90-7-65-65-7-50।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक नदी का लिया जायजा, डुमरिया घाट तक पहुंचकर की समीक्षा। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। महावीरी अखाड़ा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। शहीद आजम भगत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने तमाम मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ आज बाढ़ संभावित इलाकों का समीक्षा करने के लिए पूर्वी चंपारण आए हुए थे। इस दौरान वहां से उन्होंने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण क्षेत्र के गंडक नदी के इलाकों का मुआयना किया, बाढ़ प्रभावित गांव क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। इसके बाद डुमरिया घाट पर पहुंचकर नदी का जायजा लिया। उनके साथ डिप्टी CM और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक और अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही गोपालगंज के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी डुमरिया घाट पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर लगाने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा,
6: से पानी बढ़ रहा था, लोगों की परेशानी देखने आए थे, अब तो पानी घटना शुरू हो गया है। 5,43,000 क्यूसेक तक वाल्मीकि नगर बराज पे डिस्चार्ज आया था, अब घट के वो 4.25 लाख तक हो गया है। यहाँ भी अभी जो है, हम समझते हैं मुश्किल से 10 इंच और एक बार फिर से बढ़ सकता है, लेकिन स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। विभाग के सभी अधिकारी मुस्तैद हैं, और कहीं कोई दिक्कत आपने देखा जिला प्रशासन के लोग दोनों जिला के मौजूद हैं।
5: इधर गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर निचले इलाके के लोग परेशानी में हैं। बहुत सारे गांव में पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि 5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है जो आज नदी के रास्ते गुजरेगा। पानी के आने से रामनगर जगीरी टोला और मेहंदिया का सड़क संपर्क टूट गया है। कई परिवार बाढ़ से घिर गए हैं। ग्रामीणों ने नाव और राहत बचाव की व्यवस्था तेज करने की मांग की है। वहीं जगीरी टोला में एक स्कूल पानी में डूब गया है। आज कई फीट पानी के रास्ते शिक्षक स्कूल पहुंचे और मुश्किल से अपनी ड्यूटी की। इसको लेकर लगातार निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से अपील भी किया जा रहा है। इस संदर्भ में गोपालगंज के अंचलाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
7: बंगाल में चक्रवात आने से बारिश का लेवल बढ़ गया है, जिस कारण से नेपाल द्वारा 3 से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। परंतु घबराने की बात नहीं है, कल दोपहर तक ये पानी हमारे एरिया को हिट करेगा। हम स्थानीय लोगों से अपील किया जा रहा है, जो भी बांध के निचले स्तर पर रहते हैं वो लोग अब बांध के निचले स्तर पर आ जाए, और जितने लोग मवेशी पालक हैं अपने मवेशी को लेकर नदी की ओर ना जाए, क्योंकि अचानक से कभी पानी भर सकता है नदी में और अप्रिय घटना घट सकती है। साथ ही जो नाव चालक है उनसे भी अपील की जा रही है, वो लोग अपने नाव को लेकर के नदी के उस पार खेती करने ना जाए, क्योंकि जब भी पानी का स्तर बढ़ेगा अचानक से तो अप्रिय घटना घटने के चांसेस है। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदया द्वारा भी नदी पे नाव चलाने हेतु 163 की कार्रवाई की गई है। अगर कोई भी नाव चलाते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जब भी वर्षा बढ़ती है और पानी नदी में आता है तो सांप कटनी की घटनाएं भी अक्सर देखने को मिलती है। तो आपके माध्यम से हम सभी जो मेरे प्रखंड वासी हैं उन लोगों को अपील करते हैं कि अगर कोई भी ऐसे सांप कटनी की घटना सामने देखने को मिलती है तो किसी क्रम में नहीं रहेंगे, तुरंत स्थानीय PHC केंद्र अथवा गोपालगंज सदर अस्पताल में जाएंगे। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भरपूर मात्रा में एंटी वेनम की व्यवस्था की गई है, अगर कोई ऐसी घटना घटे तो उनकी माल जाल की सुरक्षा की जा सके।
5: महिला एवं बाल विकास निगम गोपालगंज के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के द्वारा आज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझवलिया विजयपुर में सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य किशोरियों एवं छात्राओं को महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अंतर्गत संचालित संबल एवं सामर्थ्य घटक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 109 और साइबर हेल्पलाइन 1930 के संदर्भ में भी महिलाओं और बच्चियों को जानकारी दी गई। खेल विभाग बिहार सरकार और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन गोपालगंज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय जिला स्तरीय वार्षिक विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का आज भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, जिला खेल पदाधिकारी अनिल कुमार और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिवम कुमार सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी और खेल प्रशिक्षक तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। 4 दिवसीय यह जिला स्तरीय प्रतियोगिता 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जिले के विभिन्न खेल स्थलों पर आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में भाग ले रहे हैं। हथुआ में महावीरी जुलूस के दौरान एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक रूपंचक गांव का बताया जा रहा है। घटना भी रूपंचक गांव की ही है, जहां मध्य रात्रि में हिमांशु यादव को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसको लेकर प्रभारी SDPO राजकुमार शाह ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए आज शव परिजनों को सौंप दिया है और इस घटना में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। एक एक बिंदुओं पर जांच हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि की भी जांच की जा रही है। इस मामले में हिमांशु यादव की हत्या क्यों हुई, इसका कारण क्या था और कौन लोग हत्या करने में शामिल थे, इसको लेकर अब तक अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है और इलाके में सनसनी है। आज शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद हिमांशु के शव का अंतिम संस्कार हुआ। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश भी है और लोग पुलिस से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बैकुंठपुर के बनकट्टी दक्षिण गांव में मैनेजर शाह के मकान पर सरकारी पानी टंकी से कई सारे ईंट उनके करकट नुमा मकान पर गिर गए, जिससे बाल बाल उनके घर में रहने वाले बच्चों की जान बची। इसको लेकर अब उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आवेदन देते हुए सहायता की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पानी टंकी उनके घर के ऊपर बना है और जर्जर स्थिति में है। आए दिन यहाँ से पानी उनके घर पर गिरते रहता है। आंधी तूफान में टंकी का दीवार ढहकर उनके घर पर गिर गया, जिससे बाल बाल उनके बच्चों की जान बची। उन्होंने प्रखंड स्तरीय प्रशासन को आवेदन देकर नुकसान की भरपाई और पानी टंकी को वहां से स्थानांतरित करने की मांग की है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन उनके आवेदन पर मामले की जांच कर रहा है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर नगर थाना चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला प्रशासन की ओर से माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिलाधिकारी समीर सौरभ ने माल्यार्पण कर शहीद भगत सिंह के अदम्य साहस, देशभक्ति और बलिदान को नमन किया। उप विकास आयुक्त गौरव कुमार, अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद आजम को श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी ने कहा कि शहीद भगत सिंह का त्याग, साहस और राष्ट्र प्रेम देशवासियों, विशेषकर युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उपस्थित अधिकारियों ने उनके आदर्शों और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को स्मरण करते हुए उनके विचारों से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। 2 अक्टूबर को प्रत्येक जिला में महिला जदयू के द्वारा जीविका के 20 साल बेमिसाल होने पर नीतीश संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गोपालगंज में भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने कहा कि इस बार जीविका में महिलाओं की उपलब्धि को लेकर यह खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज इसको लेकर जिलाध्यक्ष ने बैठक की, जिसमें महिला प्रकोष्ठ की तमाम कार्यकर्ता शामिल हुई और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक तैयारियों का विचार विमर्श किया गया। गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक जाने वाली ट्रेन को रेलवे ने अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन संख्या 1579 और 1580 जो गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक चलती है, इस गाड़ी को 24/10/2026 तक के लिए रेलवे ने निरस्त कर दिया है। इसके वजह से थावे रेलखंड से गोरखपुर और पटना जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। मीरगंज थाना की पुलिस ने 164 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही एक कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शराब तस्कर मंजीत कुमार मांझी को गिरफ्तार कर लिया। यह नौतन जिला सिवान के विश्रामपुर गांव के ब्रिजनाथ मांझी का पुत्र बताया जा रहा है। कार और शराब को पुलिस ने जब्त कर आरोपी पर मामला दर्ज करते हुए इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पूरी रात जगह जगह पुलिस ने वाहनों की जांच की। इसको लेकर असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने स्वयं भी कई इलाकों का दौरा किया और जांच में लगे पुलिस कर्मियों की समीक्षा की और उन्हें आवश्यक निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में स्थानीय जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप समेकित विकास कार्य योजना तैयार करने को लेकर कौशल विकास केंद्र में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिलाधिकारी समीर सौरभ ने गुणवत्तापूर्ण कार्यों पर विशेष जोर देते हुए सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि जी रामजी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों की समेकित योजना तैयार की जानी है। इसमें जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका तथा मौसम एवं आपदा और न्यूनीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत चेक डैम, तालाब, ग्रामीण सड़क, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय भवन, कौशल केंद्र, भंडारण संरचनाओं सहित अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तथा बाढ़ से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा। गंडक नहर में डूबे एक किसान का शव धर्मपुर पुल के पास से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि गोपालपुर के पुर खास गांव के समीप नहर में 84 वर्षीय भोज कुशवाहा डूब गए थे। दो दिनों तक SDRF की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इसके बाद तीसरे दिन धर्मपुर नहर पुल के पास शव बरामद किया गया। घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। स्वजनों ने शव की पहचान की है। पोस्टमार्टम के बाद आज शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्रामीणों के सहयोग से किसान का अंतिम संस्कार भी किया गया है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंडक नदी का लिया जायजा, डुमरिया घाट तक पहुंचकर की समीक्षा। सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। महावीरी अखाड़ा में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। शहीद आजम भगत सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
15: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
16: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
17: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
15: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
17: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
15: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
18: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
19: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
20: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
19: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
20: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
19: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में
16: डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
20: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
16: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
15: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89973।
1: माँ।
21: हाँ बेटा।
1: माँ, मैं देखता हूँ कि लोग जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस संसार में कोई सुख नहीं, इसलिए मैं संन्यास लेकर इन बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ।
21: इतने निष्ठुर ना बनो, मुझसे ऐसे वचन ना कहो बेटा। ये संन्यास लेने का विचार छोड़ दो।
1: पर क्यों माता, इसमें अनुचित क्या है?
21: तुम गृहस्थ बनो, यज्ञ करो, आराधना करो, पूजा करो, उसके बाद सन्यासी बनना। और तुम तो कितने विद्वान हो, कितने शास्त्र पढ़े हैं तुमने। तुम्हें तब भी अपनी माता की बिल्कुल चिंता नहीं? क्या तुम्हें अपनी माँ से कोई प्रेम नहीं?
1: मेरा मन इस संसारिक जीवन में रहना नहीं चाहता, किंतु मेरी माँ मुझे छोड़ना नहीं चाहती। मेरी माँ मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझती? माता की आज्ञा के बिना मैं कैसे संन्यास ग्रहण करूं?
22: माँ ने जब संन्यास लेने की अनुमति नहीं दी, तब शंकर ने एक लीला रच डाली। वो नहाने नदी में गए, किनारे माँ खड़ी थी, अचानक वो डूबने लगे। शंकर चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे कोई खींच रहा है। पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे उसे तो घड़ियाल खींच ले जा रहा है। ये सुनते ही आर्यम्बा शंकर को बचाने के लिए नदी में उतर गई। पीछे पीछे दूसरे लोग भी भागते रहे, लेकिन शंकर को घड़ियाल खींचता ही जा रहा था। तभी शंकर ने कहा, यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो तो ये घड़ियाल मुझे छोड़ देगा। माँ आश्चर्य से शंकर को देखती है। बालक शंकर ने फिर कहा, कुछ ही क्षण बचे हैं माँ, बोलो माँ। आखिरकार माँ ने उन्हें संन्यास की अनुमति दे दी।
23: वाइल गिविंग परमिशन,
24: अनुमति देने के वक्त बालक शंकर की माँ ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है। तो बालक शंकर ने पूछा कि वो क्या है। तब उनकी माँ बोली कि मेरी मृत्यु के समय तुम ही मेरे पास आना और मेरा अंतिम संस्कार करना। तब बालक शंकर ने कहा कि जब भी आपको मेरी उपस्थिति चाहिए होगी मैं अवश्य आऊंगा।
25: जिस आयु में बच्चे माँ की ममता के आंचल में पलते बढ़ते हैं, जिन दिनों मासूम बच्चों की दुनिया घर आंगन और गांव तक सिमटी रहती है, उस उम्र में घर परिवार, सखा संबंधी और माँ को छोड़कर बालक शंकर संन्यास के मार्ग पर निकलने वाले थे। इस दृश्य की अब बस कल्पना ही की जा सकती है।

घर छोड़ने के बाद शंकर कई दिनों तक घूमते रहे। उन्होंने मार्ग में कई नदी, पर्वत और जंगलों को पार किया। बालक शंकर गुरु की खोज में घर से निकले थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि वो अपने जन्म स्थान केरल के कलाड़ी से निकलकर तुंगभद्रा की ओर मुड़े और फिर इसके बाद श्रृंगेरी से गोकर्ण होते हुए ओंकारेश्वर पहुंचे। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर गुरु श्री गोविंदपाद का आश्रम था। श्री गोविंदपाद अपनी विद्वता, योग बल और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गुरु श्री गोविंदपाद आश्रम के पास एक गुफा में समा

0: मैं पृथ्वी नहीं हूँ, ना जल हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, ना आकाश हूँ, ना उनके गुण हूँ, ना इंद्रियां हूँ, अपितु इन सबसे परे जो परम तत्व है वही मैं हूँ।
1: तुम्हारे उत्तर से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है।
2: उन्होंने एक तरीका अपनाया कि अपना परिचय देने के लिए कि मैं जो कुछ भी आप आमतौर में समझते हैं कि वो मैं नहीं हूँ। आमतौर में क्या समझते हैं कि शरीर को समझते हैं कि ये गोरा गोरा है तो ये स्वरूप इनका परिचय है, तो कहते हैं कि ये तो शरीर हो गया, मैं नहीं हूँ। तो नाम तो मेरा शरीर को रखा है, तो मैं नाम से मेरा परिचय कैसे कराऊँ? मैं शरीर से भिन्न हूँ, इंद्रिय से भिन्न हूँ, अंतकरण से भिन्न हूँ। जो कुछ भी आप दिख रहा है, आपका व्यवहार जिस किसी रूप में हो रहा है, उन सबसे मैं भिन्न हूँ।
3: सदा आनंद रूप शिवोहम शिवोहम, न मैं जाति हूँ, न धर्म हूँ, न महाभूत हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ, न आकाश हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य मूल तत्व हूँ। तो अब ऐसे जो स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना, तो यही आदि शंकराचार्य को और से बहुत ऊपर लेके चला जाता है कि कहते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है, या हमारा नहीं सबका मूल स्वरूप, या इस सृष्टि के कण कण का मूल स्वरूप जो है, वही एक सत्ता है जो मैं हूं।
4: शंकर 9 साल के थे जब वो श्री गोविंदपाद से मिले। श्री गोविंदपाद ने शंकर को सन्यास की दीक्षा दी और अपना शिष्य बनाया। कहते हैं श्री गोविंदपाद के कहने पर सन्यासी शंकर ने महाभारत में लिखे विष्णु सहस्त्र नाम पर श्लोकों की रचना की, जिससे लोग परमात्मा के 1000 रूपों को समझ सके। विष्णु सहस्त्र नाम की गूंज आज भी सुनाई देती है। तरह तरह की परीक्षा के बाद श्री गोविंदपाद ने ही शंकर को शंकर आचार्य या शंकराचार्य का नाम दिया, यानी जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण धर्म गुरु शंकराचार्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। श्री गोविंदपाद ने शंकर को 4 महाकाव्यों में ब्रह्म तत्व का उपदेश दिया था।
1: तत्वमसि, वह पूर्ण ब्रह्म तू है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा रूप उपाधि वाला आत्मा ब्रह्म है। अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। अयम् आत्मा ब्रह्म, यह सर्वानुभव सिद्ध अपरोक्षात्मा ब्रह्म है।
5: ब्रह्म जो है वह चरम सत्ता का नाम है, जो अंतिम सत्ता है, जिसे हम सारा जीव और चेतन जगत, जड़ जगत उत्पन्न होता है, उस सत्ता का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म कोई भगवान नहीं, कोई देवी देवता नहीं, ब्रह्म जो है वो चरम सत्ता का रूप है, जो अंतिम सत्ता का रूप है, जिससे कि सारा विश्व निकलता है।
6: शंकर 4 वर्षों तक गुरु गोविंद पाद की सेवा में रहे। इस दौरान वो शंकर से आचार्य शंकर बन गए। उन्हें आश्रम के शिष्यों को पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। वो अब शंकराचार्य नाम से चर्चित हुए। उनकी चर्चा की वजह एक और थी, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में सवाल जवाब होते थे, दर्शन और जीवन से जुड़े प्रश्नों पर बहस होती थी। जाहिर है इसमें शामिल होने वाले विद्वानों के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होती थी। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को निरुत्तर किया। ध्यान रहे, उस वक्त शंकराचार्य की उम्र सिर्फ 12 साल बताई जाती है, लेकिन वो कितने बड़े विद्वान हैं, उसकी असली परीक्षा काशी में ही हो सकती थी। आचार्य शंकर भी कई दिनों की यात्रा के बाद काशी पहुंचे।
7: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
7: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
7: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
10: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
9: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
10: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
9: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
10: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
9: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
10: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
11: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
12: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
12: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
12: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84710-30992 या 97665-65750।
13: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
14: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
13: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
14: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
14: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
14: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: काशी में कई लोगों ने आचार्य शंकर की प्रेरणा से विधिवत संन्यास ग्रहण किया और उनकी सेवा करने लगे। एक नवयुवक आचार्य के चरणों में वृद्ध और ज्ञानी लोगों को बैठे देखकर लोग चकित रह जाते थे। उस समय बौद्ध सन्यासी परंपरा भी वाराणसी में काफी प्रभावशाली थी। यहां बौद्ध सन्यासियों से भी शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन स्वयं आचार्य शंकर के ज्ञान की परीक्षा होनी अभी बाकी थी।

0: एक दिन काशी में उनका रास्ता रोका गया। रास्ता रोकने वाला शव को जलाने वाला व्यक्ति था।
1: ठहरो,
2: आचार्य को जाने दो।
1: मैं रास्ते से नहीं हटूंगा, पहले आचार्य शंकर मेरे प्रश्न का उत्तर दें।
3: कैसा प्रश्न?
1: हे महात्मा, आपने कहा दूर हटो, आप किससे दूर हटना चाहते हैं, मेरे शरीर से या मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा से? जब हर व्यक्ति का शरीर अन्न से पुष्ट होता है तो आपके और हमारे शरीर में क्या अंतर है? और जब हर शरीर में एक ही आत्मा विराजमान है तो आप में और मुझ में कैसा भेद? तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और तुम चांडाल हो? आपने मुझसे क्यों कहा कि दूर हटो?
0: अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति ने ये सवाल आदि शंकराचार्य से किए। जाति धर्म छोटे बड़े में भेद कैसे हो सकता है जबकि सब में एक ही ईश्वर का अंश मौजूद है? ये दरअसल आदि शंकराचार्य की परीक्षा भी थी। कहा जाता है कि वो शिव ही थे जो ये प्रश्न पूछ रहे थे। आचार्य शंकर ने अनुभव किया कि जीव और परम सत्ता एक ही है, ठीक उसी तरह जैसे गुड़ से उसकी मिठास अलग नहीं है।
3: हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कुछ कहा वो परम सत्य है। आप आत्मज्ञानी हैं और मैं आपका दास हूं, और इस शरीर और बुद्धि से मैं आपका ही अंश हूं।
4: वैसे ही हम सारे जो लोग हैं, सारे पशु पक्षी जीव जंतु, इवन जो जिसको हम जड़ कहते हैं वेदांत में, उसको भी चेतन माना जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जितने हैं सब आकार हैं अलग अलग, लेकिन मूल में एक सत्ता है। यदि उस मूल एक सत्ता को यदि हम ध्यान रखें तो हमारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं होता। लेकिन यदि हम ये समझते हैं कि ये ऐसा है, कोई सांवला है, कोई गोरा है, कोई इस जाति का है, कोई इस धर्म का है, तो आपके मन में उसके आधार पर तरह तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है।
0: कहा जाता है कि काशी में चांडाल के रूप में मिले भगवान शिव की प्रेरणा से आचार्य शंकर ने व्यास रचित ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद को समझने के लिए भाव्य या किताब लिखने का निर्णय किया, ताकि उनके गहरे अर्थों को सरल बनाया जाए और आम जन भी आसानी से इसे समझ सके। ये तीनों ग्रंथ प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं।
5: काशी में आचार्य शंकर विद्वान पंडित और शिष्यों से घिरे रहते थे। वो ग्रंथों के रूप में, किताबों के रूप में धरोहर छोड़ना चाहते थे। उन्हें एकांत की जरूरत महसूस होने लगी और तब उन्होंने काशी छोड़कर बद्रीनाथ जाने का फैसला किया। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ कई दिनों तक यात्रा करते हुए, दुर्गम पहाड़, नदी नालों को पार करते हुए अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ पहुंचे। कहा जाता है कि बद्रीनाथ में आचार्य शंकर ने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति निकालकर उसे मंदिर में स्थापित किया था। इसके बाद वो बद्रीनाथ के ही व्यास गुफा में रहने लगे।
0: आचार्य शंकर ने व्यास गुफा में रहकर 4 वर्षों तक ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत गीता और उपनिषद पर ग्रंथ या किताबों की रचना की। उन्होंने भगवान गणेश, गंगा, शिव, देवी भगवती जैसे देवी देवताओं की भावपूर्ण प्रार्थनाओं की रचना की। उन्होंने वेदांत संबंधी कई छोटे छोटे आसान ग्रंथ लिखे

0: वही ही संसार से पार कराने के लिए समर्थ है, और कोई नहीं।
1: आचार्य शंकर 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर घर से निकले थे। सुदूर दक्षिण केरल से काशी और काशी से बद्रीनाथ तक की यात्रा में उन्होंने गुरु से शिक्षा ली और शंकर से शंकराचार्य बने। उन्हें जगह जगह प्रशंसा और प्रसिद्धि मिली, लेकिन जिस विचार को वो फैला रहे थे उस पर सवाल अब भी थे। सवाल उठाने वालों में उस समय के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र थे। मंडन मिश्र से शंकराचार्य का शास्त्रार्थ में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती।
2: मंडन मिश्र अपनी पत्नी के साथ माहिष्मति नगरी में रहते थे। ये जगह भी बिहार के सहरसा जिले का महिषी कस्बा है। मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर का पालतू तोता भी श्लोक बांचता था। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती भी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। आचार्य शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के गांव पहुंचे।
3: मंडन मिश्र से जब वहां वो पहुंचे थे शास्त्रार्थ के लिए, तो उन्होंने पहला शब्द यही बोला था, कुतो दंडी, दंडी सन्यासी कहाँ से आ गए, क्योंकि वो गृहस्थ थे और वो कर्मकांड की बात करते थे, ये ज्ञानकांड की बात करते थे। डिबेट का मुख्य विषय यही था, कर्म वर्सेस नॉलेज।
2: आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तय ये हुआ कि शास्त्रार्थ की मध्यस्थता मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती करेंगी।
4: सर्वप्रथम आप दोनों अपने अपने विषय की स्थापना करें।
5: देवी, आचार्य हमारे विचार जानने हेतु हमारे गांव महिषी आए हैं, इस कारण वे ही पहले अपना मत प्रस्तुत करें।
6: अवश्य। जब उपनिषदों के महावाक्यों से जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है तो संसार और अज्ञान के सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। जीव सच्चित आनंद में लीन हो जाता है, वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपनिषद इसी का प्रमाण है, यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरा विषय। इस शास्त्रार्थ यदि मैं पराजित हुआ तो इस काशे वस्त्र और सन्यास का त्याग कर।
5: मैं वेदों के बाद आए उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानता, मैं वेद के कर्मकांड को प्रमाण मानता हूं। दुखों से मुक्ति कर्म से मिलती है, काम से मिलती है, शब्दों से नहीं। शब्दों की शक्ति तो केवल कर्म को प्रकट करने तक ही सीमित होती है। इस कारण मनुष्य को अपनी पूरी आयु कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि इस शास्त्रार्थ में मैं पराजित हुआ तो मैं गृहस्थ धर्म छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
11: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी। अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD।

0: DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
1: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
7: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
1: क्या कहा तुमने, मात्र ₹600 प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र ₹600 प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र ₹2 लाख डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: इनका मिथिला में जाना और उस समय के जो सबसे बड़े मीमांसा के आचार्य मंडन मिश्र हैं, उनसे उनका शास्त्रार्थ होना, क्योंकि वैदिक कर्मकांड के माध्यम से वैदिक परंपरा को सब कुछ समझने का काम मीमांसा दर्शन करता है। तो वो जो धार्मिकता है जिसमें दार्शनिकता नहीं है।
9: आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं लिया। 5-6 दिन बीत गए लेकिन आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ नहीं थमा। नियम के मुताबिक केवल नित्य क्रिया कर्म और भोजन के लिए आराम करते थे और फिर शास्त्रार्थ शुरू हो जाता था।
10: आचार्य, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है, यह कैसे पता चलेगा? आत्मा और परमात्मा को एक ही कैसे माना जाए? जीव ही ब्रह्म है, यह सिद्धांत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को नहीं है और नहीं इसका कोई अनुमान है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि ये ईश्वर नहीं है।
11: शिरोमणि, जीव और ब्रह्म एक ही है और इसका स्मरण इंद्रियां अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इंद्रियों से तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इंद्रियों की पहुंच ब्रह्म तक है ही नहीं, परमात्मा ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि से परे और इसका प्रत्यक्ष अनुमान या ज्ञान कैसे हो सकता है? और इसीलिए आपका प्रश्न ही गलत है।
12: आखिरकार शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर के अकाट्य तर्क से मंडन मिश्र निरुत्तर और परेशान होने लगे। अंततः उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली।
10: आचार्य, अब तक मैं और मेरे जैसे लोग यही समझते थे कि इस शरीर के अंत के बाद हम दूसरे लोक में जाएंगे, वहां पर तरह तरह के भोग को भोगेंगे और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये बात अब हंसने योग्य लगती है। आचार्य, अज्ञानतावश और अहंकार में मैंने आपको कई अप्रिय और कटु बातें बोली है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं संन्यास लेकर आपके शरण आना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आचार्य, आचार्य मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कीजिए।
13: सभा सन रह गई। महान विद्वान प्रकांड पंडित मंडन मिश्र निरुत्तर होकर शंकराचार्य के शिष्य बनने को तैयार थे। तभी उभय भारती खड़ी हुई।
14: मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए।
13: मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती की बात सुनकर सभा में हलचल मच गई। आचार्य शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उभय भारती अपनी बात पर अटल थी। अंततः आचार्य शंकर उभय भारती से शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए।
15: यदि आपकी इच्छा है तो आप आसन ग्रहण कीजिए।

0: ये शास्त्रार्थ 17 दिनों तक चलता रहा। उभय भारती को जब लगने लगा कि आचार्य शंकर को पराजित करना असंभव है, तो 18वें दिन उन्होंने आचार्य शंकर के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी।
1: आचार्य, अब मैं आपसे काम शास्त्र संभोग के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? इनके अलग अलग मुद्राएं कौन सी होती हैं? पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए स्त्री कौन कौन सी विधि अपनाती है? शरीर के किन किन अंगों में काम वासना का निवास? किन क्रियाओं से संभोग का प्रारंभ होता है? इसका चरम क्या है?
2: हे देवी, एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों?
1: क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? फिर आप तो सर्वज्ञ हैं, जितेंद्रिय है, तो बताइए आचार्य, आप काम शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते?
3: ये भी एक सन्यासी से ऐसे प्रश्न करना अनुचित है। इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सन्यास ग्रहण किया हुआ है। एक विरक्त त्यागी सन्यासी काम शास्त्र के बारे में विचार भी कैसे कर सकता है? अगर ये विचार भी करे तो सन्यास धर्म खंडित हो जाएगा।
1: तो फिर ये अपनी पराजय स्वीकार ले।
2: मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए।
1: जैसे आपकी इच्छा।
2: ऐसा ही होगा।

आचार्य शंकर सभा छोड़कर जंगल की ओर चले, जहां उन्हें अमरूक नाम के एक राजा का शव दिखाई दिया। राजा अमरूक की शिकार के दौरान मौत हो गई थी। उसी क्षण आचार्य शंकर ने प्रबल योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद वो राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए।

0: आदि शंकराचार्य एक महीने तक राजा अमरूक के शरीर में रहे, रानी के साथ रहे। इसी दौरान उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान लिया और चार महीने बाद शंकराचार्य शंकर ने राजा अमरूक के शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर को धारण किया। वो एक बार फिर मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से शास्त्रार्थ के लिए लौटे। उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। असल में आचार्य शंकर का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करना नहीं था, वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की। भारत के इतिहास में ये सबसे अद्भुत यात्रा थी, दिग्विजय यात्रा।
1: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
2: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
1: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
2: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
1: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
4: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
4: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
4: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
5: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
6: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
5: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
6: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
5: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
6: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
5: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
6: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
10: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: आचार्य शंकर की दिग्विजय यात्रा कितनी लंबी और हिंदू धर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, ये समझने के लिए इस मानचित्र को देखिए। इस यात्रा की शुरुआत रामेश्वरम से हुई थी, उत्तर में अलग अलग जगहों से होती हुई कश्मीर तक पहुंची, जहां उन्होंने शारदा पीठ में शास्त्रार्थ किया। पूरब में वो बंगाल और असम गए, वहीं पश्चिम में वो तक्षशिला यानी आज के रावलपिंडी तक पहुंचे। जहां उन्होंने बौद्ध दार्शनिकों से शास्त्रार्थ किया।
12: लगभग उन्होंने 84 संप्रदाय के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया था, और शास्त्रार्थ करते समय उनका जो उद्देश्य था वो यह नहीं था कि दूसरे को अपमानित करना है। उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जिस विचार तक आप पहुँचे हैं उस विचार से आगे भी विचार है, वह अंतिम विचार नहीं है, और यदि आप उस विचार तक पहुँचें तो आप अपना भी कल्याण कर सकते हैं और समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने जिन आचार्यों से शास्त्रार्थ किया अंत में वे आचार्य इनके शिष्य बन गए।
0: दिग्विजय यात्रा के बाद आचार्य शंकर कुछ शिष्यों को लेकर एक बार फिर बद्रीनाथ के लिए चल दिए। वो उत्तराखंड के जोशीमठ में कुछ दिनों तक रुके। उन्हीं दिनों एक दिन आचार्य शंकर ने शिष्यों को बुलाया।
13: अद्वैत वेदांत मार्ग को लंबे समय तक चलाने के लिए सन्यासी संघ का गठित होना आवश्यक है, और इसी के भारत के चारों दिशाओं में मठों की स्थापना हो। पद्मपाद, सुरेश्वर, हस्तामलक और टोटक, मेरे चार प्रमुख शिष्य ही महादीश होंगे, और शेष अन्य शिष्य उनके सहायक होंगे।
0: इस तरह आदि शंकराचार्य ने उत्तर में हिमालय की गोद में ज्योतिर्मठ, पश्चिम में द्वारका मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ और पूरब में गोवर्धन मठ स्थापित किया। हर मठ के एक शंकराचार्य बनाए गए, ये परंपरा आज भी है।
12: उन्होंने चार शंकराचार्य नियुक्त किए। नियुक्त करने का ये आशय था कि भारत को उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से चार भागों में बांट दिया, और एक एक जो मठ के जो आचार्य होंगे वो उस प्रदेश के जो लोग हैं उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए कार्य करेंगे, और इस तरह से पूरे देश के लोग आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होंगे।
0: शंकराचार्य ने इन चार मठों से 10 संप्रदायों को जोड़ा। ये दशनामी सन्यासी संप्रदाय कहलाते हैं। दशनामी संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हर अखाड़े के प्रधान महामंडलेश्वर कहलाते हैं। इस तरह से शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यवस्था तय कर दी।
14: आचार्य शंकर की आयु 32 वर्ष होने वाली थी। वो केदारनाथ में रहकर अधिकतर समय समाधि में मग्न रहने लगे थे। उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। उनकी स्थिति देखकर शिष्यों को चिंता होने लगी थी। वो समाधि भूमि से नीचे उतरना ही नहीं चाहते थे।
13: ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रहेव नापरा, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। क्या कोई घड़ा मिट्टी से अलग हो सकता है? ये जगत भी इस मिट्टी के घड़े की तरह है। कोई ब्रह्म से अलग नहीं है, हर जीव ब्रह्म है। अब मुझे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि मेरे इस शरीर के समस्त कार्य समाप्त हो गए। अब स्वरूप में लीन होने का समय आ गया है।
0: आचार्य शंकर मौन हो गए, वो ध्यान में चले गए। कहा जाता है कि इसके बाद जगतगुरु शंकराचार्य केदारनाथ में ही अंतर ध्यान हो गए।

0: जीव जैसे हम और आप, ब्रह्म मतलब ईश्वर, दोनों एक, फर्क नहीं है। सवाल तलाशने भर का है, ये बात हमारी सोच का हिस्सा है। दूसरी बात, राजनैतिक तौर पर भारत का एक नक्शा हमें दिखाई देता है, वहीं आध्यात्मिक तौर पर भी एक भारत की सोच शंकराचार्य की। पूरब में पूरी मठ, पश्चिम में द्वारका पीठ, उत्तर में जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना इसी बात का एक उदाहरण है। भारतवर्ष में इस हफ्ते इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते एक और महागाथा के साथ।
1: भारतवर्ष, महानायकों की गौरव गाथा, अनुपम खेर के साथ।
2: मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, कि अभी पराजित नहीं हुए। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते।
3: इंदर यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
5: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
6: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से इतना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
5: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गाँव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
7: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत ही अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
5: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गाँव में रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
8: हम है चुन्ना हल्दा, इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है, उससे हम लोग गाँव वालों को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
5: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
4: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
9: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
10: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
4: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
12: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े चार और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने यूपीआई भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का एमडीआर पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है, ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें। बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र तैयार करे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट का बयान अमर उजाला में है। हिंदुस्तान ने विश्व हृदय दिवस पर भारत समेत एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण दिया है। प्रदूषण दिल के मर्ज को जानलेवा बना रहा, हर साल 17 लाख लोगों की हार्ट अटैक से होती है मौत। लोकसत्ता ने मौसम का मिजाज शीर्षक से लिखा है, सितंबर की बारिश ने तोड़ा 57 साल का रिकॉर्ड, फिर भी 11.8% कम वर्षा। एशियाई खेलों में विद्या रामराज के नए रिकॉर्ड को भी अखबारों ने सचित्र दिया है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
2: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
1: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
2: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
1: कहाँ?
2: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
1: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
4: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

हमारे मुकद्दर में तो तुम यूं ही चली आई। लगता है खुदा ने अपने मासूम बचपन को बहलाने के लिए एक खूबसूरत खिलौना तराश रखा है।

0: आज दो शराबे मिल गई, सो नशा भी दुगना, तू गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा कोमल, शराब की बो
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
1: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
1: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
1: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
9: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
8: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
9: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
8: कहाँ?
9: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
4: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
5: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
4: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
5: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
4: ओपी हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
5: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80-03-3586 या 95-99-27-982।

0: गुजरात के एकता नगर में आयोजित परेड में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। गंडक, कोसी, बागमती, लालबकैया और कमला बलान नदियों के उफान से प्रदेश के 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में गंडक का पानी कई निचले इलाकों में फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बगहा के खरटवा में देर रात पानी के दबाव के कारण चंपारण तटबंध टूट गया।
1: चंपारण तटबंध के टूटने से पानी तेजी से आसपास के गांवों और निचले इलाकों की ओर फैलने लगा है। लगभग 50,000 की आबादी के प्रभावित होने की आशंका है। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। बाढ़ का पानी चखनी, रजवटिया, सिंगाड़ी, पिपरिया, चंदरपुर, रतवल और पतिलार पंचायतों के कई गांवों में फैल गया है। रतवल चखनी मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। इस बीच सिकटा में त्रिवेणी नहर का उत्तरी तटबंध भी 50 फीट की चौड़ाई में क्षतिग्रस्त हो गया है। जल संसाधन विभाग की ओर से दोनों क्षतिग्रस्त तटबंधों के मरम्मत का काम जारी है। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
0: इधर पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में भी गंडक नदी का पानी फैल रहा है। वैशाली जिले में गंडक नदी के तटीय और निचले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती और लालबकैया नदी में उफान से दरभंगा, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के निचले और तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सुपौल और सहरसा जिले के कई प्रखंड कोसी नदी की बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राज्यव्यापी आंगन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम राज्य के सभी 115,064 आंगनवाड़ी केंद्रों पर होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पटना के फुलवारी शरीफ स्थित उच्च विद्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लाभार्थी समूह के बच्चों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान अन्न पराशन और गोद भराई, सेविका सहायिका और लाभार्थियों का सम्मान तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को फल और मिठाई का वितरण किया जाएगा। बच्चों के लिए चित्रकला, खेल, रोल प्ले और बाल गीत जैसी गतिविधियां भी आयोजित होंगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहली बार प्रदेश में रबी फसलों के बीमा के लिए किसानों से 15 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027 निर्धारित है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने योजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। श्री यादव ने बताया कि रबी फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम देना होगा। खरीफ फसलों के लिए यह 2% और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए 5% होगा। किसानों से लिए गए प्रीमियम के बाद शेष राशि में केंद्र और राज्य सरकार बराबर बराबर योगदान देंगी। राज्य सरकार ने केंद्र से प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र भेजकर शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया है। श्री चौधरी ने कहा कि 2026-27 में बिहार में धान का अनुमानित उत्पादन 154 लाख मीट्रिक टन है, जबकि खरीद लक्ष्य केवल 35 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बढ़ने से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य में धान खरीद की अवधि 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। प्रदेश में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा और मदद के लिए सभी थानों में बुजुर्ग कोषांग बनाए जाएंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बुजुर्गों का निबंधन कर उनकी जानकारी संबंधित थानों में दर्ज की जा रही है। बुजुर्गों को QR कोड उपलब्ध कराया जाएगा। इसे स्कैन कर उनकी जानकारी और संबंधित बीट अधिकारी का संपर्क नंबर पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा। किसी समस्या पर एक कॉल मिलते ही बीट अधिकारी बुजुर्ग के घर पहुंचेंगे। बीट अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार अकेले रहने वाले बुजुर्गों से मिलकर उनका हाल चाल लेंगे और जरूरत पड़ने पर अस्पताल दवा सहित अन्य जरूरी कामों में सहयोग करेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड में नाम में बदलाव को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अब नाम में किसी बड़े बदलाव के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार के गजट में प्रकाशन अनिवार्य होगा। पहले ऐसे बदलाव के लिए आवासीय प्रमाण पत्र पर्याप्त था। हालांकि नाम की स्पेलिंग में सुधार के लिए आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 21 नवंबर तक बढ़ा दी है। पहले अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित थी। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज के अंक में सुनिए, अटल इनोवेशन मिशन ने किस प्रकार विद्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहित किया।
4: नीति आयोग ने वर्ष 2016 में स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन शुरू किया था। स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा था कि अब तक देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित हो चुकी है। इनमें करीब 60% सरकारी स्कूलों और आधे से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वहीं 72 अटल इनोवेशन सेंटर नए स्टार्टअप को शुरुआती दौर में मार्गदर्शन और सहयोग दे रहे हैं।
5: हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने।
4: बच्चों में इस मिशन से कम उम्र से ही सवाल पूछने, प्रयोग करने और समस्याओं का समाधान खोजने की आदत विकसित हो रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बच्चों ने इस मिशन की सराहना की।
6: मेरा नाम आकृति कुमारी, मैं वर्ग 9B की छात्र हूँ। स्मार्ट टीवी से हम लोग को डायरेक्ट समझ में आता है, स्मार्ट टीवी में प्रैक्टिकल के साथ समझ पाते हैं।
7: मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं स्मार्ट क्लास का यही फायदा क्योंकि इसमें एक्शन होता है, एक्शन से हमारा माइंड मतलब अट्रैक्ट होता है और उसको अच्छे से समझ में आता है।
4: अटल इनोवेशन मिशन की सफलता को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे विस्तारित स्वरूप के साथ 2028 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नवादा से अशोक प्रियदर्शी।
0: बिहार समेत देशभर के नक्सल मुक्त जिलों के पुलिस पदाधिकारी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात के एकता नगर में आयोजित परेड में शामिल होंगे। पुलिस महानिदेशक ऑपरेशन एंड स्पेशल ब्रांच कुंदन कृष्णन ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि इस भव्य समारोह में बिहार एसटीएफ के 200 जवान भाग लेंगे।
8: सभी पूर्व में नक्सल प्रभावित जो राज्यों रहे हैं उनकी नक्सल विरोधी इकाइयों की परेड होगी, साथ साथ जो सीएपीएफ के सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी एसएसबी इनकी भी टुकड़ी भाग लेगी। बिहार पुलिस के करीब 200 एसटीएफ के कर्मचारी जा चुके हैं, उनकी प्रैक्टिस चल रही है और ये एक भव्य आयोजन होगा।
0: नक्सल मुक्त बिहार पर श्री कृष्णन की इस पूरी बातचीत को आज शाम 5:35 से आकाशवाणी पटना से सुना जा सकता है। मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर पटना स्नातक विधान परिषद चुनाव में जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे अनुज सिंह के लिए प्रचार भी करेंगे। अनुज सिंह 1 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना में तैनात अपर समाहर्ता आपूर्ति रविन्द्र कुमार दिवाकर और दानापुर के अवर निबंधक पद पर तैनात उनकी पत्नी कुमारी स्वीटी के पटना और बेगूसराय स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। ब्यूरो के अनुसार छापेमारी में लगभग 80 लाख रूपये नकद आभूषण और निवेश के कई कागजात बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से अधिक महंगी ब्रांडेड घड़ी भी बरामद हुई हैं। गौरतलब है कि ब्यूरो ने अधिकारी दंपति पर आय से 1.6 करोड़ रुपए अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। जमुई में नाबालिग छात्रा से अभद्रता के मुख्य आरोपित नंदन यादव को जेल भेज दिया गया है। नंदन यादव को कल भारी सुरक्षा के बीच जमुई स्थित पॉक्सो अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद नंदन यादव जमुई सदर अस्पताल में इलाजरत था। स्वास्थ्य में सुधार के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद स्थित वन स्टॉप सेंटर सब महिला हेल्पलाइन की केंद्र अधीक्षक कांति कुमारी को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मधुबनी की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुर्व्यवहार के मामले में दोषी सूरज मंडल को 7 वर्ष कारावास और 12,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया में आज से जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन नेताजी सुभाष स्टेडियम में होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है आफत, गंडक के रौद्र रूप ने बघा में चंपारण तटबंध ध्वस्त किया। दैनिक जागरण ने बिहार विधान परिषद के सभापति के इस्तीफे की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है अब देश का त्याग पत्र, राम वचन राय बने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति। दैनिक भास्कर ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सीईसी को काम से रोकें, एक तरफा फैसलों पर रोक लगाएं। प्रभात खबर ने पटना उच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रमुखता देते हुए लिखा है बराबर गुफा दुनिया के किसी और हिस्से में होता तो पर्यटन का बड़ा केंद्र होता। राष्ट्रीय सागर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है कक्षा 6 से 3 भाषा पॉलिसी लागू नहीं होगी। आज अखबार की सुर्खी है साइबर फ्रॉड से जुड़े मामले में कलेर के पंचायत सचिव गिरफ्तार। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंडक, कोसी, बागमती, लालबकैया और कमलावलान नदियों के उफान से प्रदेश के 9 जिले बाढ़ की चपेट में। बगहा में चंपारण तटबंध टूटने से स्थिति गंभीर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज राज्यव्यापी आंगन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर होगा आयोजन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पहली बार प्रदेश में रबी फसलों के बीमा के लिए किसानों से 15 नवंबर से लिए जाएंगे आवेदन। और राष्ट्रीय एकता दिवस पर बिहार समेत देश भर के नक्सल मुक्त जिलों के पुलिस पदाधिकारी गुजरात के एकता नगर में आयोजित परेड में होंगे शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: अपने रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
10: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिए।
11: मैं दीपक मेन ग्राम मध्य सज्जनगढ़ से बोल रहा हूँ
10: जी। नाम क्या बताया है?
11: दीपक।
10: हाँ जी। अच्छा दीपक जी, क्या हाल चाल है?
11: सब बढ़िया है। अपनी मक्का कट रही है इस जगह, ट्रक मजदूर आगे पीछे कर रहे हैं।
10: अच्छा,
11: मजदूर लग रहे हैं खेत में जी।
10: मौसम कैसा उधर का?
11: मौसम मैम बदल मदल हो रहा है, पानी गिर सके। और आपके?
10: हमारे यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, बारिश हो रही है।
11: मैम पानी नहीं गिरता तो बढ़िया है। आज मैम सोयाबीन आए, मक्का कट जाएगी, नहीं तो मजदूर ऐसे जाएंगे। 500 रुपए गए हैं मैम
10: जी। तो फिर क्या है आज की आपकी फरमाइश?
11: फिल्म का नाम है सपने साजन के और गाने के बोल है कभी तेरे प्यार में, कभी भूला कभी याद किया।
10: एक बार और बता दीजिए।
11: कभी भूला कभी याद किया, जेगी शराब की मूवी में है, जेगी शराब की
10: जी जी। क्या ये गाना मुझे गा के बताएंगे आप?
11: तेरे इंतजार में कभी भूला कभी याद किया।
10: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
11: हाँ, मेरे मित्र है ना सुनील साहू मकसूदनगढ़
10: जी जी,
11: उसको उनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं। और मैम उसने ही मुझे ये नंबर दिया था मैम, बहुत दिन से लगा रहा हूँ, लगता ही नहीं वो तो आज तक ऐसे भगवान ने सुन ली मेरी।
10: अच्छा जी, तो आज पहली बार कॉल की है हेलो माय चॉइस।
11: हाँ मैम, लगाया था मैंने बहुत दिन से, वो लगता ही नहीं था, वो आज वो बेटा बेटे में इनकी आज लगा सही।
10: अच्छा जी, यानी कि आज पहली बार ही मतलब लगाया और बात हो रही
11: जी। मैम पहली बार ही लगाया मैंने, वो भी इनकी इतना लगा ले, हमारे मजदूर अगर खाना पीना करेंगे तो मैंने लगा ले और बात करते
10: जी। जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे।
11: जी मैम, जी मैम, मैम आप, जी मैम ठीक है, धन्यवाद
10: जी। तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
11: जी मैम धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है जी। कौन बोल रही है? भारती मैम भी बोल रहा हूँ।
1: मनोरमा।
0: हाँ जी, और सब बताइए, बारिश हो रहा है ना खूब?
1: जी जी, बारिश तो हो रही है।
0: इसी समय से कॉल लगाते लगाते जाके लगा पाँच मिनट पहले। बोल रहे थी एक गाना सुना
1: दीजिएगा।
0: बोल है घुंगू की तरह बदता ही रहा हूँ मैं।
1: जी मैं गाना सुनाऊंगी, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: हमारा नाम पप्पू ठाकुर है।
1: और कहाँ से?
0: बगही बाजार कटिया गोपालगंज।
1: अच्छा जी, ये गाना जो बताया वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: हाँ हाँ, डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं सुभाष सिंह और राजेंद्र भाई हैं, इनके लिए।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
5: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
5: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
5: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
10: Now pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
12: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो,
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
13: अस्सलाम वालेकुम मैम।
11: वालेकुम अस्सलाम,
13: कैसी हैं?
11: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: हाँ हम लोग भी ठीक है। नाश्ता वास्ता हो गया?
11: हाँ नाश्ता तो हो गया, और आपका हुआ?
13: हाँ नाश्ता हो गया है।
11: क्या करूँगी अभी आप?
13: कुछ नहीं, नहा कर आया थे तो बाल झड़ गए।
11: अच्छा
13: स्कूल आज छुट्टी है, कोई पर्व वगैरह है?
11: हाँ हाँ पर्व।
13: गाना बजा दीजिएगा।
11: गाना बिल्कुल सुनवाएंगे, पहले अपना नाम बता दीजिए।
13: खुशी पठान पट्टी से।
11: तो खुशी जी और सब बताइए?
13: हाँ सब ठीक है।
11: तो बता दीजिए अपनी फरमाई।
13: नहीं चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, हिंदी सॉन्ग वही बजा दीजिएगा।
11: क्या ये गाना आप मुझे गा के बताएंगे? बोलाएंगे
13: चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, मेकअप वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। हाँ जितना रेडियो सुनना चाहता है सबको सुनेगा। आप सुनेंगी अब मेरी बहन और मेरे मामू लोग को सुनाना चाहते हैं।
11: तो चलिए खुशी जी प्ले करते हैं गाना आपका।
13: हाँ
11: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 91.4 FM।
13: थैंक यू।

0: Yeah. Once again. Yeah, yeah. Dev Fugly. Jigar Thakur.
1: चल RC, म्यूजिक बजा थोड़ा भेज मार के.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजू 90.4 FM में।
0: सलाम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसन बन जी?
1: जी बिल्कुल ठीक बनी है। रुआ बताई, रुआ कैसन बनी?
0: हम ठीक बनी।
1: अच्छा रुआ अभी बाकी है रनी है का?
0: हाँ बाकी है रनी है। याद नहीं कर
1: ना? ना हम तो डेली याद करते नहीं। हम कहेंगे कहीं भाती जी रिकॉर्ड करते रहनी है तो कहीं रुआ फोन कर दे हो के।
0: ना जी लगाओ अपने जन को आप नहीं खराब आज के लिए फोन नहीं खराब डाल बात नहीं टिक टिक कर देता।
1: अच्छा तो कहीं कुछ भाई लगी फोन में?
0: हाँ हम को अपने बात
1: हो गई। हाँ हाँ ठीक बनी। अपन कैसन बानी?
0: हम ठीक है बानी।
1: चलो ठीक है काम बा।
0: सब कुछ ठीक बाबा परिवार में?
1: हाँ हाँ सबके बढ़िया बा।
0: भारती जी ठीक बानी?
1: हाँ ठीक बानी। तो फिर आज कौन सा गाना सुने?
0: गाना सुने हिंदी गाना सुने
1: बता दी।
0: जिसे डरते थे वही बात हो गया गाना नहीं हिंदी
1: राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
0: हाँ जी यही गाना
1: बा। क्योंकि सुनाई के भी चाहता नहीं?
0: हाँ सुनो अखबार होगा सुने भारती मैम सुने सोनी मैम जैसा लोग हमारे चिन्ह तो सब कोई सुनी। अरे रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं कोई सिवान से बात रेशमा के सुना होगा पठान पटी के
1: परिचय हो गई सब लोग सुने ला नहीं दूसरे के।
0: हाँ वो सुना ही होगा यार हमारे के याद पात्र।
1: हाँ मानी सबके ध्यान से सुने ला ना सबके नाम याद रखे लाई दूसरे के।
0: तो वो सुनियो हमारे तरफ से क्या कर ना।
1: जी जी बिल्कुल। तब खाना ना हो गई बनो?
0: हाँ नाश्ता पानी हो गई बा। जानते बानी हम दोपहर खाना बनाओ नहीं दाल चावल सब्जी ये बनते है बड़ा
1: बारिश वरिश होता नहीं?
0: हाँ जी बारिश खूब होता है क्या होता की ना।
1: हाँ हाँ बारिश अभी तो माने फिलहाल छूटल बा।
0: हाँ अभी स्कूल गई बा खाली अनहार का भइल बा हवा चलता खूब बा मौसम अच्छा बा।
1: हाँ हाँ मौसम सुहाना बा।
0: हमरा के तो बारिश खूब पसंद है रौरा जी।
1: हमरा के बहुत ही पसंद है।
0: हाँ बारिश रहा तो खूब खुशी रह में सबसे बेस्ट।
1: हाँ हाँ बारिश से भीगना तो तबियत खराब होना
0: अच्छा तबियत तो केस में खराब होते
1: तबियत
0: ना आई बारिश में नहा के झाड़ू बताओ सब घर और पोस्ट के फिर
1: हाँ ज्यादा बारिश में मत भेजे ना तो तबियत खराब हो जाएगी।
0: ना जी अब तो नहा ले रहे शाम लेके हाली थोड़ा बहुत कपड़ा बाकी बात आगे ना लेगा सब नाश्ता बना कर
1: तो नाम बता दिए ऐसे
0: रेशमा बोलते पठान पट्टी से रौरा भुलाए थे ना जी।
1: ना ना भुलाएल नहीं थी लेकिन पूछे के पड़े ला डेली की आदत हो गई बानो।
0: ना ठीक है कर ली अब पहचान तो नहीं रेशमा बोलते पठान पट्टी से।
1: हाँ हाँ हम तो पहचानते वानी। चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
0: हाँ ठीक है बजा दी जाना
1: जी।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच।

0: PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: Now pick your phone up.
2: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
3: हेलो
4: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
3: नमस्ते,
4: मनोरमा
3: बोल रहे हैं?
4: हाँ जी।
3: हेलो, मैं से बोल रहा
4: हूँ। और आपका नाम?
3: लाल बाबू है।
4: अच्छा,
3: फिल्म का नाम जॉन है।
4: और गाने के बोल?
3: साई के पान बनारस वाला। नमस्ते।
4: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
3: हाँ हाँ, वो है गुडू विकास है, रंजीत है, मंजीत है और आप है, आपकी टीम।
4: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
3: नमस्ते,
4: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।
5: खई के पान बनारस वाला।

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों

अकल का ताला।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पान बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्ते, मैं कैसे हूँ?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसी हैं?
1: काम चल रहा है हमको। हेलो,
0: हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना।
1: सुरभि, गोपालगंज से।
0: अच्छा सुरभि जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं, कॉल लगा रही थी, लग गया।
0: वैसे सुरभि जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ?
1: गोपालगंज में डीएम स्कूल है ना, वहीं से।
0: कहाँ?
1: डीएम कॉलेज है, डीएम कॉलेज।
0: जी जी,
1: गरी से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, तो और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: श्रेया घोषाल की आवाज में सुनना है, मैंने तेरा नाम दिल बुक किया।
0: अच्छा, तो सुरभि जी ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
1: तो थोड़ा तो याद था ना, इतना ही बता सकते हो।
0: अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगी?
1: जी आपको और जितने भी सुनने वाले हैं सभी को।
0: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
14: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो मैम।
16: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 FM में।
15: सलाम मैम।
16: वालेकुम अस्सलाम।
15: ठीक है मैम।
16: जी मैं ठीक हूँ, नाम बता दीजिए अपना।
15: रोशनी।
16: कहाँ से बोल रही है रोशनी जी?
15: अगेड़वा।
16: अगेड़वा। और रोशनी जी, क्या हो रहा था?
15: ड्राइंग बना रहे हैं
16: जी।
15: ड्राइंग बना रहे हैं।
16: अच्छा, ड्राइंग बना रही हैं।
15: हाँ।
16: अच्छा जी, तो किस क्लास की पढ़ाई करती हैं आप?
15: 7।
16: चलिए, तो आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
15: हाँ ठीक है।
16: तो फिर कौन
15: नाश्ता हो गया?
16: हाँ जी, नाश्ता हो गया। और आपका हुआ?
15: मेरा भी हो गया।
16: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
15: आज स्टोरी के पहले चढ़ाई से तो पिटाई करा था ना मैं।
16: ये गाना मुझे गाके बताएंगे आप? बुलाएंगे?
15: हाँ, छोड़ी पहले चढ़ाई तो तहर पिटाई करा दे मैं थाना में, संभाले में नहीं बात जहर खाना में, गिट्टू पट्टा तोरे से, जड़े से, पड़ी तोरे घरे से, ए बर्बादी हुई, बर्बादी हुई, शादी हुई मोर तोरे से।
16: रोशनी जी, ये गाना आप किसी को सुनाएंगे भी?
15: पहले आपको और जो सुनते हैं उनको और मेरे चाची को और मेरे चाचा को और मेरे बहन को और मेरे अम्मी को।
16: तो चलिए आप फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
15: ठीक है, थैंक यू,
16: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिन 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
0: हम बोल रहा हूँ नीतीश कुमार पासवान, बोधा छपरा सिवान जिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया।
0: बारिश का मौसम उधर कैसा है? बारिश का मौसम कैसा है उधर? बारिश हो रहा है?
1: हाँ बारिश तो हो रही है, आज 2-3 दिन से बारिश लगातार हो रहा है।
0: गाना सुना दीजिए मैम हमको।
1: बता दिए
0: तोहरा प्यार में पिटाइल बने लाइकी मिलत बाबू।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: गाना सुनवाना है कमल को, लक्ष्मी को, पूरा डेडिकेट है आपको भी।
1: अच्छा जी, आप रेडियो रिंकी में पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ जी मैम, हम तो कॉल करते हैं लेकिन मेरा कॉल भी नहीं लग सकता है।
1: तो आप पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ हाँ पहली बार।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: कार्यक्रम तो बहुत अच्छी लगती है मैडम, आपका भी बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया प्रोग्राम भी होता है, शो बनता है।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक, और सब ठीक है ना?
1: हाँ सब बढ़िया।
0: वेलकम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: नमस्ते मैडम जी।
6: नमस्ते,
7: कैसे हैं मैडम जी?
6: जी हम तो ठीक है, आप बताइए, आप कैसी हैं?
7: मैं बिल्कुल अच्छा है।
6: तो क्या हो रहा था?
7: आपका इंतजार।
6: चलिए चलिए, इंतजार खत्म हो गया और फोन भी लग गया।
7: तो सब बताए, सब समाचार ठीक बार?
6: सब ठीक बार। हुआ नेहा बोला था ना?
7: जी मैडम जी, नेहा बोलता हूँ, पहचान लगे?
6: हाँ हाँ, रुआ जी कैसे ना पहचाने मैम,
7: सब ठीक बा, पहचान लगता।
6: तो आज कौन से गाना सुने?
7: गाना सुना दे चुपके चुपके चोरी चोरी।
6: कई गाना रोला गा के बता सकते नहीं
7: मैडम जी? गाना तो ना गाया है, बाकी रही नहीं सुने ले।
6: अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं है। ऐसे नेहा जी कहाँ से बोलते हैं? वो
7: भोर से।
6: अच्छा भोर, तो मौसम कैसे बने के?
7: बहुत बारिश हुई।
6: बारिश तो
7: रात भर बारिश हुआ।
6: और ये गाना कैसे सुनाए के विचार
7: जितना सब है 2 सौ 77 सौ।
6: चलिए अब गाना प्ले करता नहीं?
7: जी मैडम जी, नमस्ते।
6: नमस्ते, सुनते हैं सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी मैडम जी
2: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन का जिला गुना से।
2: जी सुनील जी, कैसे हैं?
0: बस मैडम जी, आपका रेडियो रंजन सुन रहे हैं।
2: अच्छा जी,
0: जी
2: तो और बताइए मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम हमारे यहाँ धूप खिल रही है, सोयाबीन कट रही है।
2: अच्छा जी, धूप निकली हुई है।
0: जी सोयाबीन की कटाई चल रही है।
2: अच्छा, और हमारे यहाँ गोपालगंज में बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है आपके इधर?
2: जी जी।
0: तो हमने उधर वैद्य आपके इधर हम सोयाबीन काट लेंगे, फिर आप हमारे इधर बारिश लग देना, ठीक है?
2: जी जी बिल्कुल।
0: और आपके इधर क्या फसल होती है?
2: फसल तो होती है, बट मेरे घर नहीं होती।
0: नहीं आपके घर नहीं, आपके शहर में जैसे कि हमारे इधर सोयाबीन होती है, मक्का होती है, आपके उधर क्या होता है?
2: हम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमारा जो एरिया है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है?
2: जी जी, खेती वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता।
0: जी जी, कौन भारती जी बोल रही है? मनोरमा जी बोल रही है।
2: मनोरमा
0: जी, और भोजन होगा आपके?
2: जी जी, और आपका हुआ?
0: हाँ मेरा भी होगा यार।
2: चलिए बढ़िया, तो आज की क्या है फरमाइश आपकी?
0: जी मैडम जी, आज की फरमाइश है हमारे मामा जी गोलू साहू जी की। हेलो।
2: हाँ जी।
0: हमारे मामा जी गोलू साहू जी की फरमाइश है, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
2: जी।
0: और गाने बोलो तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो।
2: तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ।
0: हाँ तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो कौन सा ऐसे ही है कुछ मैडम जी? हमको गाना मेरी मोहब्बत की तोहिन होगी, अनिल कपूर वाली फिल्म है ये।
2: अच्छा अच्छा
0: जी, अच्छा गाना है ये, उनको किसी ने धोखा दे दिया था तो ये गाना वो सुनना चाहते हैं।
2: अच्छा
0: जी।
2: और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
0: जी जी, ये डेडिकेट गाना उनको किसी एक दोस्त को डेडिकेट रहेगा। और हमारे मित्र है गोपाल ओझा जी, जीतेन धाकर जी, गजराज सिंह लोधी जी हैं, और सोनी मैम, मनोरमा मैम, और एक और मैम का नाम भूल गया, भारती मैम को ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
2: ओके सुनील जी, तो
0: ठीक है मैडम, धन्यवाद
2: जी। तो सुनील जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
7: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
7: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो,
11: सब स्वागत है आपका रेडियो इंजन 91.4 एफएम में।
10: हाँ जी मैडम, प्रणाम।
11: जी प्रणाम, हाल चाल तो ठीक बा, आपन बताएं कि रोवा कैसन बानी?
10: बढ़िया बानी, हम सब पहचान ले ली।
11: हाँ रोवा विकास बोलता है ना?
10: विकास बोलता है। और सब बताएं?
11: सब बढ़िया, बारा और दुआ से रोवा बताएं कि रोवा कैसन बानी?
10: बढ़िया बानी। और गोपालगंज में मौसम है?
11: गोपालगंज के मौसम तो का ही बताएं, बहुत बारिश होता है।
10: हमने के दिल्ली में नोएडा में सारा बहुत धूप निकल रहा है, थोड़ा होने से बारिशो भेजती, थोड़ा हमारियों के ना ठंडा थोड़ा मिली थी। भगवान के पास फोन करी, कितना आया ना भेजी।
11: अच्छा चलिए, कॉलिंग तो भेजिए दे।
10: तो भगवान के लगे कॉल लगवे ना करी,
11: दुआ कर ली की ना बारिश हो। वैसे क्या होता अभी?
10: अभी तो ड्यूटी होता
11: है। आज की फरमाइश?
10: आज गाना का फरमाइश है खेसारी लाल के, वही दिल न लगाई यही वाली।
11: गाना बहुत अच्छा गावेंगे, गाना बहुत अच्छा गावेंगे।
10: हाँ गाना तो गाई ले, ब्याह सैनू, लेकिन हमारा नाम सेकंड है, सेकंड में हमार विकास नाम, तो हमार नाम ब्याह से नाम से हमार फेमस हटे पूरा। चलिए आपके कृपा से, भगवान की कृपा से, आपके दुआरी पर अगर कभी भी आवे कोई तो अगर नसीब में हुई तो एग्जाम गावे खतरा
11: बिल्कुल।
10: ये नोएडा का मेरा दोस्त है ना, वो गुरदीप, वो भी बोलते है कि यार तुम्हारे घर में चलूंगा तो यार भारती सिस्टर से भेंट करूंगा यार। हम बोले एकदम यार बिल्कुल चलना यार, चलना, मैं घुमा करके लाऊंगा अपने देश में से।
11: जी जी।
10: और सब मैडम बताइए, आप कैसन बानी अभी?
11: जी जी हम ठीक बानी, बस थोड़ा सभी से बातें होता अभी।
10: अच्छा चलिए बढ़िया बा, मौसम कैसे कि खराब चलता ना, दो चार दिन हमारे सर्दी खांसी अपना ना हो गए मैडम की हालत खराब कर दिल।
11: हाँ मौसम की वजह से हो बासन।
10: हेलो नमस्ते मैम।
11: जी नमस्ते
10: मैम, गाना जो बताया ना खेसारी लाल जी का, हम दोनों खेसारी लाल के फैन है मैम।
11: अच्छा जी।
10: जी अब गाना जब हम खेसारी लाल के ही गाने पसंद करते हैं और गाना मैम यही होना चाहिए
12: वही वाला गाना
10: हम काते लई हो। ये गाना जितना रेडियो रेमियम सुनने वाला है सब श्रोताओं को और मेरे दोस्त है गुरदीप सबसे पहले आपको सुनवाना है।
11: जी जी बिल्कुल ठीक है विकास जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
10: अच्छा ओके ठीक है नमस्ते मैम।
11: जी नमस्ते सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: हम स्वागत है बोल रहे हैं रामाजी प्रसाद
0: जी। जी कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी, दिनों निमन भइल बा, रात भर बरखा बरसल बा, खूब बढ़िया मस्ती आगे लगाता।
0: हाँ बारिश तो भइल बा,
1: आइब्रा हवा बहुत खूब बढ़िया। तो गाना सुना दी पुरवा हवा पर
0: जी, बता दी
1: सावन के महीना पवन करे झूमे जैसे बनवा ना मोर
0: जी। जी और गाना के सुनवाए के भी चाहते नी
1: रेडियो रिमझिम सब कोई सुनता, सब कोई सुनी।
0: चलिए ठीक बा, उसे खाना उना हो गए बचना रहो।
1: खाना तो खाना बना छाना रहा, पूरी या खीर आलू सब्जी का सब्जी खूब मस्ती बा खाना खाए में।
0: हाँ मौसम बढ़िया भइल बा, खाना भी अच्छा बने के चाहिए।
1: हाँ
0: बढ़िया बात, फिर गाना प्ले करते हैं रहो।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले चलेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 आमज़ जैट पर।
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके 90.4 FM में।
12: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो
11: जी। नाम बता दीजिए अपना।
12: हम बोल रहे हैं ओम साई टेलर, बंजारी रोड सोलूशन के सामने, गोपालगंज से, राघव जी।
11: जी जी, राघव जी कैसे हैं आप?
12: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से। आप लोग कैसे हैं, पूरी टीम आप लोग सुनाइए
11: जी। सब कोई बढ़िया यहाँ पे भी।
12: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए बारिश के दिन में।
11: जी जी।
12: और मैम, सॉन्ग सुनना है हमको, दिल है बेताब पिक्चर का, क्या तुम्हें खाता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है, यही सॉन्ग चला दीजिएगा। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, स्पेशल मैं आपको टीम को, ठीक है?
11: ओके, गाना बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए।
12: दिल है बेताब पिक्चर मोदी का, या तूने खाता है ए गुलशन, मेरे दिल पर आने वाली है।
11: तो क्या मुझे गा के बताएंगे ये दो लाइन?

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मायर एमपी से।
1: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
0: बस ठीक है मैम, बस हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रहा है मैम, और आपके यहाँ भी भेजे तो सुनने में मिल रहा अच्छा बारिश हो रहा मैम आपके वहाँ भी।
1: जी जी बारिश तो हो ही रही है।
0: जी जी मैम, हमारे यहाँ कल दोपहर 2 बजे से चालू हो बारिश, तो अभी भी बारिश हो रहा है। तो बैठे थे और फोन लगा रहे थे, हम सोचे चलो अभी टाइम हो ही गया है तो फोन लगाते, नहीं टाइम तो समाप्त हो जाएगा।
1: जी
0: जी जी, जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी आज तो बारिश हो रहा तो सुनवा दीजिएगा बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे कितने। जी बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे आपको कितने रेडियो रिमझिम लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-300-99-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
9: नमस्ते मैम।
8: नमस्ते,
9: कैसे हैं?
8: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं?
9: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
8: तो क्या कर रही थी?
9: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
8: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
9: जी
8: तो नाम बता दीजिए अपना।
9: मैं शबनम सिद्दीकी की बात कर रही हूँ।
8: और कहाँ से?
9: जी खाल से।
8: चलिए, तो शबनम जी कौन सा गाना सुनिए आज?

0: वाला सॉन्ग सुनिए, ये गाना तो बहुत ही अच्छा है
1: जी मैम।
0: तो सबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, आपको चाहते हैं।
0: ओके सबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी हाँ मैम, आप माइंड में लग रही है, आप जान सकते हैं
0: जी,
1: आपका नाम जान सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
1: आप न्यू लग रही है?
0: हाँ जी,
1: पहले बार आपका मेरी को हो रही है।
0: जी जी, आपकी आवाज कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
1: मैंने बोला की मेरी तो खराब हो गई है।
0: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम,
0: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, मैं आपसे कुमारी बोल रहे हैं।
1: जी मनीषा जी, कैसी हैं?
0: मैं तो क्या बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
0: अभी कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो
0: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को बोल रहे हैं, सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
1: जी, तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: मैं खाना खा लिया है आप?
1: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
0: हाँ मेरा भी हो गया है। तो गाना सुनवा दीजिए।
1: बता रही है,
0: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
1: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
0: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
1: कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
0: जी हम आपको, भाभी मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
1: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009394911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
12: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
11: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
12: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
11: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
12: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
11: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
12: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
15: Excuse me, boss. You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ। समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम दर्शाना है यानी टाइप करना है, और हमारे नंबर 7277-1665 पे सेंड करना है। फिर कुछ ही समय में आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं या किसी को सुनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने गाने की फरमाइश कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, जुड़ गए हैं, कैसे हैं। हम भी ठीक हैं और एक सॉन्ग सुनना है। फिल्म है जंजीर, रफ़ी जी और लता जी का शोर है और सॉन्ग है दीवाने हैं दीवाने को ना, डेडिकेट आप लगाए थे सभी मित्रों और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर रक्सौल नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए आपकी फरमाइश के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं बिट्टू कुमार सिटी बेगूसराय, मेरा गाना है। बिल्कुल आपका गाना है तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश बिल्कुल पूरी करेंगे। यहाँ पे अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जय महाकाल, मिथुन शर्मा बेंगलुरु से गाना सुनना चाहते हैं। गाने का बोल है उसका मत बन जाना जियोगी। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने की फरमाइश यदि है तो पूरा करेंगे, पुराने होंगे तो ही। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मैं रंजीत कुमार शर्मा विद माय वाइफ सीमा शर्मा, मुझे सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और साथ में आपकी वाइफ की भी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना पतली कमर लंबे बाल, सुरेश शाह जी त्रिपुरवा से मैसेज किए हुए, तो बिल्कुल आपका स्वागत है सुरेश शाह जी। और आगे मैसेज, सोनू भाई नमस्कार और सभी को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाम अंकुश कुमार गोपालगंज से, बिल्कुल आपका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और आप साधारणतः गाने की फरमाइश करें बिल्कुल पूरी करेंगे हम, न आप भजन की फरमाइश करते हैं तो आप भजन की फरमाइश ना करें, चाहे कोई भी भजन हो आप गाने की फरमाइश करें, फिल्मी गाने आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आकल टोला से गाना सुनना है। बिल्कुल सुनाएंगे, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर, ओहो सफरोज जी की ही मैसेज। आगे मैसेज लिखा गया है, सफरोज जी आपसे निवेदन है कि आप एक ही नंबर से मैसेज करें, दो दो नंबर से मैसेज ना करें। अगली मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते नमस्कार, आज मुझे गाना सुनना है, गाने रात कली एक ख्वाब में आई। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में शगीर अंसारी जी तेजपुर आसाम से जुड़े हुए हैं और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी को। तो बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी की जाएगी, आपकी भी फरमाइश पूरी की जाएगी। फिलहाल हम वीरेंद्र गुप्ता भैया जी के फरमाइशों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला फरमाइश उन्हीं का प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

रेडियो रिमझिम 94 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और भी हम सभी वीरेंद्र गुप्ता भैया जी की फरमाइश सुन रहे थे सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो हमारे पास केवल पुराने गाने की फरमाइश करें, तभी आपकी फरमाइश हम प्ले कर पाएंगे और आप सुन पाएंगे, क्योंकि रात्रि का कार्यक्रम है। आप पुराने गाने की फरमाइश करें। आगे मैसेज जो दो पहुँचे हुए थे और उन मैसेजों में नए गाने की फरमाइश पहुँची है, जिसके वजह से इनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं रंजीत शर्मा जी की, और इनके तरफ से लाइन लिखा गया है, तड़प के देखो किसी की चाहत में तो पता चलेगा कि इंतज़ार क्या होता है, यूँ ही मिल जाए कोई भी ना चाहे तो कैसे पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। बिल्कुल अच्छी लाइन। और इनके तरफ से गाने का फरमाइश पहुंचा हुआ है, जिंदगी जहर बनाऊ लू तो सनम बेवफा हो गई लू हो, पवन सिंह का है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और आप सब परिवार एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
6: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण, MD फिजिशियन, अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड, गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे, आजाद नगर, गोपालगंज।
7: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
8: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
2: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27।
0: 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेम छम 94.4 FM पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे सुरेश शाहजी की, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं पतली कमर लंबे बाल, तो आपकी फरमाइश बिल्कुल पूरी की जाएगी। कुछ मैसेज पहुंचे हुए देखा जाए फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है ललीपॉप लगे लो, लेकिन आप कौन है अपने तो परिचय दे। आगे मैसेज लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया नमस्ते, MD नौसाद दरभंगा बाजीतपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में MD नौसाद जी, बने रहे हमारे साथ और गाने का बोल है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है, तो आप बन रहे हमारे साथ। मिथुन शर्मा जी आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर सॉन्ग में सत्यम जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है लिखा गया है कि हाय मैं कमलेश जी ब्लेज सबिया फील्ड गोपालगंज से और मैं भी जुड़ चुका हूँ, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है फिर से रिपीट किया गया लॉलीपॉप लगे लो, तो आप कौन है अपना परिचय और कहां से मैसेज कर रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को कहां से सुन रहे हैं ये तो बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा कार्यक्रम आप यहां से सुन रहे हैं। तो आप बताते हैं तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी के गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के गाने सुन रहे हैं हम सब रेडियो रेम सेम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है इसमें फरमाइश की। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। और जो भी सूरतगढ़ मैसेज किए हुए हैं स्थिर हैं, आपकी फरमाइश एक ही करके पूरी की जा रही है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। प्रणाम भाई, कैसे हैं? ठीक हैं। सभी दोस्त कैसे हैं? ठीक है। सुपर गाना बा, बिल्कुल सुपर गाने के फरमाइश किए हुए हैं सुरेश शाह जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है। मेरा नाम है मोहित गुप्ता, मुजफ्फरपुर से हूं और पुणे से सुन रहा हूं। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे मोहित गुप्ता जी। और आगे बढ़ते हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं। और सफरोज अली के तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है किशोर कुमार जी की आवाज़ में। गाने का बोल दिया गया है कभी बेकशी ने मारा। तो प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665,
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज

0: ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

थोड़ा सा ब्रेक हो गया ख़त्म और ब्रेक बाद में आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और लिखा गया है कि हाय सुनो सर, मैं सुरभि फ्रॉम गोपालगंज से और शौक सुनना है, तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। शौक की फरमाइश है तो पूरा करने की खुशी से। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है बुलेट चौधरी जी, बढ़रिया थाना क्षेत्र तीन फड़िया से जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और बंदर हमारे साथ गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि ओहो मोहित जी, आपके द्वारा फरमाए गए गाने हम नहीं पूरा कर सकते हैं, पहले जो गाने के फरमाइश किए हुए हैं उन गानों को प्ले करने की कोशिश रहेगी, लेकिन अभी जो बता रहे हैं उस गाने का फरमाइश हम कतई पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो सर, मेरा गाना बजा दीजिए। बिल्कुल बजाने की कोशिश है और एक एक करके फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपकी वो फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और यहाँ पे गाने की फरमाइश करते हैं मिथुन शर्मा जी, गाने को चेंज करते हुए गाने का बोल देते हैं दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया। प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

रेडियो एम सी 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और आगे मैसेज पहुंचे हुए हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। गाने की फरमाइश करते हैं शगीर अंसारी जी तेजपुरा शाम से, और डेडिकेट करते हैं दिलीप राम जी को। तो चलिए दिलीप राम जी आप एंजॉय करें और साथ में हम सब भी हैं, सुनते हैं।

टेडोरियम झीम 90.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और काफी प्यारा सॉन्ग रातें खली एक ख्वाब में आई। फिर आगे गाने की फरमाइश पहुंचे हुए तो आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आगे गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे MD97 दरभंगा भाजीतपुर से मैसेज किए हुए हैं तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने। हम सभी यहाँ पे एक ही करके फरमाइश पूरा करने की कोशिश है जो भी श्रोतागढ़ मैसेज किए हुए हैं। अभी तो मेरे पास बहुत कम समय है तो चलिए गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: राणा जी खबर पक्को है।
1: कमल के गाने सुनने हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे शो चल रहा है। इसमें इस फरमाइश का तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा
2: दुश्मनी लड़ने का मतलब है।
1: और आगे मैसेज पहुंचे हुए ओम प्रकाश गुप्ता जी, सर नमस्ते, कैसे हैं आप? शौंग छूले छूले आ मुझे छूले, महानता मूवी से तो स्वागत है। और कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चुका है तो अंतिम गाने प्ले करना है और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि समय आगे इजाज़त नहीं दे रहा है। आगे मैसेज हमारे पास सभी कई हैं जो गाने की फरमाइश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है और आग्रह है कि आप कल जुड़े। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश हम प्ले कर सकें। आगे मैसेज अंतिम गाने प्ले करते हैं सुरभि की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है। भोली से सूरत आँखों में मस्ती, दूड़ खड़ी सरमाए आए हाय। चलिए आपके गाने हम प्ले करते हैं और इसी के साथ इस कार्यक्रम को भी समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक आप इंजॉय करते हैं रहे रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
3: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। जी हाँ, 9852 78 8291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो दोस्तों, बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और जब तक हमारे प्यारे प्यारे लिसनर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक आप सभी के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करूंगी। और गाने के बोल हैं, दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, और वीर मूवी का गाना है। तो चलिए गाना आप सभी के लिए प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ऑनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमा।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, सब लोगों को बोल दीजिएगा। तो जी, मैंने सबको बोल दिया, और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, आ गई नहीं हमूँ, और कैसे हैं आप, वाओ सुपर सॉन्ग और बहुत ही सुंदर सॉन्ग ओपनिंग, मस्त लगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मूड फ्रेश कर दिए हैं, थैंक यू मैम इतना प्यारा सा सॉन्ग लाने के लिए, और अभी आए हैं और एक गाने के बाद ही प्रचार चला दिए, और थोड़ा और चलने दीजिए मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, तो ऐसी बात नहीं है, कुछ कभी कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो डियर भारती जी, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मेरा आज सॉन्ग है और लिंक भी भेज दिए हैं। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र बरौली से, तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले करूँगी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं भारती जी, सदाम हुसैन फ्रॉम रसीद चक से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा, और से जुड़े हुए हैं, और इनकी तरफ से काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मैं मनीष रजाक फाजिलगंज से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ा हूँ, और मुझे भी और लिख रहे हैं क्या हालचाल है, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और ओपनिंग सॉन्ग नाइस सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं, और मैसेज पहुँचा हुआ है सरफरोज जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम, सरफरोज अली गाना सुनना है, और आज मेरा एक सप्ताह हो गया है। तो जी बिल्कुल आपकी एक सप्ताह पूरी हो चुकी है, और इनकी तरफ से वॉइस के माध्यम से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए जानते हैं क्या इनकी।
1: हेलो भारती मैम, हम सफरोज अली बोल रहे हैं गोपालगंज से, हमको गाना सुनना है दिल दिल ये दिल, और आज मेरा एक सप्ताह कंप्लीट हो गया, सुनाइएगा।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना दिल दिल दिल ये दिल। और गाने की जो सिंगर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक और हिमेश रेशमिया हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच चुका है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज हम बहुत खुश हैं और ये गाना सुन के। और गाना आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो जी, आपकी गाने की जो फरमाइश होती है काफ़ी बेहद खूबसूरत होती है और काफ़ी गाना अच्छा था और सुन के मज़ा आ गया। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैम तो आपसे गुस्सा थे छः दिनों से सुनना बंद कर दिया था और आपने मेरा गाना नहीं बजाया था, लेकिन आज जुड़ा हूँ और आज मैं फिर आ गया सिद्धार्थ पासवान बरौली से। तो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जी, मैंने आपका गाना उस दिन बजाया था, आप बोले थे और गुस्से में थे, उसी दिन मैंने गाने आपको बजाया हुआ था। और इसी के साथ ही अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि आज लेट हो गया है और अभी सोकर उठे हैं तो सो भी चालू कर रहे हैं। और कहाँ हाल बा भारती जी, ज़रूर बताएं। और कहाँ मनोरमा जी, कहाँ बानी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मनोरमा जी तो हो कि अपना काम में बानी। और गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि कहो उत्तम भाई का हाल चाल बा। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप। और भारती मैम और हमारा एक गाने की फरमाइश है, गाने का नाम यहाँ पहुँच चुका है। तो जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम अजय है और मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ। और लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून, कैसी हैं और मुझे एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं भारती मैम नमस्कार, मैं राम कुमार पांडे लंदन से और मैं भी जुड़ गया हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं दीनानाथ यादव कुवैत से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, हम भी गोल्डन टेलर सुपर सॉन्ग और हम भी शो से जुड़ गए हैं और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, हमको भी एक गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि मिथिलेश कुमार शर्मा घर लोहिजरा गाना सुनना है और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर उससे पहले यहाँ जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई थी और गाना सुनना चाहते थे, नाम है नमस्ते भारती जी, लिख रहे हैं रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं और हमारा भी फरमाइश है और गाने की बोल यहाँ पहुँचे हुए और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है और गाने की बोल है तेरी चुनरिया दिल ले गई। और लिख रहे हैं भारती जी गाना पूरा बजाइएगा। तो जी बिल्कुल, चलिए आपके गाने को बिना देरी किए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आएं कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
9: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 FM में, और हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:35 हो रहा है और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको एक और बात बता दूं कि आप गूगल के प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड करके आप रेडियो रिमझिम के सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी फ़ोन के माध्यम से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं गणेश भैया, नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम मस्त हूँ मैं। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख रहे हैं सिद्धार्थ पासवान, सॉरी मैम, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और इसमें सॉरी क्या बोलना। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? और मैं अरविंद कुमार, अभी हम कन्हैया एग्रो पुणे से आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, और साथ में कार्तिक सर और पवन सर, और मुझे भी एक गाना सुनना है, और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जी। आपके भी गाने को प्ले करूँगी, पर उससे पहले यहाँ एक दो फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम भारती मैम एंड मनोरमा मैम, हम दिलवी कुमार ठाकुर मिर्जापुर टू मोहल्ली पंजाब से, और आज मेरा भी फरमाइश है, लिंक भेज दिया हूँ, और डेडिकेट ऑल फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी आपके भी आज गाने को प्ले करने का दिन है और ज़रूर प्ले होगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग बोल दीजिएगा, जिनकी भी गानी थी, और लिख रहे हैं चुनरिया, तेरी चुनरिया सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है, और आपको कैसा लगा भारती जी? भारती दीदी ज़रूर बताइए, और मेरे को बहुत अच्छा गाना लगा है यह, और भारती दीदी करिश्मा के का हाल वह पूछ के बताई, और हमरों से गुस्सा बाड़ी करिश्मा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी करिश्मा जी जुड़ेंगी तो जरूर पूछ के बताऊंगी। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि तेरी चुनरिया दिल ले गई, वेरी नाइस सॉन्ग। और मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से मैसेज पहुंचा हुआ है। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ रोहित देहरादून से, और गाना सुनना चाहते हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी गाना बजाने के लिए धन्यवाद। और रंजन कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुंच चुका है, और जी आपके गाने तो काफ़ी बढ़िया थे और काफ़ी सारे लिसनर की तरफ से आपके लिए मैसेज पहुंचा हुआ है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे जो कि हमारे पास जो गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं गोल्डन टेलर और गाना सुनना चाहते हैं। और गाने की बोल है छम्मक छल्लो जरा धीरे चल लो, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी के आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना छम्मक छल्लो, और इसी के साथ यहाँ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गोल्डन टेलर जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि

0: लिख रहे हैं कि गुलशन से गुलफाम भेजे हैं, सिंगार से भारतीय मैम के लिए सलाम भेजे हैं, और हमारा नाम एमडी सरफराज है, और मैं मैम प्लीज़ मेरा भी एक गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो जी, आपके गाने को मैंने प्ले किया था गुरुवार को, और प्लीज़ आपके गाने को मैं उसी दिन प्ले करूँगी, अभी मैं प्ले नहीं कर सकती। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, मैम नमस्कार, मैं भी जुड़ गया हूँ रेडियो रिमझिम से, और हमारा नाम है सुनील कुशवाहा, मैहर एमपी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि राम कुमार पांडे जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँचा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या है इनका फीडबैक मैसेज।
1: भारती मैम नमस्कार, प्रणाम है, और साथ में सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार प्रणाम है। मैं राम कुमार पांडे, और बहुत अच्छा अच्छा गाना चल रहा है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है अच्छा अच्छा गाना सुनाने के लिए। कुछ अच्छी बातें कहूँगा। कहते हैं, सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, यदि तुम चाहते तो श्री राम का भेष धारण करके भी सीता का हरण कर सकते थे, फिर तुमने साधु का ही भेष क्यों धारण किया? रावण ने उत्तर दिया, जब मैंने श्री राम का रूप धारण करने का विचार किया, तब संसार की हर स्त्री मुझे माँ के समान दिखाई देने लगी, इसलिए मैंने वह विचार त्याग दिया और साधु का भेष इसलिए धारण किया ताकि समाज को यह दिखा सकूं कि जिस रूप में लोग सबसे अधिक विश्वास करते हैं उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो सही बात है। और भारती मैम कहूँगा, दिल में क्या है आपके, कभी बता भी दिया करो।

0: यूं मुस्कुराकर हर बात छुपाया ना करो, हम तो पढ़ लेते हैं आपकी आंखों की जुबां, बस कभी दिल की किताब भी खोल दिया करो, कभी दिल की किताब भी खोल दिया करो। तो भारती मैम, पति पत्नी में हो रहा झगड़ा पति के एक वाक्य से रुक गया, बोला सुंदर हो इसलिए कुछ भी कहोगी क्या। तो इसके बाद तो भारती मैम पत्नी ने कुछ नहीं कहा और पति को चाय के साथ भी बिस्कुट खिलाया। तो इसीलिए कहते हैं याद रखिए, हमें रोग से लड़ना है, रोगी से नहीं, रोगी से नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए। अब भारती मैम, एक दफ़ा की बात है, कुंभ का मेला लगा हुआ था तो वहाँ नागा साधु लोग भी बहुत जाते थे नहाने के लिए। तो उधर से देखा कि एक नागा साधु नहा करके निकला और उधर औरतें लोग हैं, नागा साधु से अपना अपना मन्नतें मांगने लगी, हे नागा बाबा हमको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे लोग आशीर्वाद लेने के चक्कर में, मतलब कि उनके पास जाकर के आशीर्वाद ले रही थी। तो वो जो नागा साधु थे बोले, अरे भाई हम कोई नागा साधु नहीं हैं, मैं तो नहाने गया था, मेरा कमबख्त कोई कपड़ा ही चुरा लिया, कोई कपड़ा ही चुरा लिया। तो सब लोग नागा साधु नहीं होते हैं। तो नमस्कार प्रणाम।
1: और हमेशा की तरह आज भी रामकुमार पांडे जी की तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही है कि नमस्ते भारती दी, कैसी हैं आप बताइए ज़रूर। मेरा नाम रानी कुमारी और मेरा घर है हरखुआ और मेरे तरफ से उत्तम सोनी जी को नमस्ते, आप बताइए उत्तम सोनी जी कैसे हैं। और रानी जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हम गाने को भी प्ले करेंगे और यहाँ पर जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है हमारे पास राकेश भारती जो कि बक्सर से जुड़े हुए हैं और अपने दोस्तों के साथ जैसे कि मंगरू यादव और बलिराम यादव जी के साथ शिल्पी राज का गाना सुनना चाहते हैं और गाने की बोल है बर्बादी हुई। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
3: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
2: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
3: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
2: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
4: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
5: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
4: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
5: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
4: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
5: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:53 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो आप सबको एक और बात बता दूं कि आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर फेसबुक पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल रेडियो रिमझिम की वेबसाइट से जुड़कर जान सकते हैं और लाइक कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती दी नमस्ते, मैं करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से और का हलवा भारती दी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं। और लिख रही हैं कि प्लीज़ दी गाना बजा दीजिए। तो जी मैं आपको बता दूं कि आपके गाने को कल मनोरमा जी ने प्ले किया था दोपहर न्यूज़ के बाद, तो आज मैं आपके गाने को प्ले नहीं कर सकती। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है करिश्मा जी की तरफ से जो कि लिख रही हैं उत्तम सोनी जी के का हाल चाल बा दी और रानी दी के का हलवा, और मैं करिश्मा कुमारी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं मैम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगा भोजपुरी गीत। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अरिजीत सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं उत्तम सोनी जी की, रानी जी नमस्ते कैसे हैं आप, ये जो जंग छेड़ के आराम से बैठे हैं ये ठीक नहीं है, हम बड़ी दुविधा में पड़े हैं, देवी दर्शन दीजिए। और आप कहाँ गए थे? उत्तम सोनी बर्तन भंडार में, वहाँ से थोड़ी दूर पर आयुष ज्वेलर खोले हैं, वहाँ आना चाहिए था आपको, लेकिन थोड़ा ये मेरा भी गलती है, वो बैनर में चेंज करूँगा, टाइम का प्रॉब्लम है बस, इसलिए सो सॉरी। और लेकिन दोनों बोर्ड पे मेरा नंबर था, आपको एक कॉल कर लेना चाहिए था, और ये बिस्किट के बातें हजम नहीं हो रहे हैं। तो रानी जी सुन रही हैं तो बिल्कुल आपको ज़रूर जवाब देंगे। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है हमारे पास राकेश भारती जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं थैंक यू गाना प्ले किए इसके लिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी मेरा सॉन्ग लास्ट में बजाया जाता है और प्लीज़ वेट कर रहा हूँ, सुना दीजिए। और जितेंद्र बुरौली से जुड़े हुए हैं, तो जी आपके गाने को लास्ट में प्ले नहीं किया जाता है, बीच में ही प्ले किया जाता है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि कैसी हैं, मैं भी जुड़ गई हूँ, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और आज मुझे भोजपुरी सॉन्ग सुनना है और सॉन्ग की बोल यहाँ पहुँची हुई है। और दही भत्ता से उषा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, हम धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं और चंडीगढ़ से आपको सुन रहे हैं, और यहाँ इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो जी बिल्कुल, आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ जो कि हमारे पास गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, अरविंद कुमार जो कि गाना सुनना चाहते हैं अभी, और लिख रहे हैं अभी हम कन्हैया एग्रो पुणे से आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, और साथ में कार्तिक सर और पवन सर भी सुन रहे हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं। और यहाँ गाने की बोल जो है, गाने की बोल है, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, और काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना था। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अरविंद कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुंच चुका है। और यहाँ पे जो कि अगला मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग जी, भारती जी ये गाना सुनना है, ये गाना जिसने सुनाया उसको दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? तो जी बिल्कुल आपका भी नंबर आएगा, थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि का हो उत्तम भाई, का हाल चाल बा? कल अर्चित सिंह का भी जन्मदिन है और हमारे उत्तराखंड की पावन धरती पर आपका स्वागत है, आना जरूर हो। कमरान भाई भी आ रहे हैं। और उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, सरफरोज जी की नाइस सॉन्ग मैम। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं, करिश्मा जी नमस्ते, बिल्कुल मस्त हूँ जी, आप कैसी हैं? और लिख रहे हैं वाओ सुपर सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नैन टेलर शिवराजपुर से जुड़े हुए हैं और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा। पर यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि नींद की क्या गजब का चीज़ है, नींद भी क्या गजब का चीज़ है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। और मैसेज करने वाले हैं जलंधर पंजाब से गोविंद कुमार जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं संजय नवादा से और सॉन्ग सुनना है और नाइस सॉन्ग, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार गुड आफ्टरनून, मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। मेरा भी एक सप्ताह पूरा हो गया है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं विनोद चौहान। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मिथिलेश कुमार चौधरी नाम है, मेरा नाम है मिथिलेश चौहान और मेरा को मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, मोबाइल से बोलता हूँ तो लिख जाता है और मैडम जी इसके लिए गलती से लिखा जाता है, इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो जी आपका नाम मिथिलेश एक और नाम है यहाँ जो कि मिथिलेश नाम से हमारे लिसनर जुड़ते हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि माय प्रिय आरजे भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास और गाना सुनना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और जानते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम।
0: जी नाम बता दीजिएगा अपना।
1: मेरा नाम है गोल्डन अंसारी।
0: गोल्डन अंसारी
1: जी।
0: और कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना सुनवाइएगा चेहरा तेरा किताबी किताबी, सुनवाना चाहते हैं सबसे पहले आपको और रेडी रीजन के सारे लिस्नर को।
0: तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
1: थैंक यू मैम। थैंक यू।
0: एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782891, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है गणेश जी की, भारती जी एक ऐसा रूल लगाइए कि रोज गाना बजेगा और आप दोपहर न्यूज़ के बाद चले जाते हैं और दोपहर के बाद काफ़ी मज़ा आता है, भोजपुरी भोजपुरी गाना बजता है, और मेरे ख्याल से एक एक दो हिंदी बजेंगे बाकी दोपहर के बाद भोजपुरी, पूरा भोजपुरी। और बताइए आज भोजपुरी गाने की फरमाइश आपके पास आए हैं कि नहीं। तो जी आपके लिए तो मैं आपके रोज गाने को प्ले नहीं कर सकती, और हमारे बाकी सारे लिसनर कहाँ जाएंगे अगर केवल मैं आप ही के गाना और आपकी सिस्टर का गाना यानी करिश्मा जी का प्ले करने लगी, तो और लोगों को क्या मैं घर भेज दूँ, बोल दूँ ना बजाए, अपने गाने की फरमाइश ना करें। आप ही मुझे बताइए, और हमारे सारे लिसनर से भी पूछिए तो क्या आप ही के केवल गाने मैं बजाती रहूँ और लोग कहाँ जाएंगे। और यहाँ मैसेज पहुँच गया है हमारे पास धनेश जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि ज़िंदगी में आपकी अहमियत हम आपको बता नहीं सकते, दिल में आपकी जगह हम आपको दिखा नहीं सकते, कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, इससे ज़्यादा हम आपको समझा नहीं सकते। और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं चेहरा तेरा किताबी किताबी, वेरी नाइस सॉन्ग। और मनीष रजाक जी की तरफ से मैसेज पहुंच गया है, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि दिलीप शर्मा खेम मटिहानी सिपाया से, और एक शायरी बोल दीजिएगा, और शायरी ये है कि चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, और काफ़ी बेहद खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है दिलीप शर्मा जी की तरफ से, और इनके तरफ से गाने की भी फरमाइश पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है मनीष जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं भारती जी मैं भी फरमाइश कर सकता हूँ। तो जी मैं आपको बता दूँ, कुछ ही दिन पहले आपके गाने को मैंने प्ले किया था, और गुरुवार को आपके गाने को प्ले किया था, तो थोड़ा तो और इंतज़ार करना पड़ेगा, और आपके गाने को मैं फिर गुरुवार को ही प्ले करूँगी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास मैसेज पहुँच गया है और गाना सुनना चाहते हैं और गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि जितेंद्र बरौली से जुड़े हुए हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे, और इनके तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुँच हुई है लिंक के माध्यम से है, और गाने की बोल है मैं आ रहा हूँ वापस, और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है उदित नारायण की आवाज़ में। तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे जितेंद्र जी की तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना, और मूवी है आरजू और गाने की बोल है मैं आ रहा हूँ वापस, और उदित नारायण की आवाज़ में गाना है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहे हैं कि शुक्रिया भारती जी गाना प्ले करने के लिए, और लिख रहे हैं कैसे सॉन्ग लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो जी मुझे तो गाना काफ़ी अच्छा लगा, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लिख तो नहीं रहे हैं लेकिन इनकी तरफ से फीडबैक मैसेज पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, तो चलिए जानते हैं क्या है इनका वॉइस।
1: भारती मैडम कल मेरा बर्थडे है, आप भी आना, मोटे कपड़े पहन के आना, यहाँ पे ठंडी भड़ गई है। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
0: और काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में मैसेज पहुंचा हुआ है, और मैसेज करने वाले हैं उमा शंकर जी। और जी आपका कल बर्थडे है, और इसके लिए आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे, और मैं तो आ नहीं सकती। और आप मनाइए अपना हैप्पी बर्थडे, और एक दो फोटो भेज दीजिएगा, मैं देख लूँगी और मुझे अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि डॉक्टर मरीज को एक घंटा पहले लाते तो हम इसे बचा लेते। पप्पू साली 5 मिनट पहले तो एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटा पहले क्या ज़बरदस्ती ठोक लाते। और लिख रहे हैं भारती जी मेरी फरमाइश है, प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं रोहित देहरादून से, तो जी आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। और उसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हाय का हाल बा मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है। और मैसेज करने वाली हैं ज्योति, और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले हैं अनिल जी छोटपुर से, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है उत्तम सोनी जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं उमा शंकर भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल मस्त हूँ अर्चित बाबू, और आप जियो अनलिमिटेड हैप्पी बर्थडे अर्चित सिंह, आना थोड़ा मुश्किल है बाबू। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि हस्ती मिट जाती है आसिया बनाने में, बहुत मुश्किल होती है आपको समझाने में, एक पल में किसी को भुला देना, ज़िंदगी लग जाती है किसी को अपना बनाने में। भारती जी नमस्कार, सभी दोस्तों को नमस्कार, सागिर भाई, अहमद भाई, आज़ाद भाई, सभी जो दोस्त जुड़े हैं सभी को नमस्कार है मेरा, आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा, तो जी थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा, और आप सबके गाने को एक एक करके तो प्ले किया जा रहा है, और हमारे पास अभी 4 बजे तक का टाइम है, और जी सबके गाने प्ले हो जाएंगे धीरे धीरे एक एक करके। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ था जो कि लिख रहे हैं नाइस सुपर सॉन्ग, और लिख रहे हैं कि उषा जी लिख रही हैं मुझे गाना सुनना है, और यहाँ गाने की जो बोल पहुँची हुई है, गाने की बोल है तोहरे से शुरू तोहपे ख़त्म, और शिल्पी राज की आवाज़ में गाना है। तो चलिए बिना देरी की इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि और यहाँ उमा शंकर जी की तरफ से केक और बाबू अर्जित का फोटो पहुंचा हुआ है और काफी बेहद खूबसूरत है। और केक तो पहुंच चुका है, तो ज़रूर बिल्कुल हम सब खाएंगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि अर्चित बाबू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से दिलीप प्रणाम। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी, अनिल भाई जोधपुर वाले को नमस्ते बोल दीजिएगा, रिमझिम में उनका स्वागत है। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं भारती जी, आज सन्यासी बाबा नहीं जुड़े हैं क्या? तो जी बिल्कुल नहीं जुड़े हैं, वो काफ़ी एक दो दिनों से नहीं जुड़ रहे हैं, पता नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, एफ फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, दया कुछ भी हो जाए गोली मत चलाना। और लिख रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून मैडम जी, तो मैसेज करने वाले हैं विराट यादव जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी की आने का पूरा कोशिश रहेगा बाबू। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गाना सुनना चाहते हैं और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। और उससे पहले यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ से जो मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रही हैं उषा जी की मैनी मैनी थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए। और लिख रहे हैं रोहित जी की मायके में बेटी नाराज होती है तो घर वाले सोचते हैं पता नहीं आज खाना खाएगी या नहीं, और अगर बहू नाराज होती है तो ससुराल वाले सोचते हैं आज खाना बनाएगी या नहीं। और ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। और इसी के साथ रोहित जी की तरफ से यहाँ गाने की भी फरमाइश पहुँची हुई है और गाने की बोल है कह दो ना, दिल की बात और काफी बेहद खूबसूरत गाना है। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे काफ़ी बेहद खूबसूरत सा गाना कह दो दिल की बातें। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं धन्यवाद भारती जी गाना प्ले करने के लिए। और रोहित जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं बिना देरी किए टाइम को देखते हुए मैसेज गाने को प्ले करेंगे। और यहाँ पे जो कि गाने की फरमाइश पहुँची हुई है जो कि गाना सुनना चाहते हैं अनुराग पंडित का गाना सुनना चाहते हैं। और लिख रहे हैं मेरा नाम अजय है और मैं अयोध्या से जुड़ा हुआ हूँ। और लिख रहे हैं कि अगर यहाँ यह गाना ना मिले तो कोई दूसरा बजा दीजिएगा। और यहाँ गाने की बोल पहुँची हुई है जो कि गाने की बोल है हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे। और काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है तो चलिए अजय जी आपके लिए इस गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रंजीम 90.4 FM में।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए

0: आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
1: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरी वाइफ भी सुन रही है, प्लीज सुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश कुमार शर्मा, घर लुईजरा से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है।

0: जी आपके भी गाने को प्ले करेंगे, पर यहाँ एक मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि खोया हुआ प्यार वापस मिलेगा, ऐसा बोलकर एक बाबा ने 5100 रुपये ले लिया। खोया हुआ प्यार भी नहीं मिला और अब वो बाबा भी नहीं मिल रहे हैं। और काफ़ी मज़ेदार लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि मैसेज करने वाले हैं रोहित जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय, हेलो क्या हाल चाल है। तो जी मेरा हाल चाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं सनी जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, धन्यवाद मैडम गाना बजाने के लिए। और अजय जी जुड़े हुए हैं अयोध्या से। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास जो कि अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो गाना सुनना चाहते हैं, और दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर टू मोहल्ली पंजाब से जुड़े हुए हैं और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है और वॉइस के माध्यम से भी, तो चलिए जानते हैं क्या इनकी फरमाइश।
1: नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम भारती मैम एंड मनोरमा मैम। हम दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर टू मोहाली पंजाब से, आज मैं भी एक फरमाइश भेजा हूँ, बजा दीजिएगा। और सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको और जितने भी रेडियो और इंजीन सुनने वाला सोता है सभी को, धन्यवाद।

0: सुन रहे थे काफी बेहद खूबसूरत सा गाना, तू एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना था और काफ़ी बेहद खूबसूरत था। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धन्यवाद भारती मैम गाना बजाने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद प्रणाम। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप कुमार ठाकुर मिर्ज़ापुर टू मोहल्ली पंजाब से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं अब मेरा सॉन्ग प्ले करने की कृपया कीजिए। तो जी आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा, पर इससे पहले यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची हुई है और काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, और इनका मैसेज 12:37 का ही आया हुआ है और लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है। तो इनकी तरफ से जो वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है, चलिए जानते हैं कौन है और कहाँ से है।
1: हेलो मैम नमस्कार, मैं विनोद कुमार चौहान विलेज कवहीं का रहने वाला हूँ, अभी मैं मुंबई में हूँ। मैडम मेरा भी 1 सप्ताह पूरा हो गया है, आज मेरे को भी गाना सुनना है। गाना का बोल है तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, यही सॉन्ग सुना दीजिएगा। मैं कुछ दोस्तों को नाम लेना चाहता हूँ, अवधेश चौहान, सुभाष सिंह, सुपेंद्र, इंद्रजीत, भोला, प्रेम चौहान, जयराम, हरिराम, ये सब दोस्तों के साथ सुनना चाहता हूँ। ये नियम तुम्हारी है।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइंस तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करे 85070-32042 पे।
9: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
10: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस का शो। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है सुपर सॉन्ग, और लिख रहा है नर्क में जाकर यमराज को बोल दिया ज्यादा ज्ञान ना दो, तुम भी नर्क में ही हो, अब कढ़ाई में तेल गर्म कर रहे हैं, शायद जलेबी खिलाएंगे। और काफी मिलदार लाइन पहुंची हुई है रोहित जी की तरफ से, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना कब बजेगा। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने को प्ले किया जाएगा ज्योति जी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग और मनोरमा दी की आवाज़ बहुत मिठाई जैसी लगती है, और वैसे ही आवाज़ आपकी भी लगती है। और मैसेज करने वाले हैं गणेश जी, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना प्ले कर दीजिए, और अपनी वाइफ के साथ गाना सुनना चाहते हैं मिथिलेश कुमार शर्मा जी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं, और इनकी तरफ से जो गाने की फरमाइश पहुंचे हुए, काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना है, और गाने की बोल है मेरे जीवन साथी। तो गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग सुन रहे थे मिथिलेश कुमार शर्मा जी की तरफ से काफ़ी बेहद खूबसूरत गाना मेरे जीवन साथी, और कुमार शानू साधना सरगम की आवाज़ में ये गाना है और बहुत ही खूबसूरत है। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ उत्तम सोनी जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं कि रानी जी दोनों दुकान मेरी ही है, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, बस अफसोस बिस्कुट का है जो आपको नहीं खिलाए। और लिख रहे हैं कि वाव गुनगुना लीजिए जी मैम। तो यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हमारे पास, लिख रहे हैं नमस्ते, मैं सुरेश कंडेला जोधपुर राजस्थान से और बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लगता है, आज मेरा भी गाना बजवा दो। और मैं इनकी तरफ से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ जो कि हमारे पास आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी, पर दोपहर न्यूज़ के बाद अभी टाइम होने वाला है और जिनकी फरमाइश पहुंची हुई थी दोपहर न्यूज़ से पहले अभी पहुंचा हुआ है और गाना सुनना चाहते हैं नैन टेलर शिवराजपुर से जुड़े हुए हैं और भोजपुरी गाना सुनना चाहते हैं। और यहाँ गाने की बोल है जो कि तीन थान गहना फ्रीबा, और बेहद खूबसूरत गाना है खेसारी लाल जी का। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रंजीम 90.4 FM में।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज़ की तरफ और हमारी मुलाकात आपसे होगी फिर दोपहर न्यूज़ के बाद। और जिन जिन लोगों का गाना मैंने प्ले नहीं किया है दोपहर न्यूज़ के बाद उनके गाने को प्ले किया जाएगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए और इंतज़ार कीजिए, तब तक आप

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
7: श्रोताओ, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: review cooperation in defense, security, trade, investment, energy and technology on sidelines of AIIB annual meeting in Doha. Election Commission issues notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. And in Asian Games 2026, Neeru Tanda scripts history with India's first individual Asian Games gold at Women's Individual Trap event. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
2: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
4: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
5: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी, हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर। तो मुझे मालूम था कि बोरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें, उनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है।
4: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वाकफ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
6: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है, महिला लोगों के लिए एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वाकफ बोर्ड और वाकफ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वाकफ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वाकफ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
4: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कल्याण लहा की रिपोर्ट।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
7: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
1: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रूपाई वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रूपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
8: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भारद्वाज के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
1: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
9: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
16: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
15: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
16: हाँ बेटा डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
15: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
16: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
15: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
13: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
14: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
13: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
14: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
13: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
14: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
13: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
14: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
17: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
18: रेडियो रिमझिम
17: सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो रिमझिम।
6: सुनो दिल।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: कुछ। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399।

छोटी सी ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527881291, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं।

जी तो प्लीज़ आप लोग अपना नाम मेंशन करिए ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिखना है, गुड आफ्टरनून मनोरमा जी, क्या हाल है ज़रूर बताइए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, और आप बताइए कि आप कैसे हैं। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी नमस्ते। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपको भी मेरी तरफ से नमस्ते। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते मैं सुरेश केरला जोधपुर राजस्थान से, बहुत टाइम से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और बहुत बहुत अच्छा लगता है, आज मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, हमें भी गाना सुना दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हाय का हाल वा मैम, और मैसेज करने वाले हैं ज्योति। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इन्होंने मैसेज किया कि गाना कब बजेगा, एक बजे का मैसेज किया हूँ, 2 बज गया, कब बजाइएगा, इंतज़ार है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और इंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
3: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है। जो के लिख रहा है, नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवाल हिमाचल प्रदेश से, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी है जो कि लिख रहे हैं, कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आ जाता है, कब तलक बाया करूं दिल की बात, हर सांस में अब तेरा एहसास आ जाता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं मुकेश जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैं प्रवीण कुमार जिला सिवान से, मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा नाम धनंजय कुमार सिंह, जिला सिवान से, पकवलिया टोला बलुआ से हूँ, और मेरा भी गाने की फरमाइश है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, मेरा जो कि लिख रहा है, भोजपुरी गाना से शुरुआत हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैसेज करने वाले हैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और मैसेज किए हैं जो कि लिख रहा है, जो कि लिख रहा है, मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण से, आप आए बाहर आया रेडियो रिमझिम 90.4 FM से, मनोरमा जी उस समय से खोज रहे हैं कि मेरे मनोरमा दीदी कब आएंगी। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा जो कि लिख रहा है, मनोरमा मैडम जी प्रणाम तहे दिल से, और मैं मिथिलेश चौहान जी हम बोला था नहीं, और मैसेज किए हैं कि कैसन बानी। तो जी बिल्कुल ठीक बानी, रहुआ बताएं कि रहुआ कैसन बानी। और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है कि मैम हमारा भी गाना सुना दीजिए, हम कश्मीर से जुड़ चुके हैं और श्रीनगर MD सरकार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपके भी, और आपके भी गाने को हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून भारती जी, वेफाई का सॉन्ग सुना दीजिए, पवन सिंह का गाना, और डेडिकेट करना चाहते हैं प्रमुख भाई दिनेश मिश्रा जी और सभी लिसनर के साथ। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं, और बहुत ही बेहद खूबसूरत सा सॉन्ग है, और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे बेवफाई के आंसू, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है, हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। और मैसेज करने वाली हैं हजरा सूरत से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, मैं भी जुड़ चुका हूँ गाना सुनना, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाले विक्रम चौहान, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं, लिंक भेज दिए हैं, गाना बजा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर फरमाइश पहुँची हुई जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते, मैं सुरेश किल्ला जोधपुर राजस्थान से, और मेरा भी गाना चला दीजिए। और गाने के बोल हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी थी, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए एंजॉय करते हैं रेडियो 90.5।

0: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
1: अरे इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
0: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
1: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
0: कहाँ?
1: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
2: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
3: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
2: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
3: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
2: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
3: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-3586 या 95-99-27-982।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84-710-30-992 या 97-65-65-750।
5: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका रेडियो जिम 90.4 FM में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहद लाइन के साथ जुड़े हैं, जो कि लिख रहे हैं, मुस्कुराहट का कोई मूल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मूल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, वैसे लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछो, जो कि पूछा हुआ है, जो कि लिख रहा है, हेलो मैम, मैं भी जुड़ चुका हूँ और गाना सुना दीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं विक्रम चौहान, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

और यहाँ पे मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहे हैं, हम भी लाइन में खड़े हैं दीदी जी। और मैसेज करने वाला है राजकिशोर देवघर झारखंड से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने के बोल है तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, और बहुत ही बेहद और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं रेडियो रंजन।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछ गया, जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं जावेद, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जावेद जी धनबाद से जुड़ गया, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहा है मैम हमारा भी गाना सुना दीजिए प्लीज़ आशीष यादव से। और मैसेज करने वाले हैं एमडी सरफराज, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ पर मैसेज पहुँच गया है जो कि लिख रहा है हेलो मैम नमस्ते क्या हाल है जी, और हमें भी गाना सुना दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं जय किशोर प्रसाद जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके गाने को भी

लिख रहे हैं कि जितेंद्र धाकर जिला, और बोल रहे कि मेरा भी गाना चला दीजिए और मोहरा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिंगजिंग 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है, थैंक यू मैडम जी गाना प्ले करने के लिए। और मैसेज करने वाले हैं जितेंद्र धाकड़। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले हैं करिश्मा जी पित्रा नारायण से। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ जो कि लिख रहे हैं, हम विश्व कुमार बी के फास्ट फूड मनीखास जिला सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश से, हमें भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है, प्रोग्राम सुनकर हम भी मैसेज कर दिए। और मैसेज करने वाले गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से, और किशोर सबलिनिया, सावित्री सबलिनिया, सुमन सबलिनिया और बेटी अंशु के साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इन्होंने मैसेज किया कि कोई भी गीत शामिल कर लेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, और मैसेज करने वाले हैं जयकिशोर प्रसाद जी, तो आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे फरमाइश पूछी हुई है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, मैं भी जुड़ चुका हूँ और मुझे भी गाना सुनना है। और मैसेज करने वाले हैं विक्रम चौहान जी, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं। और गाने के बोले आँख से झलका आंसू और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
6: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंची है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए, सुपर सॉन्ग। और मैसेज करने वाले विक्रम चौहान जी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचाऊंगा।

बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। बस कुछ देर वेट करना पड़ेगा और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पहुँचा हुआ, जो कि लिख रहा है, नमस्ते नमस्ते मैम, मनोरमा मैम, हम भी जुड़ गए हैं, कृपया हमको भी एक गाना सुना दीजिए।

साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैं से पहुँचा हुआ है जो कि है मुन्ना खान कुवैत से जुड़ गए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पे मैं से पहुँचा हुआ है जो कि लिखना है।

बहुत स्वागत है रवि जी आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो कि लिख रहा है मेरा भी गाना बजा दीजिए, और मैसेज करने वाले हैं जावेद धनबाद से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करते हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और गाने के बोल है मुस्कुराने की वजह तुम हो, तो चलिए।

अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे जावेद जी की तरफ से, और इनके तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ जो कि लिख रहे हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा मैं हजरा सूरत से, मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

बहुत ही मजेदार लाइन के साथ जुड़ी हुई है, जो कि लिख रही है कि मैं भी चल पड़ी थी मोहब्बत के रास्ते पे, मैं भी चल पड़ी थी मोहब्बत के रास्ते पे, रास्ते में ही चप्पल टूट गया और वापस आ गए और फिर वापस आ गए। और मैसेज करने वाली हैं हजरा सूरत से, और बहुत ही मज़ेदार लाइन के साथ जुड़ी हुई थी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मेरा सॉन्ग बजा दीजिए, तो ज़रूर बजाएंगे। और मैसेज करने वाले हैं धनंजय कुमार सिंह जिला सिवान से, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मनोरमा जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, डरिए मत, खुलकर बोलिए। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसे ही सपोर्ट करिएगा लो तो मैं भी इसको अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहा है हाय, मैं परवीन कुमार जिला सिवान से, मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ है जो कि मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं साजिया नवादा से, और सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग लिंक के माध्यम से भेज दिए हैं, तो चलिए आपके गाने को हम प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

जो कि मैसेज किए हैं कि लिख रहे हैं, हेलो मैम मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले हैं प्रवीण कुमार जिला सिवान से, तो चलिए आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। लेकिन इससे पहले आता है मैसेज पूछा हुआ, जो कि लिख रहे हैं, हेलो भारती जी प्रेम मरदेसिया प्रणावना कुशीनगर से, और मनोरमा जी वेरी गुड इवनिंग जी, कैसी हैं आप, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पूछा हुआ जो कि लिख रहे हैं कि मैम हमारा नंबर कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी फरमाइश को कल ही पूरी किया गया था, और इसी के साथ तो आप एक सप्ताह बाद ही अपने गाने की फरमाइश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हमारे जो न्यू लिसनर हैं उन लोग को भी तो मौका मिले अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए। और यहाँ पर मैं सब कुछ जो कि लिख रहा है, मैडम जी हमारा भी गाना बजा दीजिए, रानी मुखर्जी गाना बजा दीजिए, आपका आवाज़ है रानी मुखर्जी के जैसे। और मैसेज करने वाले हैं मिथिलेश चौहान जी, और तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आप लोग मेरा नया नाम रख दिया लो, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मिथिलेश जी, मैं आपको बता दूँ कि आपके गाने को भी हम प्ले करते, लेकिन आपका गाना कल ही प्ले हुआ था, तो अब एक सप्ताह बाद ही प्ले होगा, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे।

मेरा नाम धनंजय कुमार है और मैं जिला सिवान से हूँ और मेरा भी गाना की फरमाइश है, तो बजा दीजिए। तो मैं आपके गाने को प्ले करूँगी, तो प्लीज़ आप ऐसे गाना बताएं जो बजाने लायक हो, तो कृपया आप दूसरा गाना ज़रूर भेजिए और मैं ज़रूर आपके गाने को प्ले करूँगी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ पर मैसेज पहुँच गया जो प्लीज है। नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवर और हिमाचल प्रदेश से, और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं, दिल का क्या कसूर होता है, कसूर तो आँखों का होता है, प्यार आँखों से होता है और दर्द दिल को होता है। और बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं।

शराबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से। और बोल रहे हैं कि मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपके गाने को भी हम प्ले करेंगे। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है और मेरा भी गाना बजा दीजिए। और मैसेज करने वाले गुरु नानक पूरा पंडिता पंजाब से, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं और गाने के बोल हैं तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, और बेहद खूबसूरत सा

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे, और अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुन रहे थे, जो कि गाने के बोल था तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। और यहाँ पर मैसेज पूछ गया जो कि लिख रहा है आपका दिल से शुक्रिया, और मैसेज करने वाले गुरु नानक पंजाब से। और इसी के साथ

समय कम होने के कारण गाना सही मतलब प्ले नहीं कर पा रहे, इसके लिए माफ कीजिएगा। तो कार्यक्रम तो श्रोताओं समय हो गया कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98527888291 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72776665। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं लूँगी आप सभी से विदा। और यहाँ पे

मैं एक गाना प्ले कर रही हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, शीशा के दिल बनल रहे मिल के दिखल रहे। और चलिए इसी गाने के साथ आप लोग से लूंगी विदा और मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम
4: सुनो दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
8: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170-856587।
11: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4।
6: रेडियो रिम जिम
5: सुनो दिल।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है, उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94-512-11-001।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
8: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
8: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी

0: दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjhim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
2: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम।
2: सुनो दिल।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
3: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
4: रेडियो रिमझिम।
3: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 94 FM में।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं मनीष राजा फाइनल क्वेश्चन बोल रहा हूँ।
2: जी, कैसे हैं आप?
1: हमें बताइए।
2: जी, हम लोग भी अच्छे हैं।
1: मौसम का क्या हाल है?
2: अभी तो मौसम इधर काफी सुहाना मौसम बना हुआ है।
1: हम लोग की तरफ हुआ है मौसम सही। अभी तो मैं पंजाब में हूँ।
2: जी,
1: इधर भी मौसम सही हुआ है, बादल घेरा हुआ है, बारिश का मौसम है।
2: अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना
1: सब बताइए?
2: और सब तो बढ़िया है।
1: गाना सुना है, सुना दीजिएगा।
2: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: जान पिक्चर का गाना सुना दीजिए, हिंदी पिक्चर का।
2: और गाने की बोल,
1: जान मेरी जान।
2: और गाना किसी को सुनवाना भी है
1: तो पहले आपको पूरा रेडियो रंजन सुनने वाले करता हूँ।
2: जी, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: कब तक बजेगा मैम
2: ये? आपको आज शाम को 5 से 7 के बीच बज जाएगा, नहीं तो कल शाम को 5 से 7 के बीच बजेगा।
1: पहला कॉल है मेरा।
2: जी जी, पहला ही कॉल है।

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 एफएम में।
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी बिल्कुल, नाम बता दीजिए पहले अपना।
1: मेरा नाम जगत प्रसाद है।
0: और कहाँ से है आप?
1: गोपालगंज मठिया से।
0: जी, तो कौन सा गाना सुनना है आप?
1: कांटे फैले की फिल्म का प्यार नहीं करना जहां तारा काटा है।
0: जी जी, और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
1: सबसे पहले आपको सुनाना चाहते हैं।
0: जी,
1: जितना रेडियो आदमी को सुनाना चाहता है।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: कब तक हो जाएगा जी
0: ये? आपको आज शाम को नहीं तो कल शाम को सुनने को मिलेगा, 5 से 7 के बीच में।
1: आपका समाचार ठीक है जी?
0: जी जी, मेरा समाचार ठीक है, आप ठीक है ना?
1: हाँ जी, हमारा भी ठीक है
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: हाँ जी ठीक है,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4।
8: नमस्कार मैडम
7: जी। नमस्कार,
8: बोल रहे हैं हम हाता मठिया से बोल रहे हैं मैडम
7: जी। नाम बताइएगा अपना।
8: मंतोष माझी
7: जी, क्या हालचाल है आपका?
8: ठीक है, अपना बताइए
7: जी। हम सबका भी ठीक है।
8: फरमाइश करना था एक मैम।
7: बिल्कुल बताइए, कौन से गाने की फरमाइश है?
8: हिंदी में कोई अपना अच्छा गाना लगा दीजिए ना, देवफाई वाला कोई।
7: हिंदी में
8: जो आपको अच्छा लगता हो।
7: अच्छा, तो हम लोग तो हमेशा अपनी पसंद के गाने आप लोगों को सुनाते रहते हैं।
8: मैं चॉइस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब साइड सॉन्ग कोई अच्छा से लगा दीजिए।
7: जी जी कोई बात नहीं। और गाना आप किसी को सुनाएंगे भी?
8: जी
7: बिल्कुल बता दीजिए।
8: नाम नहीं बता सकते है ना?
7: अच्छा जी चलिए कोई बात, तो आपका गाना प्ले कर देंगे।
8: कोई अच्छा सॉन्ग लगाना की साइड सॉन्ग की उसके पास तक चला जाए।
7: जी जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रमजान 90.4 एफएम।
8: एक मैम पैसा देना था, एक दोस्त लो है तनु और मनु हाता मठिया से दोस्त लो है, थोड़ा सा ये भी डाल दीजिएगा, उन लोग भी सुन ले मेरा साइड सॉन्ग।
7: जी बिल्कुल
8: धन्यवाद मैडम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: हेलो
0: जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ।
0: क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं बस।
0: तो कौन सा गाना सुनिएगा बता दीजिए आप।
1: मनोरमा हुआ हूँ
0: जी। और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
1: आपको, मनोरमा मैम को और जितने भी सुनने वाले हैं रेडियो में उन सभी को।
0: तो अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए।
1: मेरा नाम सुरभि है।
0: जी जी मालूम है, लेकिन आप बताएंगे तो सारे लिसनर को पता चलेगा ना कि किसकी फरमाइश है, इसीलिए बोले।
1: ठीक है मैम, प्ले कर दीजिएगा
0: जी। गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166264498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा, मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
13: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
12: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
13: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
12: कहाँ?
13: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
7: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
14: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
7: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
14: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
7: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
14: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 8003-3586 या 95-999-27-982।
15: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: नमस्कार मैम।
17: जी नमस्कार,
9: हम रांची झारखंड से बोल रहे हैं।
17: जी नाम बता दीजिएगा अपना।
9: गोविंद
17: जी।
9: सब और सब सुनाइए, कैसे हैं?
17: जी जी हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, कॉल नहीं लग रहा है।
17: जी तो इसका टाइमिंग अभी शुरू होता है 11 बजे से 12:30 के बीच में ये रिकॉर्ड होता है।
9: 11 बजे हम लगा रहे हैं तो बहुत दिन ट्राई किए, केवल व्यस्त बता रहा था, कॉल ही नहीं लग रहा।
17: हाँ हाँ, तो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं ना, इसीलिए।
9: आरती मैम बोल रहे।
17: जी जी
9: बहुत अच्छा लगता है शो रेडियो।
17: अच्छा जी, आप केवल इसी शो में जुड़ते हैं कि कोई और शो में भी जुड़ते हैं?
9: केवल हम रेडियो नहीं, हर शो में जुड़ते हैं, लेकिन केवल रेडियो रिमझिम केवल हम केवल सुनते हैं, और कोई रेडियो चैनल नहीं सुनते हैं।
17: जी जी बस यही पूछ रहे थे, मतलब इसमें के सारे शो से आप जुड़ते हैं?
9: हाँ सारे शो में, थोड़ा मजबूरी है, हम थोड़ा क्या बोलेंगे, नेत्रहीन व्यक्ति हैं तो थोड़ा काम करने नहीं सकते हैं, इस कारण से कोई काम में नहीं रहता, इस कारण से हमेशा सुनते रहते हैं।
17: कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आंखें नहीं है तो जिंदगी खत्म हो जाएंगी।
9: खराब लगता है लेकिन क्या करेंगे, बोर लगता है।
17: जी ये तो बात सही है।
9: तो गाना सुना दीजिएगा।
17: बता दीजिए।
9: फिल्म का नाम तो याद नहीं है लेकिन गाने का बोल है, रब ने भी मुझ पे क्या सितम किया है वाला।
17: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
9: पूरा रेडियो रिमझिम परिवार को, आपको भी और सभी को, जितना भी सुनने वाला है सभी।
17: ओके जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम
9: 90.4। कितना बजे होगा
17: ये? आपको आज शाम को 5 से 7 सुनने को मिलेगा, नहीं तो कल शाम को मिलेगा। जी
9: धन्यवाद।
17: वेलकम।

0: जी बहुत स्वागत है आपके रंजन 94.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है
0: जी। तो गाना बता दीजिए, कौन सा गाना सुनिएगा?
1: फिल्म मुगले आजम से सुनवा देंगे, प्यार किया तो डरना।
0: और गाना किसी को डेडिकेट हुई है?
1: कुछ मित्र है हमारे, श्रीपाल गोयल जी है, लोकेन वर्मा जी है, दिलीप पहुजा जी है, तुकाराम जी है, धीरज रवाड़ी जी है और सभी।
0: तो आप कल गाना प्ले करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद।
0: सुनते रहिए रेडियो 94.4 FM।
1: शुक्रिया।

बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे

0: मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056559536 या 9056557902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707065775।
6: Now pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
6: Pick it up,
7: hello.
6: Now pick your phone up,
7: hello.
8: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: नमस्ते मैम, कैसी हैं?
11: जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
10: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
11: तो क्या हो रहा है अभी?
10: अभी कुछ नहीं, बैठी हूँ।
11: अच्छा, तो बता दीजिए आप कौन सा गाना सुनिएगा?
10: साजन साजन से रेडियो दुल्हन तुझको पुकारे आ जा।
11: और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
10: आपको और जितने भी रेडियो दुल्हन चिल्ड्रन सुनते।
11: जी जी, अपना नाम भी मेंशन कर दीजिएगा।
10: नेहा कुमारी फालतू से।
11: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4।

0: जी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: जी मैडम, हम लोग मठियाहाटा से बोल रहे हैं। लोग
1: जी नाम
0: क्या है कि सभी लोग रेडियो में सुनते हैं, लोग हम लोग कार में सुनते हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करते हैं लोग, उसमें बहुत अच्छा सुनाई देता है एफएम, तो सोचे हम लोग भी कॉल करें सभी लोग का रिकॉर्डिंग देख कर।
1: जी
0: हम मनु मौर्या बोल रहे हैं और मंतोष और सोनू को गाना सुनवाना चाहते हैं, सारे लड़कों को कर दो शादी बस एक को कुंवारा रखना, यही गाना बजा दीजिएगा।
1: जी बिल्कुल बजाएंगे।
0: और ये कब तक बज जाएगा?
1: ये तो आपको शाम को बजता है 5 से 7 और सेम रिपीट होता है सुबह में 9 से।
0: इन्हीं लोगों को सुनाना है और हम लोग शाम को कार में बैठेंगे।
1: जी जी
0: ठीक है मैडम,
1: गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
0: थैंक यू मैडम,
1: वेलकम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
9: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
8: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
9: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
8: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
9: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
8: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
10: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
13: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
14: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
13: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
14: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
13: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
14: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
13: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
14: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
15: Now pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
15: Pick it up,
16: hello.
15: Now pick your phone up,
16: hello.
17: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेल
16: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो जी, नमस्कार।
19: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
18: जी आपका भी स्वागत है कॉल लेने के लिए।
19: जी जी,
18: क्या हाल चाल है भारती जी?
19: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
18: हम भी ठीक है। मौसम कैसा है आज आपके साइड में?
19: मेरे यहाँ तो काफी सुहाना मौसम बना हुआ है,
18: बदरी छाया हुआ है,
19: हल्का धूप है,
18: लेकिन दिल्ली में तो बदरी छाई हुई है।
19: बारिश होने वाला है क्या?
18: अब देखिए, ऊपर वाले के कृपा होगी तो जरूर बारिश होगी, इतना पानी लेके आए होंगे तो। यदि दूसरे जगह ट्रांसफर होने वाला होगा तो कहाँ होगा, लेकिन चारों तरफ से बदरी छाया है। सुबह से सूरज देव के दर्शन हुआ नहीं अभी तक, तो सब नाश्ता पानी सही से करके आई है?
19: नाश्ता पानी तो हुआ है।
18: आज सोमवार है, सोमवार का एक हफ्ता हो गया। बीच में बोले थे ना कि आपको फलना दिन होगा, इसीलिए मैंने नहीं भेजा।
19: जी,
18: आपकी बातों का सामान रखते हुए कदर किया आपको।
19: जी जी, कोई बात नहीं, आज प्ले होगा सबके गाने जिनके जिनके हैं।
18: तो नाश्ता पानी बढ़िया से करके आई है ना? नॉर्मल जी कहाँ बन गई?
19: उन्हें काम में अपना
18: पूरा रिकॉर्ड करे के बाद वहाँ पर
19: ना, अब हम शो शुरू कर वहाँ के रिकॉर्ड करम।
18: मान लें कि 10:11:47 हो गया,
19: अब लास्ट कॉल ले।
18: अच्छा, बाद वहाँ का लेते रहें कि ना? अच्छा, वो दिन जो रिकॉर्डिंग भयल तो बाजन लेके का है जी?
19: एक कॉल अभी रह गए बावे, हमारा पास रहे कॉल बावे अभी।
18: अच्छा, रोजाना तो हम सुनबे करी ले, लेकिन कहले कि खाली मनोरमे जी आवता नहीं है, बीच में भारती जी आते नहीं थी, कहाँ भाग जाता?
19: आयल तो रहनी है कल ही है, मतलब आज सुबह में भी बादल हवे, में कॉल हुआ नहीं है कैसे हमारे पास कॉल बाचल बावे।
18: अच्छा, वो कौन है कि हम कहाँ पता ना, हम केना चोकर का बोरा में कहीं बुला के?
19: ना ना, चोकर के बोरा में नहीं थी।
18: अच्छा, ये वो गाना बताते?
19: बिल्कुल बताते।
18: बीचे बीचे बीचे लिखल हो जय हिंद ये राजा, ले ले टी कुंजा इनके राजा।
19: गाना सुना
18: सबसे पहले तो रघुका बानी स्पेशल ब्रांड में मनोरमा जी, बाद जो बाटे सोनू भाई बारन, कमरान भाई बारन, अहमद भाई और अख्तरी जी बानी, सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, नेहा जी, और ओकरा बाद शबीर अंसारी जी, मुस्तफा भाई बारन, और जितना श्रोता गण और सखी सहेली सुनता लोग सब केहू के गाना सुना मिलते।
19: और गाना प्ले करते हैं तब?
18: ठीक बाटे, नमस्कार
19: जी, नमस्कार,
18: फिर हम लोग मिलते हैं
19: रेडियो में। कॉल करने का तो बहुत बहुत धन्यवाद।
18: और

0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते।
1: क्या हाल है? मेरा
0: मेरा ठीक है, आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: भी बढ़िया है। कॉल लगा रहे हैं तो आप व्यस्त, इतने व्यस्त हो रहे हैं कॉल ही नहीं उठा रहे हैं।
0: नहीं, अभी जस्ट कटा है तो आपका कॉल आया तो रिसीव किए।
1: मेरे को लग रहा है कि अभी रिसीव नहीं हो पाएगा।
0: नहीं, ऐसा नहीं है, लगेगा, लेट सेट तो लग ही जाएगा।
1: नहीं, कभी कभी थोड़ा सा पास लग जाता है, कभी कभी पूरा टाइम लग जाता है। और सब बताइए।
0: और सब बढ़िया है।
1: थोड़ा कॉल भी फरमाइश नहीं, तो कॉल भी नहीं जुड़े थे फरमाइश में। थोड़ा मेरा गांव 5 दिन से लाइट नहीं था।
0: अच्छा,
1: 5 दिन से लाइट नहीं,
0: अभी लाइट आ गया है?
1: अभी लाइट आ गया है, अभी लाइट आ गया है।
0: तो आज रउआ हमके थोड़ी चीन है, ऐसा कोनो बात नहीं है।
2: सोनी दीदी बोला था एकदम।
0: हाँ, आवाज बदल गई बा का?
2: हाँ, आवाज बदल गई बा 5 दिन में। मनोरमा दीदी कहाँ बनी?
0: मनोरमा दी काम में बानी अपना।
2: फरमाइश में जा भेजल हमने संग के।
0: ठीक बा।
2: हाँ, पहले के बार भेजल सब बात है कि चाहे वेट मत करो।
1: चल रही है
0: तो आज अभी बता दी कौन सा गाना सुने लोग?
1: आज हिंदी सॉन्ग बजा दीजिए।
0: बताइए कौन सा।
2: हाँ, ले जाऊंगा कुछ मैं डोली में।
0: अच्छा,
2: जैसी रह जाएगी सखिया बेचारी।
0: ओहो,
1: चली ढेर रिश्ना लो, होइलो पसंद हो लो।
0: हाँ हाँ, चली लो। ठीक बात, अब गाना प्ले करता नहीं।
1: मैं सबसे पहले रहूंगा की मनोरमा दीदी के सोनी दीदी और पूजा रोडियो रिम झुंड को सुनवाना है करिश्मा जी के।
0: तो गाना प्ले करता नहीं, सुनत रहे रेडियो रिम। ठीक बा,
2: बाय
0: बाय।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
10: हेलो
9: हेलो,
10: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
9: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते,
9: क्या हाल है?
10: हमारा हाल चाल ठीक बा, रुआ बताए रुआ कैसे बानी?
9: हम ठीक बानी, खड़ा ना होगा।
11: मछली बना कर जाके खा ले।
10: बिल्कुल, मछली तो लेकिन हम ना खानी।
9: ना खानी?
10: मछली ना खानी,
9: ठीक बा, ना खानी तो हमारा छोड़ दे।
10: ना ना, जे खाला ओकरा खाए के चाहे, कोनो बात नहीं छे।
9: ऐसी खा ली चिकन?
10: हाँ, वो सब चिकन थोड़ा खानी और कुछ खानी।
9: कौन जाइया?
10: अच्छा जी, बिल्कुल आते बानी।
9: और सब ठीक बन?
10: और सब ठीक बा।
9: तब हम
10: गाना
9: चलिए,
10: गाना सुने
9: तो चलिए बेरा।
10: हाँ हाँ, सो चलिए। वैसे तो कहते हैं जल्दी से एक गाना बता दी, कौन सा गाना सुने?
9: हम गाना सुने रुकी गा के बता सही, थोड़ा देर रुक जाइए, वेट करी। बता दी कौन भी उतना याद नहीं छू पड़ा, जब गीतिया गाय कर ला तो याद ना पड़े लगे। नीलकमल सिंह के बता दे, ये टिकट रहुआ के रही और मनोरमा दीदी के, और जितना सुनते हैं
10: चले ठीक बा।
9: बिट्टू भैया के हमरा रही। ठीक बा
10: जी, रेडियो में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
9: नमस्ते दीदी।
10: नमस्ते।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। जी नमस्ते जी, हमारे तो हाल चाल ठीक बार वो बताए तो वो कैसा बानी। हेलो,
1: अब आवाज साफ जाता थे
0: जी,
1: तो पहचान ले ली
0: ना जी आवाज तरह, और अभी नहीं पहचान में आओ हम के रोग बता दी।
1: अब हम बताइए।
0: हाँ बोली,
1: मेरा और छोटा भाई विकास।
0: अच्छा विकास जी, कैसन बानी?
1: बढ़िया बानी, हमारे फोनो में रिचार्ज खत्म हो गया नु,
0: यही सब। आवाज थोड़ा चेंज लगा था, तबियत ठीक बा न?
1: अरे दो चार दिन से थोड़ा तबियत गड़बड़ हो गया ना मैडम।
0: वैसे कहते नहीं, आवाज थोड़ा बदल लगा था,
1: सर्दी खांसी बुखार उखार पूरा लग रहा एकदम।
0: मौसम चेंज भी तो होता,
1: मौसम भी चेंज होता,
0: ऐसे मौसम में ख्याल रखे तो पड़ेगा खुद को।
1: तब और सब गोपालगंज में बाढ़ और नानू आई
0: गोपालगंज में ना, मतलब और ये जौन नदी के साइड जौन बावे होने को और थोड़ा बहुत आयल बा।
1: अच्छा वो गंडक नदी जौन बाटे मंगलपुर मंगलपुर के तरफ ना, सब लोग के।
0: हेलो
1: हेलो,
0: आज पता नहीं कह रहा हूँ आवाज कट कट के आओ तो थोड़ा।
1: हमारे तो के मोबाइल में नेटवर्क सला नेटवर्क के का प्रॉब्लम। हेलो,
0: हाँ
1: अब आवाज जाता ना क्लियर। अच्छा तो वही गंडक नदी में 3.5 लाख पानी और छोड़ दिला ना वो नए, तब खाना वाना हो गया मैडम?
0: हाँ खाना हो गया।
1: हमारे तरफ बारिश भइल तो थोड़ा ठंडा एकदम सुहाना मौसम भइल एकदम, काम करे में अब सही लगा था एकदम। गर्मी भी नहीं हो, पूरा ठंडा एकदम कूल, पूरा मस्ती से एकदम काम करो एकदम।
0: चले तब तो और बढ़िया हुआ,
1: लेकिन आपसे बात करे खतरा निकाल ले ना पहले की, जब तक मन थोड़ा उलझने में रही।
0: हेलो,
1: आज कौन सा गाना सुना हम अपने पसंद के?
0: रोवा बता दी रोवा, कौन सा गाना सुने?
1: हम तो गाना वे सुने तेरे ये सानो की बदला।
0: मालूम ही कट जाता गाना कैसे सुनाई दी।
1: आवाज भी कट जाता थे।
0: अब बोलिए, अब थोड़ा ठीक होता है।
1: तेरे ये सानो पाऊ, यही वाली हिंदी गाना है ना, यही पुराना सॉन्ग सुनवाइएगा
0: जी। और गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
1: ना ये सुनवाइएगा, दूसरा सुनवाइएगा गाना हिंदी।
0: नहीं मतलब हम पूछ रहे हैं, आप ये गाना किसी को सुनवाएंगे जी?
1: ये गाना आप ही को सुनवाएंगे केवल आज
0: जी,
1: और कोई और किसी को नहीं सुनवाएंगे
0: जी। जी कोई बात
1: नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है ना जी, गादारी नहीं करना चाहिए, सब रेडियो रेडियम को सुनने वाले को सुनवाएंगे
0: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
1: ठीक है मैडम,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: ठीक है, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
13: सलामुअलैकुम
14: जी।
13: सलामुअलैकुम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
13: कौन मैम बोल रहे हैं?
14: मैं तो भारती बोल रही हूँ। आप?
13: मैं अहमद सर, वार्ड नंबर जी।
14: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
13: आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद बात हो रही है।
14: हाँ जी,
13: तबीयत पानी अच्छा है ना?
14: जी, मेरा तबीयत तो सही है।
13: आज हमको सॉन्ग सुनाइए अवतार मूवी से। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते, प्यार में मरते जाएंगे।
14: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
13: हाँ, सबसे पहले तो आपको और मुनर्मा जी को, अख्तरी को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
14: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम।
13: थैंक यू मैम। आज बज जाएगा क्या?
14: जी आज नहीं तो कल बज जाएगा एकदम।
13: ठीक, ओके मैम, शुक्रिया गाना सुनाने के लिए।
14: ओके ओके।

0: सबसे बिल्कुल
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी सलाम मैम, कैसन बानी?
2: कैसन बानी?
1: हम अच्छे बानी, अपन बताई।
2: हमने की सब क्यों ठीक बानी सर?
1: और मैम का बात बा, आज बानी और मनोरमा जी से बात नहीं हो पाओ?
2: हम तो रोज से कहले रहे की 12 बजे के बाद कॉल करी तो मनोरमा जी से बात हुई,
1: टाइम ना मिल रहा है ये वजह से।
2: तो एने की रिकॉर्डिंग हम ही करे।
1: अच्छा मैम, अच्छा बात भी करे के चाहिए। और नाश्ता हो गयी?
2: हाँ नाश्ता हो गए बा। आप बताए आपके हो गए?
1: जी हो गए बा। मैम तो बता दी हम कौन बोलता नहीं
2: सर? फ्रूज।
1: जी मैम। जी मैम, तो हमरा के एगो गम वाला गाना सुनाई।
2: गम वाला?
1: जी मैम।
2: अच्छा तो बता दी कौन सा गम वाला गाना सुने एक बार।
1: जी मैम, गाना के बोल कौन सी आवाज में गाना बा? और गाना के बोल बा आँखें आँखें अब ना मिला पाई बुझे।
2: एक बार और ही बताए
1: मैम। ये वाला गाना बतानी ना, आँखें आँखें अब ना मिला पाई बुझे।
2: अच्छा अच्छा, और गाना क्यों के सुनाऊं के बाद?
1: सभी आरजे के अभी आज कौन दोस्त के ना सुना, अकेले सुना।
2: अच्छा चलिए तब तो ठीक है बात।
1: और मैम और बताइए, और वॉइस कर ली?
2: हाँ चलवे करी।
1: भोजपुरी गाने फरमाइश करते तो भोजपुरी में बोल दी, अच्छा लगी। अब सभी दोस्त का हम की कैसा लगी बताइए। हेलो
2: अच्छा भोजपुरी बोले नहीं,
1: कोशिश करते नहीं। जी मैम, तो कौन नंबर में बा हमारे समाज?
2: राउर तो 4-5 नंबर पे बावे।
1: बहुत लेट हो गई मैम, तो आज तो चली ना पक्का बा?
2: ना ना, हमार केवल चली तो 16 को कॉल हम लेके हट जाम, तो हमार अगर आज चली तो चली आना तो काल चली एक बार।
1: अच्छा काल के इंतजार हो?
2: आज ना तो मिलिए जाए सुने के
1: मैम, लेकिन एक बात भाई इंतजार करके सुने में अलग ही मजा बा।
2: अच्छा हर के हुई ना समझ पावेला?
1: हाँ मैम हम समझाता नहीं की मतलब इंतजार करके सुने में अलग ही मजा आवेला। जैसे आज रिकॉर्डिंग करनी काल बाजी वक्त के ना बात प्ले करी और भी लोग।
2: चलिए ठीक है, गाना प्ले करते नहीं, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: एक सूचना, डॉक्टर साहब रविवार को भी दोपहर 12 से 3 बजे तक बैठते हैं।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
5: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: Now pick your phone up.
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: हेलो
10: हाँ नमस्ते मैडम
11: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
10: आपको गाना सुनना है?
11: बिल्कुल, नाम बता दीजिए अपना।
10: सुमन कुमारी बोलता नहीं था वैसे।
11: तो कौन सा गाना सुनना है सुमन जी आपको?
10: भोजपुरी गाना सुना सकते हैं?
11: बिल्कुल बता दीजिए।
10: जिंदगी जिए के मन बाइया तुहारे पकड़ के, यही गाना सुना है।
11: और गाना किसी को सुनवाना भी है?

0: सबसे पहले आपको और जितना रेडियो सुनते हैं उन्हीं लोग को।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं,
0: कब तक सुनाएंगे
1: ये आपको? आज शाम को नहीं तो कल शाम को मिलेगा सुनने को।
0: ठीक है,
1: ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मनोरमा जी
0: ना भारती
1: भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: बोल रहे हैं कि पहचान रही है कि नहीं?
0: थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए।
1: धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं चंडीगढ़ से।
0: धर्मेंद्र तिवारी चंडीगढ़ से
1: जी।
0: अच्छा जी,
1: और सब बताइए।
0: और सब बढ़िया है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं?
1: हम लोग तो काम में लगे हैं, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है।
0: अच्छा, चंडीगढ़ में भी बारिश हो रही है? चलिए बढ़िया है।
1: तो तबियत भी आपका खराब हो गया था ना
0: जी?
1: बीच में तबियत खराब हो गया था आपका ना?
0: थोड़ा तबियत खराब हो गया था,
1: अभी ठीक है ना?
0: अभी ठीक है,
1: चलिए खुशी है। सबका आदमी सही रहे, सलामत रहे, और क्या। मान लीजिए सही सलामत है तभी तो बात हो रहा है ना।
0: जी जी,
1: ये तो दूसरे से इसीलिए आदमी जुड़ जाता है कि हाल चाल मिलता रहता है। आ रहे हैं अगला महीने हम भी घर से।
0: अच्छा,
1: गाना सुना दीजिए। कौन सी है
0: बता दीजिए, कौन सा?
1: माई डोली चढ़कर चले गली पवा के घर आवा।
0: कौन सा,
1: कौन सी आवाज में? माई डोली चढ़कर चले गली पवा के घर आवा, भक्ति सॉन्ग है दुर्गा जी का।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: रेडियो रिमझिम सोता सुनेंगे सारे आदमी।
0: तो आपका गाना प्ले करते हैं
1: जी। नमस्कार,
0: सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहे 90.4 FM। नमस्कार।
1: एपिसोड नंबर 55, 55।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फल मूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
4: अरे, इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
3: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
4: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
3: कहाँ?
4: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, OP हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
0: OP हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
1: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
0: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
1: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ, डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
0: OP हॉस्पिटल, सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
1: 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 80023-3586 या 95-9997-27-982।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूं, देश का सिपाही हूं।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
11: एपिसोड नंबर 56 56।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततो गत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृतसनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृतसरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
0: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
1: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
0: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
0: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
0: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
1: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
9: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
1: अरे वाह,

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, राज्य के भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को मार्च 2027 तक पक्का भवन उपलब्ध कराया जाएगा। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE4 के तहत भरे जाने वाले पदों की संख्या बढ़ाकर 33,320 की। विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राजद उम्मीदवार ने भरा पर्चा। और नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से राज्य की विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ा। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सारण में कई नए इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों को मार्च 2027 तक पक्का भवन उपलब्ध कराया जाएगा। श्री चौधरी ने पटना के फुलवारी शरीफ स्थित उच्च विद्यालय में आयोजित राज्यव्यापी आंगन का मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए ये घोषणा की है।
1: अभियान कायाकल्प चलाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में लगभग 115 जो आंगनबाड़ी केंद्र है हमारे, जहां भवन नहीं है वहां भवन बनाने का भी काम अभियान कायाकल्प से चल रहा है। मार्च तक सभी जगह जहां भवन नहीं है वहां भवन बनाने का प्रयास किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने लाभार्थी समूह के बच्चों और आंगनबाड़ी सेविकाओं से संवाद करते हुए कहा कि सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ना जरूरी है।
1: आंगनबाड़ी में जो हमारी बहनें हैं उनसे विशेष तौर पर आग्रह कि गांव में जितने छोटे बच्चे हैं सबको आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़िए, जिससे कि उनका विकास, संपूर्ण विकास हो सके। कोई बच्चा इसे अछूता नहीं रहे, क्योंकि ये समाज के बच्चे जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक ना बिहार आगे बढ़ेगा ना देश बढ़ सकता है। इसलिए समाज कल्याण विभाग को मैं बधाई देता हूँ कि आंगन का मिलन आज पूरे प्रदेश में 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शुरुआत हुआ है।
0: शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE4 के तहत भरे जाने वाले पदों की संख्या बढ़ाकर 33,320 कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने सूचना जारी कर संशोधित पदों की संख्या प्रकाशित की। इसके अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में 493 पद और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 439 पद बढ़ाए गए हैं। गौरतलब है कि आयोग ने पहले 32,388 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो गया है। ताजा जानकारी के अनुसार नामांकन के पहले दिन आज पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से राजद के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्री सिंह ने पटना प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरा। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एक निर्दलीय प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। मतदान 23 अक्टूबर को होगा, जबकि 27 अक्टूबर को मतों की गिनती की जाएगी। पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक सीट तथा 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण में चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। पार्टी ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक सीट से डॉक्टर एनके यादव को टिकट दिया है। इधर जनसुराज ने दरभंगा स्नातक क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। पार्टी ने डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज नूरानी को अपना नया प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक हुई। हाल में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी पदाधिकारियों की यह पहली बैठक थी। बैठक में पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी हरीश द्विवेदी, सह प्रभारी संगीता यादव और रोहन गुप्ता, असम के प्रभारी मंगल पांडे, अरुणाचल प्रदेश के प्रभारी देवेश कुमार समेत बिहार भाजपा के कई वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्षी दलों पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर दुर्भावनापूर्ण राजनीति का आरोप लगाया है। श्री मांझी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय सर्वसम्मति से होता है और इस निर्णय पर सवाल उठाना उचित नहीं है।
2: इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमीशन सर्वे सर्वा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन फाइनल निर्णय सीईसी के जो चेयरमैन है उनको करना है और उन्होंने जब निर्णय दे दिया है एसआईआर के बारे में और बाकी लोग बाद में देखेंगे कि एक मत से सब निर्णय हुआ है ऐसा वो लोग भी सपोर्ट करते हैं तो फिर इसमें प्रश्न उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर कोई प्रश्न उठाता है तो मैं समझता हूं कि अपना वो मनोरंजन करता है।
0: निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने औरंगाबाद जिले के वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रशासिका कांति कुमारी को 10,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी के पुलिस उपाधीक्षक ऋषिता स्नेह ने बताया कि नबीनगर प्रखंड के सिकरिया मनियार गांव की जीविका दीदी पूजा देवी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा और सुशासन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक रिपोर्ट।
2: वर्ष 2014 में कारोबार करने में आसानी के मामले में भारत दुनिया में 142वें स्थान पर था। कंपनी का पंजीकरण कराने में करीब एक महीना लग जाता था और तीन राज्यों से गुजरने वाले एक ट्रक को तीन अलग अलग कर चुकाने पड़ते थे। छह दशकों में बनी ऐसी प्रक्रियाओं को कारोबार जगत ने रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल यानी नियमों और प्रक्रियाओं के बोझ के तौर पर देखा, लेकिन तस्वीर बदली। वर्ष 2020 तक भारत इस रैंकिंग में 63वें स्थान पर पहुंच गया।
3: साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमारा ध्यान लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर मजबूती के साथ हम कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। बिजनेस के लिए 40,000 से अधिक अननेसेसरी कंप्लायंसेस को हटाया गया। जन विश्वास एक्ट के माध्यम से 3,400 से ज्यादा कानूनी धाराओं को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। 1,500 से अधिक अप्रासंगिक और पुराने कानून रद्द किए गए हैं। दशकों से चले आ रहे पुराने कानूनों को अब भारतीय न्याय संहिता से बदला गया है।
2: जहानाबाद के प्रवीण कुमार की कारोबारी यात्रा इस बदलाव की एक मिसाल है। वे कृषि उत्पादों, FMCG और IT हार्डवेयर से जुड़े उत्पादों का आयात निर्यात करते हैं। आज उनका कारोबार 30 से अधिक देशों तक फैला है।
4: नाम प्रवीण कुमार हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया तो बिहार से हूँ। पिछले 10 साल से लगभग हम लोग बिजनेस कर रहे हैं और हर एक साल जो देख रहे हैं कि बिजनेस करना इंडिया में और इंडिया से इजी होते जा रहा है। तो जहाँ तक सरकार की बात है, केंद्र सरकार हो या इवन राज्य सरकार, जो हम देख रहे हैं कि करीब एक साल से मेरा वहाँ काम शुरू हुआ है, बहुत ही इजी है काम करना है। और जैसे आपने मकाने की बात की, खाना एक्सपोर्ट हुआ, जब तक अगर बिहार में हमारा पोर्ट नहीं बनता है ड्राई पोर्ट, तो हमारे लिए मुश्किल था किसानों को 18% ज्यादा पैसे दे पाना।
2: जहानाबाद से दुनिया के 30 से अधिक देशों तक पहुंची यह कहानी बताती है, जब कारोबार की राह आसान होती है तो छोटे शहरों के उद्यमियों के लिए सपनों का बाजार भी वैश्विक हो जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन की रिपोर्ट।
1: नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन की घटना के बाद प्रदेश में गंडक, कोसी, बागमती समेत कई नदियों में उफान की स्थिति बनी हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण और वैशाली जिले के निचले इलाकों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में क्षतिग्रस्त तटबंधों का निरीक्षण किया। श्री सिंह ने कहा कि भारी मात्रा में पानी नदी में बह रहा है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है।
5: बराज के डाउन स्ट्रीम में लगभग 6.5-6 लाख क्यूसेक पानी ट्रेवल कर रहा है अभी, और काफी प्रेशर है तटबंधों पर गंडक के दोनों तरफ। और बायां तटबंध जो है वो चंपारण में दो जगह ब्रिज भी हुआ, एक बगहा में और एक हमारा बैरिया प्रखंड है पश्चिम चंपारण जिले का, वहां पर फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है। और उसके अलावा लगभग जो है 190 जगहों पर हम लोगों का सीपेज पाइपिंग पानी भरने के कारण ये सब समस्याएं हो रही है।
1: श्री सिंह ने बताया कि नदी के ऊपरी भागों में जलस्तर में कमी आई है, लेकिन निचले भागों में बहाव तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि खतरा बना हुआ है और लोगों को सतर्क रहना चाहिए।
5: अपस्ट्रीम में घट रहा है, लेकिन जो पीक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आपका मंगलपुर और यादवपुर ब्रिज जो है, ये पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बीच में, यही पर पीक अभी है हम लोगों का, हाईएस्ट लेवल यहीं पर है। पीछे इसके डाउन हो रहा है, बेतिया साइड में, अपस्ट्रीम साइड में तेजी से डाउन हो रहा है, और डाउन स्ट्रीम में इसको हम लोग देख रहे हैं बढ़ रहा है। तो आज रात में प्रेशर गोपालगंज पर रहेगा, मोतिहारी पर रहेगा, और उसके बाद कल से भोर से ये सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर प्रेशर रहेगा। इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा, आगे बढ़ रहा है। लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सतर्क रहें, सब लोग पैनिक नहीं हो, घबराए नहीं, पूरी हम लोगों की तैयारी है, लेकिन एक सतर्क रहें।
1: पश्चिम चंपारण में दो स्थानों पर तटबंध टूटने की घटना के बाद तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति विकट हो गई है। तटबंध की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
6: वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर पानी का दबाव कम होने से कम मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद जिले में दो स्थानों पर तटबंध टूटने की घटना के बाद निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति विकट हो गई है। बैरिया प्रखंड के फुलियाखाड़, श्यामपुर और सिरोजपुर पंचायतों में कई गांव जलमग्न हो गए हैं और सड़क संपर्क समाप्त हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी तरुणजोत सिंह ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन और अन्य जरूरी सामान पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपातकालीन संपर्क नंबर 0625424700 और 24700034 जारी किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार।
1: अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी में तेज बहाव के कारण चंपारण तटबंध एक और स्थान पर क्षतिग्रस्त हो गया है। हमारे पश्चिम चंपारण संवाददाता ने बताया कि योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी के पास तटबंध टूट गया है। इसके कारण नए इलाकों में पानी प्रवेश कर रहा है। सारण जिले में भी गंडक नदी का जलस्तर विभिन्न स्थानों पर लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षात्मक कार्य किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: गंडक नदी में उफान से सारण जिले के पानापुर, मकेर, परसा और तरैया प्रखंड के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के साथ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और बाढ़ निरोधी कार्य करने के निर्देश दिए। पानापुर के रामपुर रुद्र स्थित रिंग बांध पर तीन जगह छोटे रिसाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने तटबंध की सुरक्षा के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। रिसाव स्थल पर बड़ी संख्या में सैंड बैग डाले जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र में लोगों को सतर्क किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आपात स्थिति में प्रशासन को सूचित करने की अपील की जा रही है। आकाशवाणी समाचार से सारण से पवन कुमार सिंह।
1: जापान के आईची नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के 10वें दिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण पदक जीते। महिलाओं की ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 4x400 मीटर रिले दौड़ में किरण, पुवम्मा मचेतीरा, प्राची और विद्या रामराज की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ मेडल टैली में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में एक पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सुपौल जिले के बीरपुर स्थित भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के पास एसएसबी ने जांच अभियान के दौरान दो अलग अलग स्थानों से 401 किलो गांजा जब्त किया है। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतास वन प्रमंडल और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की संयुक्त टीम ने सासाराम के धर्मशाला मोड़ स्थित एक दुकान में

इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जायेगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
2: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
1: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
2: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
1: कहाँ?
2: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
3: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
4: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
3: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
4: OP हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर OP तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
3: OP हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
4: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और
4: 35-8-76 या 95-9-99-27-9-82।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
6: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
6: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रमझम,
8: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
6: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
7: अरे, इतनी रात में? डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
6: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
7: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
6: कहाँ?
7: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल, साधु चौक, गोपालगंज।
8: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में,
9: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
8: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
9: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
8: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
9: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80 23 35 8 76 या 95 9 99 27 9 82।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
10: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
11: रेडियो रिमझिम,
10: सुनो दिल से।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
12: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
9: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम।
13: सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: प्रसाद क्लिनिक,
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4 रेडियो।

0: रेडियो रूम जिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार का उपक्रम मिनी रत्न बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्रबंधक प्रशासन, क्षेत्रीय मानव संसाधन पश्चिमी क्षेत्र, सहायक प्रबंधक विनिर्माण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, सहायक प्रबंधक बिक्री लॉजिस्टिक सर्विसेज, सहायक प्रबंधक केंद्रीय मूल्य निर्धारण, सहायक प्रबंधक कराधान कॉरपोरेट लेखा और वित्त, सहायक प्रबंधक प्रचालन, सहायक प्रबंधन बिक्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट हेड, उप प्रबंधक चर्म रसायन केमिकल्स, सहायक प्रबंधक HSE क्षेत्रीय मानव संसाधन पश्चिमी क्षेत्र, सहायक प्रबंधक HSE सहायक सेवाएं, सहायक प्रबंधक प्रचालन, सहायक प्रबंधक एयर CHA प्रचालन, अधिकारी बिक्री और विपणन, अधिकारी एयर CHA प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी घरेलू प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी एयर एक्सपोर्ट प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी बिक्री और विपणन, कनिष्ठ अधिकारी एयर इंपोर्ट प्रचालन, कनिष्ठ अधिकारी लेखा और वित्त, सहायक प्रबंधक लेखा और वित्त, अधिकारी निर्यात इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, अधिकारी प्रेषण इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कनिष्ठ अधिकारी रखरखाव, कनिष्ठ अधिकारी वाणिज्यिक कोल्ड चेन, कनिष्ठ अधिकारी गोदाम प्रचालन कोल्ड चेन, कनिष्ठ अधिकारी सचिव सचिव विभाग, कनिष्ठ अधिकारी न्यास निधि कॉरपोरेट लेखा और वित्त। इन रिक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी, जिनमें पात्रता मानदंड आयु में छूट तथा आवेदन प्रक्रिया शामिल है, जानने के लिए देखें ये लिंक www.bamarlorry.com/careers/current-openings। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक समूह कंपनी है, जो हाइड्रोकार्बन संसाधन के क्षेत्र में लाभ कमाने वाली प्रमुख कंपनी है। ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है और इन पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है। कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 उत्पादन, रिक्तियां हैं 40। कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 मैकेनिकल, रिक्तियां हैं 10। कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल, रिक्तियां हैं 5। और कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक ग्रेड 4 उपकरण 5 रिक्तियां। कुल मिलाकर 60 रिक्तियां उपलब्ध हैं। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, सामान्य निबंधन व शर्तें और अन्य अनुदेशों के लिए देखिए CPCL की वेबसाइट www.cpcl.co.in। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। फैकल्टी डिजाइनर पदों की संख्या 2, एसोसिएट सीनियर फैकल्टी डिजाइनर सहायक प्रोफेसर पदों की संख्या 5। विस्तृत विज्ञापन और ऑफलाइन आवेदन, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि के बारे में जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान मध्य प्रदेश की वेबसाइट nidmp.ac.in/careers। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
5: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
0: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
6: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल से।

0: अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: श्री चौहान ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौतों से उभर रहे नए बाजार अवसरों का लाभ उठाएगा।
2: FTA का जो हमारे कृषि समझौते हुए दुनिया के देश, वो भारत के किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जो 0% इम्पोर्ट ड्यूटी पर दुनिया के बाजारों में जा सकते हैं। हमारे फल, हमारी सब्जी, हमारे अनाज, अगर बाजार से किसान को ठीक कनेक्ट कर दिया तो उसको दाम ठीक मिलने की गारंटी है।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 10 से ज्यादा राज्यों के कृषि मंत्रियों को 1200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय मंजूरी के पत्र भी सौंपे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलें शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों के ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों का उदाहरण बनेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संशोधित ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल या उससे नीचे के मानक वाले हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध अब सोनीपत में भी लागू होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान की टिप्पणियों को अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: इंडिया रिजेक्ट्स द अनवॉरंटेड रेफरेंसेस।
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी।
3: अमेरिकी कांग्रेस के जो यहाँ पर डेलीगेशन आई हुई है उनकी मुलाकात फॉरेन सेक्रेटरी से हुई और उस मुलाकात में अन्य विषयों के अलावे जो हमारी चिंताएं हैं इसको लेके कि इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पर और उसके अलावे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ऊर्जा की स्थिति है उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन चिंताओं के बारे में उनको दोहराया उनसे।
0: फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। इन पर करीब 163 भारतीय नाविक सवार हैं। जहाजरानी मंत्रालय इन जहाजों की आवाजाही पर लगातार नजर रख रहा है। भारत बांग्लादेश गंगा जलसंधि से जुड़े सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त नदी आयोग है और नदियों से जुड़े सभी मुद्दों पर इसी आयोग के माध्यम से चर्चा की जाएगी। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की समीक्षा करेगी और शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से मुलाकात की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। इसमें दोनों देशों के लोगों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणामों पर विशेष रूप से बल दिया गया। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे वास्तविकता में बदला गया।
4: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपये में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुंचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि DBT के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा DBT के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
5: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
4: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के किसान दिनेश कुमार राठौर ने बताया कि DBT के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं।
6: अब हमारे खाते में सीधे सरकार द्वारा डायरेक्ट पैसे आ जाता है। साथ ही जब भी हम खाद या बीज लेने जाते हैं तो हमें डीबीटी के माध्यम से काफी छूट मिलता है। वहीं किसान सम्मान निधि के द्वारा अब सालाना 6000 रुपए मिलता है।
4: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो, @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज दोहा में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB की वार्षिक बैठक के दौरान कतर के वित्त मंत्री अली बिन अहमद अल कुवारी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कतर में भारत की UPI भुगतान प्रणाली के विस्तार और दोनों देशों के बीच वित्तीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। इस दौरान कतर की भारत में $10 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के जुड़ाव और द्विपक्षीय निवेश संधि को अंतिम रूप देने पर विशेष बल दिया गया। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक के भीतरी इलाकों केरलम, माहे, कराईकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। और अब बात एशियाई खेलों की। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। पूजा ने महिलाओं की हाई जंप स्पर्धा में और गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाजी में नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65 किलोग्राम और अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
8: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 रुपए प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटक, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: सुनिए जी, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब सहा नहीं जा रहा।
11: अरे इतनी रात में, डॉक्टर तो सुबह ही मिलेंगे।
10: लेकिन अगर दर्द सुबह का इंतजार न करे तो?
11: मुझे याद आया, चलो अभी चलते हैं।
10: कहाँ?
11: वही जहाँ इलाज का समय घड़ी देखकर तय नहीं होता, ओपी हॉस्पिटल साधु चौक गोपालगंज।
12: ओपी हॉस्पिटल में पेट से संबंधित बीमारियों का लेजर एवं दूरबीन विधि से इलाज और ऑपरेशन उपलब्ध है। पित्त की थैली की पथरी, अपेंडिक्स, बवासीर और आंत में रुकावट या आंत का फटना से संबंधित कई समस्याओं के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, वो भी बिल्कुल कम खर्च में।
13: और किसी भी आपात स्थिति के लिए इमरजेंसी सर्विस, साथ ही ICU, CCU, NICU, ECG, X-ray, अल्ट्रासाउंड और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं।
12: महिलाओं के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा, नॉर्मल डिलीवरी CTG मशीन द्वारा और सिजेरियन डिलीवरी, अंडाशय की गांठ एवं ट्यूमर तथा बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की सुविधा भी महिला डॉक्टरों के द्वारा उपलब्ध है।
13: ओपी हॉस्पिटल, जहां अनुभवी डॉक्टरों की विशेषज्ञता मिलती है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ। डॉक्टर ओपी तिवारी, वरिष्ठ फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर अंशु के तिवारी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के विशेषज्ञ। डॉक्टर अंजलि तिवारी, महिला रोग, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एवं इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ।
12: ओपी हॉस्पिटल सुपर मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रॉमा सेंटर, NH 27, साधु चौक, गोपालगंज।
13: 24/7 इमरजेंसी सर्विस 80-03-35-8-76 या 95-99-27-9-82।
14: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
13: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
14: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
13: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
14: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
14: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
13: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
14: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
13: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
13: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
14: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
16: ठक ठक।
17: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा मिला ही नहीं।
17: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
18: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
17: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
18: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
19: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
20: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
21: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है,
2: उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है?
16: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
16: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
16: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
22: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
23: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बढ़ते जलस्तर से खौफ में लोग कई गांवों में घुसा पानी। लूट कांड में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान हो गई मौत। विदेश प्रवासन को लेकर जागरूकता बैठक का हुआ आयोजन और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों के साथ की खास बैठक। स्थानीय हालचाल के इस अंग के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद गोपालगंज अंचल अंतर्गत जगीरी टोला पंचायत के मुंगारहा गांव के वार्ड संख्या 1, 2, 3 और 5 में प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य लगातार संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा स्थिति पर सतत निगरानी रखते हुए प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रेरणा सिंह, अंचलाधिकारी रजत बर्णवाल स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि के मद्देनजर जल संसाधन विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह और जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भी डुमरिया घाट का निरीक्षण किया, नदी के जलस्तर और तटबंधों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान संबंधित पदाधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत एवं बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर में वृद्धि की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अगले कुछ घंटों में जलस्तर में कमी आने की संभावना है, इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। सदर प्रखंड के सिहोरवा गांव के पास बांध में रैट होल मिलने से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिलाधिकारी के निर्देश पर कम्युनिटी किचन बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध करा दिया गया है और लगातार बाढ़ पीड़ित लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इधर जल स्तर बढ़ने के साथ ही शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने भी गोपालगंज क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। प्रशासन को जल्द से जल्द जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा सदर विधायक सुभाष सिंह ने भी सदर विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया, जनता की समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रशासन की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी ली गई है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से बांध के निचले इलाकों के कई गांवों में पानी घुस गया है और इससे एक बहुत बड़ा वर्ग बाढ़ से परेशान है। बहुत सारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बच्चों और पशुओं की विशेष ख्याल रखी जा रही है। वहीं घरों में पानी घुसने से लोग बांधों पर शरण ले रखे हैं। इस दौरान कई सुरक्षित स्थानों पर कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है। मोहम्मदपुर ओवर ब्रिज के पास अंडा व्यवसायी के चालक से हुई लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। इस मामले में आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से 67,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन और लूट में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक व्यवसायी के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने नगदी की जानकारी अन्य आरोपियों तक पहुँचाई थी, जिसके बाद लूट की साजिश रची गयी। चालक को बकरी के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कहकर रोका गया और चाकू का भय दिखाकर पैसे लूट लिए गए। मामले में फरार अन्य आरोपियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है और शेष लूट की रकम को बरामद करने के लिए भी छापेमारी की जा रही है। समाहरणालय के सभा कक्ष में आज सुरक्षित एवं वैध विदेश प्रवासन विषय पर जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उत्त प्रवासी संरक्षक संजय कुमार ने की। बैठक में विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले जिले के युवाओं एवं उनके परिवारों को सुरक्षित प्रवासन के प्रति जागरूक करने तथा विदेश जाने से पूर्व आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा कर जानकारी दी गई। बैठक में अमरजीत कुमार सेक्शन PO 2, सुमित कुमार SO तथा सामान्य शाखा प्रभारी संदीप कुमार सहित संबंधित अधिकारी और कर्मीगण उपस्थित रहे। इस दौरान बताया गया कि विदेश में रोजगार के लिए जाने वाले इच्छुक व्यक्तियों को किसी भी एजेंट या बिचौलियों के छांसे में आने से बचना चाहिए। आज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक 23 वर्षीय नीरज कुमार यादव था, जो शराब तस्करी के मामले में उत्पाद पुलिस के द्वारा कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ था और इसे जेल भेजा गया था। जेल में अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया था। वहां से डॉक्टरों ने सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के दौरान नीरज कुमार यादव की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने जेल प्रशासन पर मारपीट और सूचना नहीं देने का आरोप लगाया और इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जाँच की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक कटिया थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव का रहने वाला था। अब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है और पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी इस मामले की आवश्यक जांच पड़ताल कर रहे हैं। विदेश जाने से पहले पासपोर्ट, वीजा, रोजगार अनुबंध, मेडिकल रिपोर्ट सहित आवश्यक दस्तावेजों की विधिवत जांच करनी चाहिए। साथ ही विदेश में रोजगार के लिए अधिकृत एवं वैध माध्यम का ही उपयोग करने की सलाह दी गई। जागरूकता सामग्री के माध्यम से बताया गया कि विदेश जाने वाले व्यक्ति अपने रोजगार अनुबंध को अच्छी तरह से पढ़ें और वेतन, कार्य की प्रकृति, काम के घंटे, रहने की व्यवस्था तथा अन्य शर्तों की जानकारी पहले से प्राप्त करें। अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने तथा उनके आवश्यक प्रतियों को परिवार के सदस्यों के पास भी रखने पर बल दिया गया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर फेडरेशन के आह्वान पर पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला शाखा गोपालगंज की ओर से 29-30 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से अगले 10 बजे दिन तक 24 घंटे का विशाल धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामेश्वर सिंह तथा जिला मंत्री रामायण सिंह ने किया। एसोसिएशन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 24 घंटों के धरने पर बैठा हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडे ने मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ समीक्षा बैठक की। शिक्षकों के वेतन, बकाया वेतन और अंतर वेतन से जुड़े लंबित विपत्र जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही बाढ़ प्रभावित विद्यालयों को नजदीकी स्कूल से टैग करने का प्रस्ताव तत्काल भेजने को कहा गया। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की सेवा संबंधित सभी प्रविष्टियां अपडेट करने और स्कूलों में 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। आज राजद पार्टी के नेताओं ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान रामपुर टेंगराही, सिमराही, बिशुनपुर कुट्टी, सिहोरमा आदि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और परेशानियों की जानकारी ली। बाढ़ प्रभावित लोगों ने टीम को बताया कि नाव, जल जमाव, आवागमन, भोजन, पेयजल, पशुओं के चारे तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज पुलिस केंद्र गोपालगंज में पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने की। इस दौरान जिले के विभिन्न थाना और शाखाओं से उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया और उसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्णय लिए गए। माझा थाना पुलिस ने कांड संख्या 224 2024 एनडीपीएस एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफलता पाई है। बताया जा रहा है कि अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी गुड्डू कुमार, रवि रंजन और विशाल कुमार, ये सब मिश्रवलिया थाना माझागढ़ के रहने वाले हैं, इन्हें एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया और आरोपियों को 1 वर्ष कारावास तथा 1,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। सिरीपुर थाना की पुलिस ने 24 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया है और एक मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। कटिया थाना की पुलिस ने भी 216 लीटर विदेशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक कार को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सिधरिया पुल के पास छापेमारी करते हुए कार को पकड़ा और इसके अंदर से 216 लीटर विदेशी शराब मिली। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस आवश्यक कर रही है। कृषि अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा वैज्ञानिकों ने सारण और वैशाली जिलों में प्रारंभिक बाढ़ क्षति का आकलन किया। डॉक्टर अनूप दास, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मार्गदर्शन में संस्थान के तीन वैज्ञानिकों की बहुविषयक टीम डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रोहन कुमार रमन एवं डॉक्टर राकेश कुमार ने सारण और वैशाली जिलों में बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर गंगा एवं गंडक नदियों के बाढ़ के पानी से कृषि फसलों, बागवानी फसलों तथा कुछ हद तक पशुधन पर पड़े प्रभाव का प्रारंभिक आकलन किया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बढ़ते जलस्तर से खौफ में लोग कई गांवों में घुसा पानी। लूट कांड में शामिल आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान हो गई मौत। विदेश प्रवासन को लेकर जागरूकता बैठक का हुआ आयोजन। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों के साथ की खास बैठक। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
24: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
24: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
24: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
24: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27। 27 गोपालगंज।
21: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
25: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-648-652।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 94.4 FM पे समय 9:33 हो रहा हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने का फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। तो यदि आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 7277-16-65-96 पे, और कुछ मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सर, मैं सन्नी पटेल संग प्यार के करो से मत करिया, पवन सिंह का स्वागत है। गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या इस सप्ताह आपकी गाने हम नहीं सुनाए, कल का यदि नहीं सुनाए होंगे तो पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय हेलो नमस्ते नमस्कार, मैं अजीत कुमार निषाद देवरिया यूपी भटनी से, और मेरे को भी गाना सुनना है राज मूवी से कोई भी गाना। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नमस्ते नमस्कार सोनू भैया, हम गोल्डन टेलर हम भी शो से जुड़ गए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि फरमाइश से नया, ओहो थोड़ी सी टाइपिंग में गलती हो गई है, चलिए आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि रेडियो रमझिम मैसेज मस्ती रात की चांदनी में यादों का पैगाम आया है, सोनू सर के शो ने फिर दिल को मुस्कुराया है। मैसेज मस्ती में जब दोस्तों की बातें आती है, सुनी रातें भी खुशियों के रंग में रंग जाती है। दोस्त वो नहीं जो हर पल साथ दिखाई दे, दोस्त वो हैं जो दूर होकर भी दिल में सुनाई दे। रेडियो रमझिम की इस प्यारी सी रात में हर दोस्त के नाम बस प्यार और मुस्कान रहे। सुनू सर आपकी आवाज़ और दोस्तों के ये पैगाम रात को बना देते हैं यादगार और हसीन तमाम। ओम साई टेलर राघव जी जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मोहित गुप्ता जी आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है और कल आपके गाने बाकी रह गए हैं तो आज आपके गाने हम सुनाएंगे। बिल्कुल फ़िलहाल हम बढ़ते हैं आगे और पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सनी पटेल की, और गाने के फरमाइश दिए हुए हैं प्यार की करो से मत करिया।

94.4 FM सुनने आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277-16-65-96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करें तो पुराने गाने की फरमाइश करें, चाहे भोजपुरी गाने क्यों ना हो। पुराने गाने की फरमाइश करते हैं तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आगे कई मैसेज पहुँचे हुए और अगले गाने की फरमाइश हम कल के बाकी लगे हुए श्रोता मोहित गुप्ता जी हैं और उनकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे कुछ मैसेज शामिल कर ले फिर गाने प्ले करते हैं। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय ब्रदर हाउ आर यू, मैं सुनीता बहुत दिन के बाद मैं आपके शो से जुड़ चुकी हूँ, प्लीज़ फरमाइश प्ले कर दीजिएगा। बिल्कुल प्ले होगा और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू बाबू, हम भी जुड़ गए हैं, कैसे हैं? हम भी ठीक हैं और हिट प्रोग्राम सुनते हैं और दिन भर का थकान मिटाते हैं। इसके लिए शुक्रिया वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अक्सल नेपाल बॉर्डर से, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं सन्नी पटेल, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया सफ़ी चक हसना से, आज हमको भी सॉन्ग सुनना है एसएमएस फरमाइश में। नाइस सॉन्ग, बिल्कुल सुनाएंगे यदि आपके तरफ से फरमाइश की जाती है तो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और महानता मूवी से गाने की फरमाइश किए हुए हैं मोहित जी आप, तो आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564। अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमछिम 90.4 FM पे सोशल लाइस में फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं और अगली गाने के फरमाइश वाला मैसेज हम बता दें, अगली गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है अजीत कुमार निषाद जी की तरफ से देवरिया यूपी भटनी से, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश किया गया है राज मूवी से कोई भी शाम। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए शामिल कर ले। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि शौंग है क्या हुआ तेरा वादा, डेडिकेट है सभी लिसनर को। तो बिल्कुल शानिया शफी आपकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज सुनो भाई, मेरे मैसेज आपके पास नहीं गया है क्या? तो बिल्कुल अभी तो यही मैसेज पहुंचा हुआ है जो हमने शामिल किए, बाकी के मैसेज कोई नहीं पहुंचे हुए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ सर एक और भजवा दीजिए। तो एक और नहीं, इस सप्ताह में भी नहीं, क्योंकि इस सप्ताह में एक ही बार गाने फरमाइश करने का मौका मिलता है, बहुत कम समय का यह कार्यक्रम है जिसके वजह से। आगे मैसेज बुलेट चौधरी जी बड़रिया थाना क्षेत्र 3 भेड़िया से जुड़े

हुए हैं और गाने की फरमाइश, साजन साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, बिल्कुल आपकी फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ और अगले गाने की फरमाइश अजीत जी की प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

कमाल के सॉन्ग सुनने हम सभी रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे राज मोबीश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम सर जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं भी आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज उजवलिया मुचका गांव प्रखंड से। और लिखा गया है आगे इनके तरफ से, वाओ माय फेवरेट सॉन्ग एंड मूवी राज लाजवाब, इस मूवी के सारे सॉन्ग लाजवाब, ये मूवी भी कमाल की है। मुझे वो दिन भी आज याद है जब ये मूवी आया था, तब मैं छोटा मोबाइल में मेमोरी कार्ड में भरवा कर देखी थी। ओहो, बहुत पुरानी यादें याद आ गई। और चलिए हमारे साथ बने रहे, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सर नमस्ते, मैं मेघनाथ माझी। सर आप मुझसे 2 हफ्ता से गाना नहीं सुना रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भाई साहब 9:14 बजे मैसेज भेजे हैं आप, देखें तो मेरे पास पहुंचे होते तो बिल्कुल हम शामिल करते, हमारा कार्य यही है। अब नहीं पहुंचे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें दिलीप जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि आज मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा, बिल्कुल प्ले होगा। और बन रहे हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे किए हुए हैं गोल्डन टेलर, अपना नाम तो नहीं बताए हुए, केवल संस्थान के नाम बताए हुए हैं, तो आप लोग संस्थान के नाम से ना जुड़े, अपना नाम भी बताएं कि आप कौन हैं। और अभी आपकी फरमाइश को हम रुकते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम देखते हैं। और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे करते हैं पूरी शानिया शफी की चक हंसना से, और इनके तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। यदि पुराने गाने होंगे तो ही कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो बीच में ही रोकेंगे, फिर अगले श्रोता की फरमाइश हम प्ले करेंगे।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और काफ़ी प्यारा सॉन्ग अभी आपने सुना। और यहाँ पे इस गाने की फरमाइश करने वाली थी शानिया शफी, और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सर, आपको धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं सुनीता की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है, मेरा यार जो मुझसे दूर हुआ, गाने का बोल दिया गया। आगे मैसेज है और मैसेज में लिखा गया है कि गुड नाइट सारी, और इस मैसेज को करते हैं राघव जी, तो बिल्कुल समाप्ति के समय मैसेज को फुल शामिल कर देंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्लीज़ सर मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, एक एक करके सबकी फरमाइश प्ले करना है। हाँ, जितना समय हमें मिला है उतना ही। फिलहाल हम सुनीता जी की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

रेडियो रिम झीम 94 FM सुन ले आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और अभी सुनीता जी की फरमाइश अभी हम सभी सुन रहे हैं। आगे मैसेज इनकी तरफ से पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, माय फेवरेट सॉन्ग है। और चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिम झीम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग मैसेज करती हैं, अपना नाम पता कुछ नहीं दिए हुए हैं तो अपना नाम भी बताएं कि आप कौन कहां से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है तो अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहां पे मैसेज पहुंचाए हुए हैं बुलेट चौधरी जी, गाने की फरमाइश करते हैं साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

कमल के सॉन्ग काफ़ी प्यारा रेडियो रेम छम 90.4 FM पे सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय जो है समाप्ति का हो चुका है, तो कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। आरजू मूवी से गाने एंजॉय कर रहे हैं, अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस गाने के फरमाइश किए हुए हैं मेघनाथ माझी जी और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी। गाने का बोल दिए हुए हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले दो घड़ी, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश जी की आवाज़ों में, तो इन्हीं के गाने सुनेंगे अंतिम और कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। जो भी श्रोतागण छूट जा रहे हैं नाराज नहीं होना है, जैसे कल वाले श्रोता की फरमाइश आज पूरी की वैसे जो भी श्रोतागण आज छूट रहे हैं उनकी भी फरमाइश कल पूरी करेंगे और जितने जल्दी मैसेज पहुंचेंगे उतने जल्दी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश रहेगा मेरा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो रेम छम 90.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुश्री भव्य सारस्वत का अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर, रात्रि के अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर, रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
1: India rejects the unwarranted references.
2: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: No external party has any locus standi on this issue.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
3: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि यह खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026, in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
5: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
4: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "This is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty, and no external party has any locus standi on the issue." On the IBSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India, Brazil and South Africa on the sidelines of the UN General Assembly in New York. On the comments made by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar on cross-border terrorism, Mr. Jaiswal highlighted External Affairs Minister's remarks on cross-border terrorism, terming it a cause of major concern and that countries need to come together to fight the global menace. In the Asian Games 2026, India today delivered a strong performance, adding 8 medals, including 2 gold, 1 silver and 5 bronze medals in relay, shooting, athletics and boxing. India won women's 4x400m relay gold, clocking 3 minutes 29.69 seconds at Nagoya in Japan. India also bagged a bronze in men's 4x400m relay and another bronze in mixed 4x100m relay. Earlier, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. And that is the end of this news bulletin.
6: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
3: 90.4
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
4: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: झला।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान।
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: इतना सवाल एक बार पूछ ले बू, पहले अपन बताओ तो हम अपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताई, बिचारा के बाद इशारे में समझ ली है।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: discover new body.
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो
4: हेलो. नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM. और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911. जी हाँ, 8029994911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश.
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में. नाम बता दीजिए.
6: जी मैं दीपक मेन ग्राम मस्जिद सज्जनगढ़ से बोल रहा हूँ.
5: जी नाम क्या बताया?
6: दीपक. हाँ जी.
5: अच्छा दीपक जी, क्या हाल चाल है?
6: सब बढ़िया है. अपनी मक्का कट रही है इस वक्त, मजदूर आगे पीछे कर रहे हैं.
5: अच्छा,
6: मजदूर लग रहे हैं खेत में जी.
5: मौसम कैसा उधर का?
6: मौसम मैम बदल बदल हो रहा है, पानी गिर सके. और आपके इधर?
5: हमारे यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, बारिश हो रही है.
6: मैम पानी नहीं गिरता तो बढ़िया है. आज मैम सोयाबीन खाए, मक्का कट जाएगी, नहीं तो मजदूर ऐसे जाएंगे. 500 रुपए गए हैं मैम
5: जी. तो फिर क्या है आज की आपकी फरमाइश?
6: फिल्म का नाम है सपने साजन के और गाने के बोल है कभी तेरे प्यार में. कभी भूला कभी याद किया.
5: एक बार और बता दीजिए.
6: कभी भूला कभी याद किया. जेगी शराब की मूवी है, जेगी शराब की.
5: जी जी. क्या ये गाना मुझे दुल्हन गा के बताएंगे आप?
6: तेरे इंतजार में कभी भूला कभी याद किया.
5: अच्छा, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगे?
6: हाँ, मेरे मित्र है ना सुनील साहू मकसूदनगढ़.
5: जी जी.
6: उसको उनको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं. और मैम उसने ही मुझे ये नंबर दिया था. मैम बहुत दिन से लगा रहा हूँ, लगता ही नहीं वो तो आज तक कैसे भगवान ने सुन ली मेरी.
5: अच्छा जी, तो आज पहली बार कॉल की है हेलो माय चॉइस.
6: मैम लगाया था, नहीं लगाया था मैंने बहुत दिन से, वो लगता ही नहीं था. वो आज वो बेटा बेटे में इनकी आज लगा सही.
5: अच्छा जी, यानी कि आज पहली बार ही मतलब लगाया और बात हो रही
6: है. जी मैम पहली बार ही लगाया मैंने, वो भी इनकी तना लगा ले. हमारे मजदूर अगर खाना पीना करेंगे तो मैंने लगा ले और बात करते.
5: जी जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे.
6: जी मैम. जी मैम. मैम ठीक है, धन्यवाद
5: जी. तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका.
6: जी मैम, धन्यवाद.

0: हेलो
1: हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM
0: में। जी नमस्कार, मैं पप्पू ठाकुर बगैबाजा गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया है जी। कौन बोल रही है? भारती मैम भी बोल रहा है।
1: मनोरमा।
0: हाँ जी, और सब बताइए जी, बारिश हो रहा है ना खूब?
1: जी जी, बारिश तो हो रही है।
0: किसी समय से कॉल लगाते लगाते बीच जाके लगा 5 मिनट पहले। बोल रहे की एक गाना सुना दीजिएगा। गाने का बोल है, घुंघरू की तरह बदता ही रहा हूँ मैं।
1: जी मैं गाना सुनाऊंगी, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: हमारा नाम पप्पू ठाकुर है।
1: और कहाँ से?
0: बगही बाजार कटिया गोपालगंज।
1: अच्छा जी, ये गाना जो बताया वो डेडिकेट करना चाहते हैं?
0: हाँ हाँ, डेडिकेट करना चाहते हैं। हमारे दोस्त हैं सुभाष सिंह और राजेंद्र भाई हैं, इनके लिए।
1: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके ओके
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो.
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में. मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8029494911. जी हाँ, 8029494911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में.
4: अस्सलाम वालेकुम मैम.
5: वालेकुम अस्सलाम,
4: कैसी हैं?
5: जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
4: हम लोग भी ठीक है. नाश्ता वाश्ता हो गया?
5: हाँ नाश्ता तो हो गया. और आपका हुआ?
4: हाँ नाश्ता हो गया है.
5: क्या करूँगी अभी आप?
4: कुछ नहीं, नहा कर आया फिर तो बाल झड़ गए.
5: अच्छा,
4: स्कूल आज छुट्टी है, कोई पर्व वगैरह है?
5: हाँ हाँ पर्व.
4: गाना बजा दीजिएगा.
5: गाना बिल्कुल सुनवाएंगे, पहले अपना नाम बता दीजिए.
4: खुशी पठानपट्टी से.
5: खुशी जी और सब बताइए?
4: हाँ सब ठीक है.
5: तो बता दीजिए अपनी फरमाई.
4: नहीं, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, हिंदी सॉन्ग वही बजा दीजिएगा.
5: क्या ये गाना आप मुझे जाके बताएंगे? बोलाए
4: चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, मेकअप वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में. जितना रेडियो सुनना चाहता है सबको सुनेगा. आप सुनेंगी, अब मेरी बहन और मेरे मामू लोग को सुनाना चाहते हैं.
5: चलिए खुशी जी प्ले करते हैं गाना आपका.
4: हाँ
5: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम.
4: थैंक यू.
6: Once again, yo yo, Dev Fugly, Jigar Thakur,
7: Chal RC, music baja, thoda bass maar ke.

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 एफएम में।
1: सलाम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसन बानी जी?
0: जी बिल्कुल ठीक बानी। रउआ बताई, रउआ कैसन बानी?
1: हम ठीक बानी।
0: अच्छा रउआ अभी बाकी रहनी है का?
1: हाँ बाकी रहनी है, याद नहीं कर?
0: ना ना हम तो डेली याद करते नहीं। हम कहेंगी कहीं भारती जी रिकॉर्ड करते रहनी है तो कहीं रउआ फोन कर दे हो।
1: ना जी लगा अपने जनधन को आपने खा रहा हूँ फोन नहीं खिला डाल बात टिक कॉल कर देता।
0: अच्छा तो कहीं कुछ भाई रही फोन में?
1: हाँ हमको अपने की ना बात हुई लेकिन बात हो गई। ठीक बानी रवा?
0: हाँ हाँ ठीक बानी। अपन बताए की रवा कैसन बानी?
1: हम ठीक है बानी।
0: चलिए ठीक है काम बा
1: सब कुछ ठीक बहुत में।
0: हाँ हाँ सबके बढ़िया बा।
1: भारती जी ठीक बानी?
0: हाँ ओके ठीक बानी। तो फिर आज कौन सा गाना सुने?
1: गाना सुने हिंदी गाना सुने
0: बता दी।
1: जिसे डरते थे वही बात हो गया गाना नहीं हिंदी
0: राहों में उनसे मुलाकात हो गई।
1: हाँ जी यही गाना बा।
0: और क्योंकि सुनाए की भी चाहता नहीं?
1: हाँ सुनो अखबार होगा सुने भारती मैम सुने सोनी मैम जैसा लोग हमारे चिन्ह तो सब कोई सुनी अरबरा रिकॉर्डिंग में सुना ही कोई सिवान से बात के सुना पठान पटी के
0: परिचय हो गए सब लोग सुने ला एक दूसरे के।
1: हाँ सुना ही हमारे के याद पत्र।
0: हाँ मैंने सबके ध्यान से सुने ला ना सबके नाम याद रखे ला एक दूसरे के।
1: वो सुनियो हम तरफ से क्या कर ना।
0: जी जी बिल्कुल। सब खाना ना हो गए बानू?
1: हाँ नाश्ता पानी हो गए बा तो जानते बानी हम दोपहर खाना बनाओ नहीं दाल चावल सब्जी ये बनते बरा।
0: बारिश वरिश होता नहीं?
1: हाँ जी बारिश खूब होता क्या होता की ना।
0: हाँ हाँ बारिश अभी तो मैंने फिलहाल छूटल बा।
1: अभी स्कूल गए खाली अनहार का भैल बा हवा चलता खूब है मौसम अच्छा बा।
0: हाँ हाँ मौसम सुहाना बा।
1: हमारा का तो बारिश खूब पसंद है रौरा जी
0: हमारा के बहुत ही पसंद है।
1: बारिश रहा तो खूब खुशी रही है सबसे बेस्ट।
0: हाँ हाँ बारिश से भीगना तबियत खराब होना
1: अच्छा तबियत तो केहू में खराब होते बा। बारिश में नहा के झाड़ू बर्तन कर सब घर और पोछ के फिर से
0: हाँ ज्यादा बारिश में मत भीगे ना तो तबियत खराब हो जाएगी।
1: ना जी अब तो नहा ले रही है शाम लेके हरी थोड़ा बहुत कपड़ा बाकी बात आगे ना लेगा सब नाश्ता बना कर
0: तो नामा बता दिए इसे
1: रेशमा बोलते पठान पट्टी से रो बुलाए थे ना जी।
0: ना ना भुलाइल नहीं थी लेकिन पूछे के पड़े ला डेली की आदत हो गई जानू।
1: ना ठीक है कर ली अब पहचान तो नहीं रेशमा बोलते पठान पट्टी से।
0: हाँ हाँ हम तो पहचानते वानी। चलिए फिर प्ले करते हैं गाना।
1: हाँ ठीक है बजा दी गाना
0: जी।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
3: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM। नमस्ते,
5: मनोरमा बोल रहे हैं।
6: हाँ जी,
5: हेलो, जगनाथ से बोल रहे हैं।
6: और आपका नाम?
5: लाल बाबू है।
6: अच्छा,
5: फिल्म का नाम डॉन है।
6: और गाने के बोल?
5: भाई के पान बनारस वाला। नमस्ते।
6: और ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहेंगे?
5: हाँ, वो है गुडू विकास है, रंजीत है, मंजीत है और आप है, आपकी टीम।
6: ओके जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: नमस्ते।
6: नमस्ते, सुनते सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
7: ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद कल का ताला, ओ

कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ जान फंसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से मीठी

हल्ला, खुल जाए बंद अकल का ताला।

करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खई के पहन बनाओ रतबाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, ओ

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कि आप कैसी हैं। हाँ जी नाम बता दीजिए अपना।
1: सुरभि गोपालगंज।
0: अच्छा सुरभि जी कैसी हैं आप।
1: ठीक हूँ।
0: तो क्या हो रहा है।
1: कुछ नहीं, कॉल लगा रही थी, लग गया।
0: वैसे सुरभि जी कहाँ से बोल रही हैं आप।
1: गोपालगंज से।
0: गोपालगंज में कहाँ।
1: गोपालगंज में जीएम स्कूल है ना।
0: कहाँ।
1: जीएम कॉलेज है। जीएम कॉलेज।
0: जी जी
1: गरी से बोल रही हूँ।
0: अच्छा तो और बताइए कौन सा गाना सुनिएगा।
1: श्रेया घोषाल के आवाज में सुनना है मैंने तेरा नाम दिल रख लिया।
0: अच्छा तो सुरभि जी ये गाना मुझे गा के बताएंगी।
1: तो थोड़ा तो याद था ना, इतना ही बता सकते हो।
0: अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहेंगी।
1: जी आपको और जितने भी सुनने वाले हैं सभी को।
0: ओके जी तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो मैम
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: सलाम मैम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: ठीक है मैम
3: जी? मैं ठीक हूँ, नाम बता दीजिए अपना।
2: रोशनी।
3: कहाँ से बोल रही है रोशनी जी?
2: अगेड़वा।
3: अगेड़वा। और रोशनी जी, क्या हो रहा था?
2: ड्रॉइंग।

0: मेरा भी हो गया।
1: चलिए बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनिएगा आज?
0: आज थोड़ी के पहले चढ़ाई से बहुत पिटाई करा रहा थाना में।
1: ये गाना मुझे गाके बताएंगे आप? बुलाएंगे?
0: हाँ, छोड़ी के पहले चढ़ाई तो तहर पिटाई करा दे मैं थाना में, संभाले में नहीं बत जहर खाना में, गिट्टी पट्टा तोरे से जड़े से पड़ी तोरे घरे से, ए बर्बादी हुई बर्बादी हुई शादी हुई मोर तोरे से। पहले आपको और जो सुनते हैं उनको और मेरे चाची को और मेरे चाचा को और मेरे बहन को और मेरे अम्मी।
1: चलिए आप
0: थैंक यू
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
0: जी हम बोल रहा हूँ नीतीश कुमार पासवान, बोधा छपरा सिवान जिला।
1: जी कैसे हैं आप?
0: सही है मैम, अपना बताइए।
1: जी मैं भी बढ़िया।
0: बारिश मौसम उधर कैसा है? बारिश का मौसम कैसा है उधर? बारिश हो रहा है?
1: हाँ बारिश तो हो रही है, दो तीन दिन से बारिश लगातार हो रहा है।
0: गाना सुना दीजिए मैम हमको।
1: बता दिए
0: तोहरा प्यार में पिटाई बनी लाइकी मिलत बाबू।
1: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: गाना सुनवाना है कमल को, लक्ष्मी को, पूरा डेडिकेट है आपको भी।
1: अच्छा जी, आप रेडियो रिंगिंग में पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ जी मैम, हम तो कॉल करते हैं लेकिन मेरा कॉल भी नहीं लग सकता है।
1: तो आज पहली बार कॉल किए हैं?
0: हाँ हाँ पहली बार।
1: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
0: कार्यक्रम तो बहुत अच्छी लगती है मैडम, आपका भी बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया प्रोग्राम भी होता है, सब बढ़िया है।
1: तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक, और सब ठीक है ना?
1: सब बढ़िया।
0: वेलकम।

0: और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैडम जी।
2: नमस्ते।
1: कैसे हैं मैडम जी?
2: जी हम तो ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल अच्छा है।
2: तो क्या हो रहा था?
1: आपका इंतजार।
2: अच्छा जी, चलिए इंतजार खत्म हो गया और फोन भी लग गया।
1: तो सब बताए, सब समाचार ठीक बार?
2: सब ठीक बार। हुआ नेहा बोलता है ना?
1: जी मैडम जी, नेहा बोलता हूँ। पहचान लगे?
2: हाँ हाँ, कैसे ना पहचाने हम।
1: सब ठीक बा, पहचान लगे।
2: तो आज कौन से गाना सुने?
1: गाना सुना दे चुपके चुपके चोरी चोरी।
2: कई गाना रोज गा के बता सकते
1: मैडम? ये गाना तो ना गाए जाएगा फिर सुने ले।
2: अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं है। ऐसे नेहा जी कहाँ से बोलते हैं?
1: भोर से।
2: तो मौसम कैसा बने के?
1: बहुत बारिश है।
2: बारिश तो
1: रात भर बारिश हुआ।
2: और ये गाना कैसे सुनाए के भी चाहते हैं
1: आपको? जितना गजरे सब है, 200
2: नेहा जी। तो चलिए अब गाना प्ले करता नहीं।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
2: नमस्ते। सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी मैडम जी
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मैं सुजनगढ़ जिला गुना से।
1: जी सुनील जी, कैसे हैं?
0: बस मैडम जी, आपका रेडियो रिंगिंग सुन रहे हैं।
1: अच्छा जी, तो और बताइए मौसम कैसा है उधर का?
0: मौसम हमारे यहाँ धूप खिल रही है, सोयाबीन कट रही है।
1: अच्छा, धूप निकली हुई है।
0: सोयाबीन की कटाई चल रही है।
1: अच्छा, और हमारे यहाँ गोपालगंज में बारिश हो रही है।
0: बारिश हो रही है आपके इधर?
1: जी जी।
0: तो हमने उधर भेज दी आपके इधर, हम सोयाबीन काट लेंगे, फिर आप हमारे इधर बारिश भेज देना, ठीक है?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और आपके उधर क्या फसल होती है?
1: फसल तो होती है, बट मेरे घर नहीं होती।
0: नहीं, आपके घर नहीं, आपके शहर में, जैसे कि हमारे इधर सोयाबीन होती है, मक्का होती है, आपके उधर क्या होता है?
1: हम मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हमारा जो एरिया है वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता नहीं है?
1: जी जी, खेती वगैरह के बारे में मुझे नहीं पता।
0: जी जी, कौन भारती जी बोल रही है? मनोरमा जी बोल रही है।
1: मनोरमा
0: जी, भोजन हो गए आपके?
1: जी जी, आपका हुआ?
0: हाँ मेरा भी हो गया।
1: चलिए बढ़िया, तो आज की क्या है फरमाइश आपकी?
0: जी मैडम जी, आज की फरमाइश है हमारे मामा जी गोलू साहू जी की। हेलो।
1: हाँ जी।
0: हमारे मामा जी गोलू साहू जी की फरमाइश है, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
1: जी।
0: और गाने बोलो, तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो।
1: तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ।
0: हाँ, तेरी बेवफाई का सिकवा करूँ तो कौन था, ऐसे ही है कुछ मैडम जी, हमको गाना मेरी मोहब्बत की तोहिन होगी, अनिल कपूर वाली फिल्म है ये।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, अच्छा गाना है ये, उनको किसी ने धोखा दे दिया था तो ये गाना वो सुनना चाहते है।
1: अच्छा
0: जी।
1: और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
0: जी जी, ये डेडिकेट गाना उनको किसी एक दोस्त को डेडिकेट रहेगा। और हमारे मित्र है गोपाल ओझा जी, दीतेन धाकड़ जी, गजराज सिंह लोधी जी हैं, और सोनी मैम, मनोरमा मैम, और एक और मैम का नाम भूल गया, भारती मैम, को ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके सुनील जी, तो
0: ठीक है मैडम, धन्यवाद
1: जी। तो सुनील जी, आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: जी
1: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 91.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते,
6: कैसी हैं?
5: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए क्या आप कैसे हैं?
6: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ।
5: तो क्या कर रही थी?
6: जी मैं कॉल ट्राई कर रही थी, बहुत देर के बाद।
5: चलिए चलिए, अब जाके लगा है कॉल।
6: जी
5: तो नाम बता दीजिए अपना।
6: मैं शबनम सिद्दीकी बात कर रही हूँ।
5: और कहाँ से?
6: जी खान से।
5: चलिए तो शबनम जी, कौन सा गाना सुनिएगा आज?

0: ये वाला सॉन्ग तो मुझे ये गाना तो बहुत ही अच्छा है
1: जी मैम।
0: तो शबनम जी, ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: हाँ, आपको सुनना चाहते हैं?
0: ओके शबनम जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी हाँ मैम, आप माइंड में लग रही है, आप जान सकते हैं
0: जी,
1: आपका नाम जान सकते हैं?
0: जी जी बिल्कुल, मेरा नाम मनोरमा।
1: आप न्यू लग रही है?
0: हाँ जी,
1: पहले बार आपका मेरे को हो रही है।
0: जी जी, आपकी आवाज़ कट रही है, एक बार और बता दीजिए क्या बोली है।
1: मैंने बोला की मेरे को हो गई है।
0: अच्छा ठीक है, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम,
0: जी जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैम, मैं आपसे कुमारी बोल रही हूँ।
0: जी मनीषा जी, कैसी हैं?
1: मैं थोड़ा बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या हो रहा था?
1: अभी कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी, तो
1: रेडियो सुन के उसके बाद से कॉल लगा रही थी।
0: अच्छा जी, तो कैसा लगता है कार्यक्रम आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है। सोमवार को आजादी फरमाई
0: थी,
1: बोल रहे हैं सोमवार के दिन गाना फरमाए थे तो लेट से आप बजा दी।
0: जी तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
1: मैं खाना खा लिया है आप?
0: हाँ जी, खाना तो हो गया। और आप खाई हैं?
1: हाँ मेरा भी हो गया है, तो गाना सुनवा दीजिए।
0: बता रही है,
1: मेरे भाई मेरे दुश्मन मेरे हमसाए।
0: क्या मनीषा जी, ये गाना मुझे गा के बताएंगी?
1: नहीं, आप दूसरे दिन गा देंगे।
0: जी कोई बात नहीं है। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: जी हम आपको और भाभी मैम को, दिव्या मैम को, सोनी मैम को और अपनी दीदी को, छोटे भाई को और रेडियो रिव्यू सुनने वाले सभी दोस्तों को।
0: ओके मनीषा जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिव्यू 90.4 FM।
1: थैंक।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone can be busy, so get it. Hello.
3: Hello.
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009294911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: The phone can be busy, so get it. Hello.
3: Hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: जी मैडम, प्रणाम।
6: जी प्रणाम।
5: हाल
6: चाल तो ठीक बा। अपन बताएं कि रोवा कैसन बानी।
5: बढ़िया बानी, हम सब पहचान लेनी।
6: हाँ, रोवा विकास बोलता है ना।
5: विकास बोलता है। और सब बताएं।
6: सब बढ़िया बारा उद्वा से। रोवा बताएं कि रोवा कैसन बानी।
5: बढ़िया बानी। और गोपालगंज में मौसम है।
6: गोपालगंज के मौसम तो कहीं बताए, बहुत बारिश होता है।
5: हमने के दिल्ली में नोएडा में सारा बहुत धूप निकल रहा है। थोड़ा होने से बारिशो भेजती, थोड़ा हमनियों के ना ठंडा थोड़ा मिली थी।
6: राहत
5: भगवान के पास फोन करी, कितना आया ना भेजी।
6: अच्छा चली,
5: तो भगवान के लगे कॉल लगवे ना करी।
6: दुआ कही की बारिश हो तो ऐसे क्या होता अभी।
5: अभी तो ड्यूटी होता है।
6: आज के फरमाइश,
5: आज गाना का फरमाइश है खेसारी लाल के। वही दिल न लगाई वाली
6: गाना बहुत अच्छा गावे। गाना बहुत अच्छा गावे।
5: हाँ, गाना तो गाई ले दिया सैनू, लेकिन हमारा नाम सेकंड है। सेकंड में हमारा विकास नाम, तो हमारा नाम दिया से नाम से हमारा फेमस हटे पूरा। चलिए, आपके कृपा से, भगवान की कृपा से, आपके दुआरी पर अगर कभी भी आवे कोई तो अगर नसीब में हुई तो एग्जाम गावे खतरा तो आ जाएगा।
6: बिल्कुल।
5: ये नोएडा का मेरा दोस्त है ना, वो गुरदीप, वो भी बोलते है कि यार तुम्हारे घर में चलूंगा तो यार भारती सिस्टर से भेंट करूंगा। यार बोले एकदम, यार बिल्कुल चलना यार, चलना, मैं घुमा करके लाऊंगा अपने देश में से।
6: जी जी।
5: और सब मैडम बताइए, आप कैसन बानी अभी।
6: जी जी, हम ठीक बानी, बस रहुआ सभी से बातें होता अभी।
5: अच्छा चलिए, बढ़िया बा। मौसम कैसे कि खराब चलता ना, दो चार दिन हमारे सर्दी खांसी इतना ना हो गए मैडम की हालत खराब कर दिला।
6: हाँ, मौसम की वजह से हो बासन।
5: हेलो, नमस्ते मैम।
6: जी नमस्ते
5: मैम। गाना जो बताया ना खेसारी लाल जी का, हम दोनों खेसारी लाल के फैन हैं मैम।
6: अच्छा जी।
5: जी, अब गाना जब हम खेसारी लाल के ही गाने पसंद करते हैं, और गाना मैम यही होना चाहिए, वही वाला गाना। ये गाना जितना रेडियो रेमियम सुनने वाला है सब श्रोताओं को, और मेरे दोस्त है गुरदीप, सबसे पहले आपको सुनवाना है।
6: जी जी बिल्कुल ठीक है विकास जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
5: अच्छा ओके, ठीक है, नमस्ते मैम।
6: जी नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
0: हम स्वागत है बोल रहे रामाजी प्रसाद
1: जी। जी कैसन बानी?
0: हम ठीक बानी, दिनों निमन भल बारात भर बरखा बरसल बा, खूब बढ़िया मस्ती आगे लगा।
1: हाँ हाँ बारिश तो
0: वही बात। हवा बहुत खूब बढ़िया। तो गाना सुना दी पूरा हवा पर
1: जी, बता दी।
0: सावन के महीना पवन कर स्टोर दिया झूमे जैसे बनवाना थे मोर
1: जी जी। और गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
0: रेडियो रंजन सब कोई सुनता, सब कोई सुनी।
1: चलिए ठीक बा, उसे खाना उना हो गई बचना रहो।
0: ना तो खाना बना रहा, छाना रहा पूरी खीर आलू सब्जी का सब्जी खूब मस्ती बा खाना खाए में।
1: हाँ मौसम बढ़िया भाई बात, खाना भी अच्छा बने के चाहिए।
0: हाँ
1: बढ़िया बात है, फिर गाना प्ले करते हैं। डाउ
0: नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello,
5: hello. तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके 90.4 FM में।
7: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो
6: जी। नाम बता दीजिए अपना।
7: हम बोल रहे हैं ओम साई टेलर बंजारी रोड पुलिस लाइन के सामने गोपालगंज से, राघव जी।
6: जी जी राघव जी, कैसे हैं आप?
7: बहुत बढ़िया है, आप लोग के दुआ से। आप लोग कैसे हैं? पूरी टीम आप लोग सुनाइए
6: जी। सब कोई बढ़िया है यहाँ पे भी।
7: चलिए अच्छी बात है, बढ़िया रहना चाहिए बारिश के दिन में।
6: जी जी।
7: और मैम सॉन्ग सुनना है हमको, दिल है बेताब पिक्चर का, क्या तुम्हें खाता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है, यही सॉन्ग चला दीजिएगा। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, स्पेशल मैं आपको टीम को, ठीक है?
6: ओके जी, तो गाना बता दीजिए ताकि क्लियर हो जाए।
7: दिल है बेताब पिक्चर मोदी का, क्या तुम्हें खाता है ए गुलशन मेरे दिल पर आने वाली है।
6: तो क्या मुझे गा के बताएंगे ये दो लाइन?

0: बस इतना ही
1: जी। गाना तो बहुत ही अच्छा
0: जी।
1: इसी के साथ आपके गाने को हम प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम
1: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमिशन 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम में।
0: जी मैम नमस्कार, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मायर एमपी से।
1: जी सुनील जी, क्या हाल चाल है?
0: बस ठीक है मैम, बस हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रहा है मैम, और आपके यहाँ भी भेजे थे तो सुनने में मिल रहा अच्छा बारिश हो रहा मैम आपके वहाँ भी।
1: जी जी बारिश तो हो ही रही है।
0: जी जी मैम, हमारे यहाँ कल दोपहर 2 बजे से चालू हो बारिश, तो अभी भी बारिश हो रहा है, तो बैठे थे और फोन लगा रहे थे, हम सोचे चलो अभी टाइम हो ही गया है तो फोन लगाते, नहीं टाइम तो समाप्त हो जाएगा।
1: जी
0: जी जी जी
1: तो आज कौन सा गाना सुनिएगा?
0: जी आज तो बारिश हो रहा तो सुनवा दीजिएगा, बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे कितने। जी बरसते पानी का मजा कुछ और होगा, और सुनवाएंगे आपको कितने रेडियो रिंगजिम लोग सुनते हैं, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके सुनील जी, तो चलिए फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ओके मैम, धन्यवाद।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 एफएम।
0: धन्यवाद।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: का हुआ पूछू बेबी?
2: बेबी
1: वो का कोई ले बड़ू बताइबू की बीपी बढ़ाइबू
2: तो बर्दाश्त कर ले बना।

0: मैं पूरा पूरी।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: जय हो पावन।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो
1: इतना
0: यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल